ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 जुलाई 2026 सुबह के 5:58 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

लिए सुनी मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता व्यापार, वाणिज्य और रक्षा सहित आपसी सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसैनिक बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज बिहार के गयाजी का दौरा करेंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित करेंगे। मूसलाधार बारिश और भूस्खलन के कारण मुंबई पुणे रेल मार्ग पर रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। सेंट्रल रेलवे ने 17 जुलाई तक 22 नियमित और 8 विशेष ट्रेन रद्द की हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम सहित पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है। कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुकोबा का मुकाबला उन्हीं के देश की लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन खिताब जीतने के इरादे से उतरेंगी। फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। लॉस एंजलिस के इंगलवुड में खेले गए दूसरे क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थीं। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तो ये थे अभी तक के समाचार और अब बारी है कार्यक्रम सुप्रभात की।

सुप्रभात। जी हाँ, गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुप्रभात और ये है आपका अपना आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना संजीव श्रीवास्तव। संजू, बिल्कुल जी, अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आपसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं। कुदरत ने तो आनंद ही आनंद दिया है, दुख तो हमारी ही खोज है। बिल्कुल इसी प्यारे से संदेश के साथ आज के इस बहुत ही सुंदर से दिन की शुरुआत करते हैं हम एक बहुत ही प्यारे से इस भक्तिमय गीत के साथ।

आग में तपाया जाता है तो सब खोट निकल जाते हैं। ऐसे ही सत्संग में भी एक भट्टी है, जब आप वहां जाते हैं तो हमारे खोट जलकर निकल जाते हैं। और रही बात प्रवृत्ति की, तो प्रवृत्ति की बात पर हम एक छोटी सी कहानी आपसे जरूर शेयर करना चाहेंगे। एक बार एक संत साहब अपने कई सारे शिष्यों के साथ एक रास्ते पर नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे जा रहे थे, लगातार चल रहे थे। तो उन्होंने देखा कि अचानक एक बहुत ही विषैला बिच्छू पानी में डूब रहा है। संत को उस पर दया आई, उन्होंने उसको तुरंत वहां रुककर नीचे बैठे और बैठने के बाद उस बिच्छू को अपने हाथ से बाहर निकालने की कोशिश की। जैसे ही बिच्छू को हाथ से बाहर निकाला, डिंग, बिच्छू ने अपने, जिसे कहते हैं ना, अपने भाव के मुताबिक उनके हाथ पर डंक मार दिया। विषैला बिच्छू था, ज़बरदस्त डंक था, हाथ से में ज़बरदस्त तीव्र पीड़ा हुई संत जी के, तो बिच्छू हाथ से छूट गया, फिर पानी में गिर गया। जैसे ही पानी में गिरा फिर डूबने लगा, तो उन्होंने दोबारा कोशिश की उसको बाहर निकालने की और अपने स्वभाव के मुताबिक उस विषैले बिच्छू ने फिर से उनको दूसरी जगह डंक मारा, फिर हाथ से गिर गया दोबारा, फिर उनको पीड़ा हुई। उन्होंने थोड़ी देर अपने हाथ को संभाला लेकिन देखा कि फिर ये डूब रहा है, कहीं ये मर ना जाए, तो उन्होंने फिर अपने स्वभाव के मुताबिक उसको तीसरी बार झटके से पानी से निकाला और बाहर की तरफ फेंक दिया। लेकिन बाहर फेंकते फेंकते भी वो तीसरी बार भी उनके हाथ में डंक मार गया। उनके शिष्य ये सारी बात देख रहे थे, उन्होंने गुरुजी से, पहले चुपचाप थे कि गुरु के सामने ना बोलें, लेकिन जब देखा कि तीसरी बार भी उस बिच्छू ने डंक मारा और फिर भी उसकी जान बचाई, तो उन्होंने, उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने कहा कि प्रभु ये लगातार आपको निरंतर डंक मार रहा है और आप इसको बचा रहे हैं, क्यों मर जाने दीजिए ना। संत ने कहा यही तो इसकी प्रवृत्ति और मेरी प्रवृत्ति है। इसकी प्रवृत्ति है डंक मारना, जब ये अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ रहा तो मेरी प्रवृत्ति है दूसरों को बचाना, उनकी रक्षा करना, सेवा करना, तो भला मैं अपनी प्रवृत्ति क्यों छोड़ दूं। सच में अगर आप जिस भी प्रवृत्ति को अपने पास रखते हैं, आपके मन में दया है, भाव है, समर्पण है, तो उस भाव को बनाए रखिए। किसी दूसरे के प्रभाव में आकर अपने को बदलने की जरूरत नहीं है।

जय यह आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक। और आपके साथ आज मैं शनिवार की सुबह सुप्रभात प्रोग्राम में संजीव श्रीवास्तव संचो। सत्संग में जरूर जाना चाहिए क्योंकि जैसे सोना होता है उसे

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

जी हाँ, पुनः अभिनंदन आपका प्रोग्राम सुप्रभात में आज शनिवार के दिन आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। आपके साथ मैं संजीव श्रीवास्तव संचो। हमारे किसी दोस्त ने बहुत ही प्यारा सा एक संदेश मेरे साथ साझा किया, मैं सोचता हूँ कि आपके साथ भी साझा करूँ क्योंकि आप हमारे सबसे करीबी दिल के मित्र हैं। जी, बात है घूमने की, वॉकिंग की, पैदल चलने की। पैदल चलने से मानसिक संतुलन ठीक रहता है, पैदल चलने से नींद अच्छी आती है, पैदल चलने से शुगर कंट्रोल होती है, पैदल चलने से चिड़चिड़ापन कम होता है, पैदल चलने से मोटापा नियंत्रित रहता है, पैदल चलने से फेफड़े मजबूत होते हैं, पैदल चलने से हमारा हृदय सही से काम करता है, पैदल चलने से भोजन पचता है, पैदल चलने से गैस नहीं बनती, पैदल चलने से थकान दूर होती है, पैदल चलने से रक्त शुद्ध होता है, पैदल चलने से बुद्धि तेज होती है, पैदल चलने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं, पैदल चलने से आत्मविश्वास बढ़ता है, पैदल चलने से बल बढ़ता है और पैदल चलने से त्वचा रोग नहीं होते, पैदल चलने से वात पित्त कफ जो त्रिदोष हैं नियंत्रण में रहते हैं और भोजन के पश्चात नित्य 300 कदम पैदल चलने से पेट के रोग नहीं होते, मनुष्य की आयु बढ़ती है। इसके अलावा पैदल चलने से शरीर में जो रक्त का सुचारू रूप से जो भाव है वो परिचरण में सूक्ष्म जो पंप होते हैं वो शरीर के हर अंग में रक्त का सही से संचरण होता है। और एक बात कहते हैं, सूर्य के प्रकाश में नित्य 1 घंटा पैदल चलने से डायबिटीज से बड़ा लाभ मिलता है। ऋषि मुनियों का सबसे बड़ा योग था पैदल चलना। जी हाँ, श्री राम ने 14 वर्ष लक्ष्मण के साथ वनों में पैदल ही यात्रा की। पांडव जीवन पर्यंत पैदल चलकर अनेक सिद्धियां प्राप्त करते रहे। पैदल चलें, खूब चलें, रात्रि को अपने पैरों की मालिश करें। पैदल चलने वालों की इच्छा शक्ति बहुत बलवती होती है। और कहते हैं ना कि जो ईश्वर ने पैर दिए हैं वो चलने के दिए हैं। आपने देखा ना, जितने भी जंगली जीव हैं वो लगातार दौड़ते हैं, पैदलों से चलते हैं, इसलिए उन्हें अनेक प्रकार के रोगों से वो बचते रहते हैं। इसलिए पक्षियों के पूरे शरीर में जो महत्व पंखों का है, वही पैर, वही महत्व हमारे शरीर में पैरों का है। पैदल चलने से शरीर गर्म रहता है और इसलिए पैदल चलना ही जीवन है। चलते रहिए और जीवन को स्वस्थ और सानंद बनाते रहिए, निरोगी बने रहिए। और हम तो कहते भी यही हैं कि स्वास्थ्य ही जीवन का आधार है। भारत का ये, हमारे देश का ये एक बहुत मूल मंत्र है जो पूरे विश्व के लिए एक संदेश के तौर पर हम हमेशा कहते हैं।

जी हाँ, ये आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो, दिल से दिल तक आपके साथ मैं संजीव श्रीवास्तव। संजू प्रोग्राम है सुप्रभात। सो आप सबको सुबह सुबह की प्यारी प्यारी ताज़ी सी हवा के साथ नमस्कार। बहुत ही प्यारा सा मौसम बाहर है और रिमझिम बारिश का मौसम चल रहा है इस वक्त। बारिश हो रही है, कभी कभी नहीं हो रही है। अभी दो दिन तीन दिन दिल्ली में अच्छी खासी बारिश थी, लेकिन अभी कल बारिश नहीं थी और अभी आगे फिर संभावनाएं जताई गई हैं। बहुत ही कूल मौसम इसे कहते हैं, बहुत सुंदर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ख्याल भी करने वाली होती हैं सेहत के लिए इस मौसम में ख़ास तौर पर। और जहाँ तक हमारे कार्यक्रम की बात है तो उसमें तो हम आपसे सिर्फ हृदय की, दिल की बात करते हैं कि जीवन की बात अगर हम करें तो जीवन एक प्रसन्नता की दुकान है जिसमें बहुत सारे, इसके अलावा जीवन की जिस दुकान में बहुत सारा आइटम है,

बहुत सारे सामान हैं और उसमें खुशी देने वाले भी बहुत सारे सामान हैं, पर बुद्धिमान वही है जो उसमें से सिर्फ वो प्रसन्नता देने वाले, वो खुशी देने वाले सामान चुनता है, है ना? क्योंकि ये आपके ऊपर है कि आपको खुशी चाहिए या दुख। दुख होना बड़ा आसान है, दुखी होना, लेकिन दुख, दुखी होने के बाद क्या मिलता है, बात सिर्फ इतनी है। तो थोड़े दिन बाद आपको मन को समझाना ही होता है, तो क्यों ना इस मन को समझा लें, और ये मन का ही खेल है। अगर आप प्रसन्न रहते हैं तो पॉजिटिविटी आपके पूरे शरीर पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव डालती है।

0: और लीजिए अब सुनिए स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम समर्पण।
1: कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण।

कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुनते चले आ रहे हैं श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद, जिसमें हम चौथे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। आपको याद होगा महाराज परीक्षित जी ने भगवान श्री कृष्ण की माया सृष्टि के बारे में, यानी भगवान जो ब्रह्मांड का सृजन करते हैं कैसे करते हैं, सृष्टि रचना कैसे होती है, ये लीला होती ही कैसे है, इसका तत्व क्या है, ये महाराज परीक्षित जानना चाह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी से। और सुखदेव जी भी जानते हैं कि भाई भगवान की दिव्य लीलाओं का, उनकी स्वरूप शक्ति अंतरंगा शक्ति के साथ जो लीलाएं हैं, अतिशय मधुर लीलाएं, उन लीलाओं का वर्णन करने से पहले भगवान की सृष्टि लीला का वर्णन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी भगवान का ऐश्वर्य क्या है पता चलेगा। और तब भगवान जब नर्वत लीला, जो कि महादिव्य लीला है, उसमें अपना सौंदर्य, माधुर्य, प्रेम, ये सब दर्शाएंगे, तो फिर भक्त को ये नर लीला नहीं लगेगी, ये लीला होगी भगवान की ही लीला। तो उस लीला तक पहुंचने से पहले भगवान की उस भक्त वत्सलता और करुणामयी, प्रेममयी लीलाओं के द्वारा भगवान ने जो अपने भक्तों को आत्मसात किया है, उनको बताने से पहले सुखदेव गोस्वामी जी अब बताएंगे भगवान की सृष्टि लीला के बारे में। लेकिन उससे पहले वो भगवान ही के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछ लिया और सुखदेव जी कहें कि हाँ मुझे सब पता है, तो ये बात ठीक नहीं होगी। क्योंकि भगवद लीला के बारे में अगर बताना है तो भगवान के चरणों में ही प्रार्थना करनी होगी कि प्रभु आप मेरे मुख में वाणी के रूप में प्रकट हो जाइए, आप ही मेरे मुख के माध्यम से अपना गुणगान कीजिए, क्योंकि मैं भला कहाँ आपके बारे में कुछ कह पाऊंगा। और ये बात उन्होंने अपनी स्तुति में एक जगह कही भी है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल 20वां श्लोक प्रस्तुत है आपके लिए, क्योंकि 20वें श्लोक में सुखदेव जी बहुत सुंदर स्तुति कर रहे हैं श्री कृष्ण की। कह रहे हैं, श्रिया पतिर यज्ञपति ही प्रजापतिर धियाम पति लोकपतिर धरापति ही पतिर गतिश्चांधक वृष्णि सात्वताम प्रसीदताम मे भगवान सताम पति। आहा, धन्य है सुखदेव जी, क्योंकि उनके मन में भगवान का कितना प्रेम है, भगवान से वो इतना प्रेम करते हैं। श्रिय पतिर यज्ञपति ही प्रजापतिर धियाम पतिर लोकपतिर धरापति ही, भगवान के ऐश्वर्य के बारे में बस बोले ही जा रहे हैं। और वो जो भगवान सबके ही पति हैं, सबके ही स्वामी हैं, यादवों के स्वामी हैं, यादवों के कुल में प्रकटित हुए हैं, जो लक्ष्मी जी के स्वामी हैं, जो समस्त यज्ञों के स्वामी हैं, जो समस्त लोकों के स्वामी हैं, धरापति हैं, तो ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, मेरे प्रति प्रसन्न हो। देखिए, ये ना जो सुंदर स्तुति कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी, ये इनके हृदय से उठ रहा है ये भाव, क्योंकि जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो बस भगवान को सर्वस्व मानकर, भगवान की महिमा को जानकर, भगवान की करुणा को जानकर, बस भगवान मय वाणी हो जाती है ना, भगवान के लिए ही बोलना चाहते हैं। वास्तव में कहा भी गया है, जिनके अंदर भगवत प्रेम का एक अंकुर भी प्रकटित होता है तो उसमें एक लक्षण उत्पन्न होता है, और वो लक्षण यह है कि वो हमेशा भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहता है, या वो भगवान के प्रसंग

की चर्चा सदा सर्वदा करना चाहता है। और गीता में यूं भी तो भगवान ने कहा है, मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयंता परस्परम, की जिनके चित्त मन प्राण मुझ में स्थिर हो गए हैं, समर्पित हो गए हैं, वो सदा सर्वदा मेरी ही चर्चा करते हैं और फिर उसी से वो संतुष्ट होते हैं और उसी में रमते हैं, उसी से आनंदित होते हैं। तो बात भी सही है, प्रेम का ये लक्षण तो है भी, है ना। तो ये भगवान कैसे हैं? ये भगवान हैं समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति, है ना, और समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं और फलदाता भी यही हैं। प्रजा के रक्षक हैं, सबके अंतर्यामी हैं और समस्त लोकों के पालन करता है और पृथ्वी देवी के स्वामी हैं। इन्होंने यदुवंश में प्रकट होकर अंधक विष्णु और यदुवंश के लोगों की रक्षा की है और उन लोगों के ये एकमात्र आश्रय रहे हैं। ये हैं भक्त वत्सल, संत जनों के सर्वस्व और ऐसे श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो, यही कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी, है ना। कैसे श्री कृष्ण जो संतों के सर्वस्व हैं, संत जनों के सर्वस्व, संतों का अगर कोई धन है तो वो है कृष्ण धन, वो कृष्ण धन से धनी है संत। इसीलिए देखिए बड़े बड़े लोग भी उनके चरणों में झुकते हैं क्योंकि वो कृष्ण धन से धनी है। बड़े बड़े लोग, नामी गिरामी पैसे वाले लोग भी संतों के चरणों की रज लेते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि भाई इन संतों को तो कुछ नहीं चाहिए भगवान के सिवा, भगवान की प्रसन्नता के सिवा, भगवान की अनुकूलता के सिवा, भगवान से प्रेम करना ही इनका एकमात्र कार्य है, उसी में ये रमते रहते हैं। और भगवान भी भक्तों से अतिशय प्रेम करते हैं, इसीलिए उनका एक नाम है भक्त वत्सल हरि। तो श्री कृष्ण भक्त वत्सल हैं, भक्तों के प्रति अतिशय वात्सल्य है। वात्सल्य ये शब्द भी देखिए बड़ा अनुपम है। गैया को जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने वत्स को स्वयं ही साफ करती है जीभ से चाट करके, और इतना प्रेम करती है कि उस प्रेम की कोई सीमा नहीं है, है ना। ऐसे ही भगवान अपने भक्त के हर अभाव को पूरा करते हैं, उसके हर कमी को हटा देते हैं, उसमें अगर कोई वृत्ति है जो पापमय है उसको हटा देते हैं, उसको शुद्ध कर देते हैं, उसको अपनी सेवा के लायक बना देते हैं, योग्यता प्रदान कर देते हैं और उस संत में वो अपना ज्ञान प्रकट कर देते हैं, वैराग्य प्रकट कर देते हैं। देखिए अगर कोई बहुत ही रसमय वस्तु प्राप्त हो तो जो बेकार वस्तु है उसके प्रति वैराग्य हो जाना स्वाभाविक है। और कृष्ण रस से बड़ा रस ही कोई नहीं है, श्री कृष्ण रस की प्राप्ति ही में तो वैराग्य होना अत्यंत ही स्वाभाविक है क्योंकि बाकी जितने भी भगवत स्वरूप हैं उनमें जितने भी गुण हैं वो समस्त गुण श्री कृष्ण में पूर्णतम मात्रा में है। और जो किसी भी भगवत स्वरूप में गुण नहीं है, वो चार गुण वो सिर्फ ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण में है। रूप माधुरी, ये चार माधुरी सिर्फ ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण में है, नंद नंदन में, यशोदा नंदन जी में, है ना, राधाकांत में। क्या रूप माधुरी, इनसे सुंदर रूप ही नहीं है किसी भी भगवत स्वरूप का। फिर प्रेम माधुरी, इनसे जो भी प्रेम करता है उनसे ये भी अनंत प्रेम करते हैं और ऐसा प्रेम करते हैं कि उनके प्रेम के वश में ही हो जाते हैं, भूल ही जाते हैं कि मैं ठाकुर हूं, अपनी ठकुराई को, अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं। कहीं से कोई ऐश्वर्य ज्ञान भगवान में रहता नहीं है, जबकि यही एकमात्र एकमात्र सर्व कारण कारणम है। तो भी तो ये प्रेम माधुरी इनमें है, रूप माधुरी ऐसा रूप ही किसी में नहीं है जैसा गोप रूप भगवान में है, सौंदर्य माधुर्य श्री कृष्ण में है। और फिर वंशी माधुरी, कौन बजाता है बंसी, कोई नहीं।
तो ऐसी बंसी बजाते हैं कि स्थावर जो है वो जंगम का धर्म प्राप्त कर लेता है, यानी पत्थर गल जाते हैं, पत्थर गलने लगते हैं और पक्षी उन पत्थरों को पीने चले आते हैं, और जो जमुना जी हैं वो जम जाती हैं, पाषाण हो जाती हैं, है ना। और जो बछड़े हैं, बछिया हैं, गैया हैं, वो घास खाती हैं तो उसको अपने कंठ से नीचे नहीं उतार पाती हैं, और अपने कान रूपी पात्रों को ऊंचा करके श्री कृष्ण की बंसी ध्वनि सुनती हैं। और फल से लदे हुए पेड़ों पर बैठ जाते हैं पक्षी, लेकिन आंख बंद कर लेते हैं, क्योंकि ये तो मुनि जन हैं जिन्हें वेद वेदांत में कोई प्रसन्नता नहीं मिली, आनंद प्राप्त नहीं हुआ, वो साक्षात पर ब्रह्म श्री कृष्ण की बंसी पर मोहित हो जाते हैं और सब जगह से उदासीन होकर के आंख बंद करके अपने कानों से उस बंसी रवामृत का पान करते हैं। और फिर है लीला माधुरी, ऐसी लीलाएं प्रकट करते हैं श्री कृष्ण इस धराधाम पर, ऐसी लीला जो लीला समस्त भगवत स्वरूपों के लिए भी बड़ी लोभनीय है, देवताओं के लिए लोभनीय है, परंतु अतिशय दुर्लभ है उन लीलाओं में उन सब का प्रवेश भी। तो ऐसी सुंदर लीला, रास लीला जैसी लीला श्री कृष्ण इस धराधाम पर प्रकट करते हैं। तो ये है संतों के सर्वस्व भक्त वत्सल, और सबके पति हैं, लक्ष्मी जी के पति हैं, समस्त संपत्तियों की स्वामिनी है लक्ष्मी देवी जी। ऐसा कोई अमीर व्यक्ति नहीं है या ऐसा कोई गरीब व्यक्ति भी नहीं है जो लक्ष्मी देवी जी की कृपा नहीं प्राप्त करना चाहता, लेकिन लक्ष्मी देवी जी जिनके चरणों की रज को प्राप्त करने के लिए हमेशा उत्कंठिता रहती हैं वो है श्री कृष्ण। समस्त यज्ञों के भोक्ता और फलदाता भी यही है, भगवान ने कहा ही है कि मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूं। तो भगवान ही गीता में जब ये बता रहे हैं कि समस्त यज्ञों का भोक्ता मैं हूं, और जितने भी देवता कोई फल प्रदान करते हैं एक यज्ञकर्ता को, वो सारे फल वस्तुतः मैं ही देता हूं। देवताओं के पास कुछ है ही नहीं कि वो दे सकें, वो तो मुझी से लेकर देते हैं, मैं ही देता हूं। और समस्त प्रजा का रक्षक भी मैं हूं, सबका रक्षक हूं, क्योंकि है ही भगवान ही सबके रक्षक हैं, श्री कृष्ण ही सबके रक्षक हैं, उन्हीं के अंश और फिर उनके अंश, उसी से भगवत्ता या कहिए विभिन्न भगवत स्वरूप प्रकट हुए हैं जो अनेक अनेक लीलाएं कर रहे हैं। प्रजा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने अनेक अनेक अवतार लिए हैं, और सबके अंतर्यामी भी श्री कृष्ण ही हैं, सबके अंतर्यामी। हमारे मन में क्या चल रहा है वो कौन जानता है, वो वही जानते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं सबका सब कुछ जानता हूं, सबके समस्त जन्मों को जानता हूं, पर मुझे कोई नहीं जानता है। पर फिर भी मुझे वो जानते हैं जो मेरी शरणागति ले चुके हैं, मेरे भक्त हैं, मुझे प्यार करते हैं, वो मेरी ही कृपा से मुझे जान पाते हैं। और वास्तव में देखा जाए तो मैं उनसे छिप भी नहीं पाता, अगर छिपना चाहूं कि छुप जाऊं तो छुप भी नहीं पाता, उनकी प्रेममयी नजर मुझे ढूंढ ही लेती है। तो प्रजा के रक्षक हैं, सबके अंतर्यामी हैं, सबके हृदय में परमात्मा के रूप में इन्हीं का अंश के अंश का अंश बैठे हुए हैं, है ना। अंतर्यामी परमात्मा बैठे हुए हैं, सब कुछ देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जीव तुम कब मेरी तरफ मुड़ोगे, जब मेरी तरफ मुड़ोगे तब मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जिससे तुम मुझे प्राप्त कर सको, और जब तक तुम मुझे प्राप्त नहीं करोगे तब तक पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम चलेगा। बार बार जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारियों के आघात को झेलना पड़ेगा, कष्ट झेलना पड़ेगा,
बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान

0: समस्त लोगों के जीवों के अंतर्यामी, ब्रह्मांड के अंतर्यामी भी वही है, है ना, जीवों के अंतर्यामी भी वही है और समस्त लोगों के पालन करता है, समस्त लोगों के, ब्रह्मांड के पालन करता वही है, भगवत लोकों के पालन करता भी वही है और पृथ्वी देवी के भी वही स्वामी है श्री कृष्ण ही। तो इसी पृथ्वी देवी पर तो हम जन्म लेकर के भगवान की लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। पृथ्वी देवी ने हमें थामा हुआ है, पृथ्वी देवी के मगर स्वामी श्री कृष्ण ही हैं, उन्हीं से पृथ्वी देवी प्रकट हैं, पृथ्वी की रक्षा वही करते हैं। और जिस कुल में भगवान ने जन्म लिया, परीक्षित जी को तो बता रहे हैं, अगर सुखदेव जी तो यदुवंश के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि परीक्षित जी का जो पांडव कुल है और यदुकुल है उनमें संबंध है, इसलिए यदुवंश की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। तो यदुवंश में जन्म लेकर के, जन्म तो क्या, प्रकट होकर के, जन्म तो भगवान लेते ही नहीं है, लीलामय है, जन्म की लीला कर देते हैं, नहीं तो जहां से प्रकट हो रहे हैं उनको भी नहीं पता लगेगा कि ये कौन है, अर्थात वात्सल्य भाव का आस्वादन नहीं कर पाएंगे भगवान। माता पिता का वात्सल्य भाव जो नंद बाबा में, यशोदा मैया में था, वो तो तभी उन पर बरसा जब यशोदा मैया ने ये जाना कि मेरा ही लाला है। उन्हें कोई भी कह देता था, अरे नहीं तुम्हारा लाला नहीं, ये तो भगवान है, तो वो हंसती थी और कहती थी कि तुम्हें अवश्य ही मति भ्रम हो गया है भाई, ये मेरा लाला है और दूध के लिए मेरे पीछे पीछे दौड़ता रहता है, मक्खन दे दो मैया, अगर मैं ना इसे संभालूं ये संभल पाएगा क्या। तो इस तरह से ठाकुर जी लीला करते हैं और ठाकुर जी ही का एक स्वरूप, ठाकुर जी का एक प्रकाश यदुवंश में प्रकट होता है और अंधक वृष्णि और यदुवंशों में जो, और यदुवंश में जितने भी लोग हैं उनकी रक्षा करता है, उनका नाम होता है वासुदेव। तो ये जो वासुदेव हैं, ये जो भगवान हैं, ये जो श्री कृष्ण हैं, ये इन सब के एकमात्र आश्रय हैं और सभी के जब वो आश्रय हैं ही, तो उन भक्त वत्सल श्री कृष्ण की प्रसन्नता की कामना कर रहे हैं सुखदेव जी और बहुत ही सुंदर आस्वादन कर रहे हैं श्री कृष्ण भक्ति का सुखदेव जी, और उनकी कृपा से आस्वादन हम भी करेंगे। सुनते रहिए समर्पण।
1: आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9350530528, 9811256747 और 9818451411। आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9193278889। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com।
0: कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा, और हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही सुंदर श्लोक पर, जहां सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप श्रेयपति हैं, यज्ञपति हैं, प्रजापति हैं, धियापति हैं, लोकपति हैं, धरापति हैं, और ऐसे आप सतामपति हैं, यानी भक्त वत्सल हैं, भक्तों के स्वामी भी हैं आप ही, तो आप हम पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए, आपकी कृपा की तरफ हम टकटकी लगाए देख रहे हैं। और देखा जाए तो भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते ही हैं। जब भक्त भगवान के लिए द्रवित होता है तो फिर भगवान द्रवित हुए बगैर रह जाते होंगे क्या, ऐसा नहीं है, भगवान भी द्रवित हो जाते हैं अपने भक्त के लिए, भगवान भी प्रसन्न होते हैं अपने भक्त से, और भगवान चाहते हैं अपने भक्तों का कल्याण। तो भगवान जो कि श्रीपति

यानी लक्ष्मीपति हैं, समस्त यज्ञों के पति हैं यानी समस्त यज्ञों के भोक्ता और फलदाता हैं, प्रजापति हैं, जगत पालक हैं, समस्त जीवों के अंतर्यामी हैं, भुवन पालक हैं, जितने भी लोक हैं उनके पालक भगवान ही हैं, और कृपा करके पृथ्वी पर अवतीर्ण होते हैं जब भगवान, तो वो पृथ्वी पालक भी हो जाते हैं, है ना। तो जो निराशयों की गति है ना, जो ये समझ लेता है कि मेरा और कोई आश्रय नहीं है प्रभु आपके सिवा, तो प्रभु उनके भी पालक हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण मुझ पर सदा सर्वदा प्रसन्न रहे। सही बात है, बहुत ही सुंदर श्लोक है जो कि आस्वादन कर रहे हैं सुखदेव जी, और उनके द्वारा आस्वादन कर रहे हैं परीक्षित जी, और हम लोग भी आस्वादन कर रहे हैं। देखिए, जो भक्त होता है ना, वो भगवान को हमेशा साथ रख के चलता है। परीक्षित जी तो ये मान कर बैठ गए थे कि सुखदेव जी अब आ गए हैं, तो अब हमें भगवत उपदेश सुनने को मिलेगा और भगवत लीला का आस्वादन हम कर पाएंगे। भगवत लीला का आस्वादन करा पाए सुखदेव जी, इसी के लिए वो बारंबार बारंबार भगवान के चरणों में नमन प्रस्तुत कर रहे हैं, भगवान के चरणों में स्तुति प्रस्तुत कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं। और देखिए, कभी भी एक भक्त को ये अभिमान नहीं हो सकता कि हाँ मैं भगवान की लीला का गायन कर सकता हूं। अरे, सोचना पड़ेगा कि अनंत देव भी जिनकी लीला का गायन करते करते करते करते उसे पूर्ण नहीं कर पाते हैं, भगवान के दिव्य गुणों का गायन करते हैं और फिर भी कहते हैं कि कुछ हुआ नहीं, तो भला एक भक्त ये कैसे कह सकता है कि हम कर देंगे भगवत लीला का गायन, हम बताएंगे भगवान के बारे में, हो नहीं पाता है, है ना। भक्त तो हमेशा दीनता के भाव से भरा रहता है। सुखदेव जी भी यहाँ अतिशय दीनता का भाव ही प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप सबके ही पति हैं, तो मेरे भी पति, मेरे भी स्वामी आप ही हैं प्रभु, है ना। और देखा जाए, जिसका जितना प्रेम उसमें उतनी ही दीनता भी रहती है, क्योंकि भक्ति से प्रेम प्रकट होता है और प्रेम से दीनता प्रकट होती है। जितनी दीनता उतना प्रेम, और जितना प्रेम उतनी दीनता। इसलिए भक्त कहते हैं, ओहे नाथ मो बड़ो पात की दुराचार, तुम्हार से श्री चरण ना कोरिनु आराधन, वृथा देह बही फिरी भार, विषय दारुण कीट खाइनु पाइया मीठ, विषहनु ज्ञान नहीं होए, तुम्हार भक्त संगे तव नामामृत रंगे, हत चित्त ताहे ना डूबाए, तुम्हें से करुणा सिंधु जगत जीवेरो बंधु, निज कृपा बले जोदि लेहो, पतित पावन नाम घोषणा रहिबे श्याम, जगत कोरिबे एही थे हो, एही कृपा करो प्रभु तुआ भक्त संग कभु, ना छाड़िए जीवने मरणे, तव लीला गुण गाने, डूबुक अमार मने, गोपीकांत करे निवेदने, है ना। भक्त भगवान के चरणों में बस दीनता से प्रार्थना ही करते रहते हैं कि प्रभु देखिए, मैं बहुत पातकी हूँ, पापी हूँ, दुराचारी हूँ, और जिस समय तो मेरा यौवन था, मुझ में बल था, उस समय तो मैंने अपने यौवन को विषय विष को मीठा समझकर खाने में गंवा दिया, आपके चरणों की आराधना नहीं की, पर अब इस देह रूपी भार को बेकार ही लिए लिए फिरता हूं, है ना। मैं तो विषय का कीट हो गया, विषय को ही मीठा समझने लगा, पर विषय में विष है ये समझ ही नहीं आया। भाई, जो भी चीज प्रभु आपसे दूर कर दे वो तो विष ही है, वो देखने में स्वाद में मीठी लगे
मगर वो काम विष का ही कर

रही है। तो प्रभु, दुख का विषय ये है कि मनुष्य जीवन मिला भी और शास्त्रों ने ये कहा भी कि मनुष्य जीवन तो सिर्फ और सिर्फ भगवत आराधना के लिए मिला है, भगवत नाम गान के लिए मिला है, भगवत प्रेम को पाने के लिए मिला है, और ये होगा भगवान के भक्तों के संग में ही। लेकिन तुम्हारे भक्तों का संग मैंने नहीं किया प्रभु, तुम्हारे नामामृत में मैं नहीं डूब पाया। हाय हाय, ये जो हत चित्त है, ये मेरा दुर्भागा चित्त, दुर्भागा मन, ये तो विषय रूपी विष में ही डूबना चाहता है। ये तो आपके नामामृत की तरफ मुड़ता ही नहीं है। तो मैंने बहुत देख लिया अच्छी तरह से अपने इस चित्त को, ये आपकी तरफ नहीं जाता है। परंतु मैंने ये सुना है कि आप प्रभु करुणा सिंधु हैं, भक्तवत्सल हैं और जगत जीव के बंधु हैं। जीव आपसे ही प्रकट है, जीव आपका सनातन अंश है, कहाँ जाएगा? आप समस्त जीवों के सुहृद हैं। आपने ही तो गीता में कहा है कि सुहृदाम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। आप ही ने तो कहा है ना प्रभु कि मैं जगत के जीवों का बंधु हूं। तो फिर आप अगर अपनी कृपा के बल से मुझे खींच लें अपने चरणों में तो काम हो सकता है, मुझ में बल नहीं है। तभी संसार कहेगा कि आप हैं पतित पावन। तब ये जो आपका पतित पावन नाम है ना, इस पर कोई दाग नहीं लगेगा। तो प्रभु, आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांगते हम, बस यही मांगते हैं कि यही कृपा कीजिए कि आप अपने भक्तों के संग में हमें रखिए, और आपके भक्तों का संग हम ना जीवन में छोड़े ना मरण में। जीते जी भक्त संग करें, और भक्त संग करते करते ही उन्हीं के चरणों में शरीर त्याग दें। हे प्रभु, भक्तों के श्रीमुख से आपके लीला गुणगान को सुने और उसमें हमारा मन डूब जाए, बस बस यही निवेदन आपके चरणों में करते हैं। इसके सिवा किसी अन्य प्रार्थना से और भला क्या काम हो सकता है? तो बहुत ही सुंदर श्लोक था आज का, जहां पर भगवान की कृपा की भिक्षा मांग रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, जिन पर चर्चा जारी रखेंगे हम। सुनते रहिएगा समर्पण, और इसी के साथ अब आज्ञा दीजिए प्रेम धारा को, कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार।

प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापार, वाणिज्य और रक्षा सहित आपसी सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की समीक्षा की और

महत्वपूर्ण समझौते हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। भारतीय नौसेना के स्वदेशी स्टील द फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसैनिक बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसेदी से मुलाकात की है। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम सहित पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, यह है आपकी वाणी आकाशवाणी, और अब आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आपकी वाणी के साथ अपनी वाणी मिलाने आ गया आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव। दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहले स्वीकार कीजिए गुड मॉर्निंग, क्योंकि हम लेकर आए हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। दोस्तों, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार इस साल का आज है 192वां दिन और आज है शनिवार। वैसे जब जब हम मिलते हैं तो बोलते हैं कि आज है सोमवार, कल होगा मंगलवार, तो एक सवाल जरूर जहन में आता होगा, मेरे तो आता है कि ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये दिन कब और कैसे शुरू हुए, है ना? और किसने इन दिनों को ये सब नाम दिए, आते हैं ना आपके भी दिमाग में? मेरे भी जहन में आता है, तो मैंने खोजबीन शुरू की और पता चला कि रोमेंस और बेबीलोनियंस ने करीब 2000 से 4000 साल के बीच सूरज, चंद्रमा और दूसरे ग्रहों के देवताओं के नाम पर दिनों के नाम रखे। जैसे रोमन देवता सोल यानी सन, मतलब सूरज के नाम पर रखा गया संडे, ल्यूना यानी मून और इसके नाम पर रखा गया मंडे, युद्ध के देवता यानी मार्स जिसको नॉर्स देवता जैसे टुई या टैर के नाम से बना दिया इन्होंने ट्यूजडे, मरकरी यानी संदेश के देवता मतलब वुडन से मिला हमको वेंसडे, तो वहीं जुपिटर ग्रह यानी देवताओं के राजा मतलब बिजली के देवता थोर से बना थर्सडे, प्रेम की देवी वीनस जिसका मतलब फ्रिग या फ्रेया से नाम रखा गया फ्राइडे का, और आज है सैटरडे और ये सैटर्न यानी खेती के देवता जिसका अर्थ सैटर्न का दिन और मिल गया हमको सैटरडे। जी हाँ, और अगर हम अपनी हिंदी भाषा में दिनों के बारे में बात करें तो सूरज यानी रवि से बना रविवार, चांद यानी सोम से बना सोमवार, मंगल ग्रह से बना मंगलवार, बुध ग्रह से बना बुधवार, बृहस्पति यानी गुरु से बना गुरुवार, शुक्र ग्रह ने दिया हमें शुक्रवार और शनि ग्रह से नाम पड़ा शनिवार। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बेबीलोन वाले बोले आसमान में 7 ग्रह घूम रहे हैं तो हफ्ते में 7 दिन होंगे। जी हाँ, तो वहीं रोमन्स वाले बोले हर दिन के देवता को एक एक दिन दे दो, नॉर्स वाले बोले हम अपने थोर और दिन डाल देते हैं, और हम हिंदुस्तानी बोले हम तो पहले से रवि सोम मंगल को जानते हैं भाई। और फिर 321 एडी में कॉन्स्टेंटाइन भैया थे, इन्होंने इस पर स्टैंप लगा दी और तब से बन गया संडे टू मंडे। लेकिन जरा सोचिए, अगर 8 ग्रह होते 7 की जगह, तो फिर शायद 8 दिन का वीक होता और वीकेंड हो जाता 3 दिन का, क्या मजा आता है ना? अब सोचने में और काश ऐसा होता कहने में क्या जाता है, बस दिल को तसल्ली मिल जाती है ना? ठीक वैसे ही जैसे अक्षय कुमार को फिल्म मोहरा में मिल रही थी जब वो

दोस्तों अक्षय कुमार मोहरा फिल्म में गा रहे हैं कि ऐ काश ऐसा होता दो दिल होते सीने में। अब अगर सीने में दो दिल चाहिए थे तो ऑक्टोपस बन जाना चाहिए था ना, जिसके पास तीन दिल होते हैं ना तीन दिल। अब ऐसा वैसा होता सोचते रहेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं बदलेगा जिंदगी में। हाँ, आपका बीपी जरूर बढ़ जाएगा, आपकी टेंशन आपको बहुत बड़ी लगने लगेगी और आपका होने लगेगा भेजा फ्राई। जी हाँ, छोटी छोटी बातों में आप चिढ़ने लगेंगे, आपको गुस्सा आने लगेगा। इसलिए कहते हैं कि अपनी नजरों को है ना अपनी मंजिल की तरफ लगाए रखना चाहिए और अपने कदमों को हमेशा आगे बढ़ाते रहना चाहिए, और तब तक आगे बढ़ाना चाहिए तब तक जब तक कि आप मत रुकी जब सफलता आपके नजदीक नहीं आ जाती, आपको सफलता मिल नहीं जाती। ठीक वैसे ही जैसे जापान के कोकीचो मिकीमोटो ने अपनी लैब में दुनिया का पहला कृत्रिम रूप से मोती तैयार करने में सफलता पाकर दुनिया को दिखा दिया था कि अगर शिद्दत से कोई काम करो ना तो कामयाबी कदम जरूर चूमती है। और 1893 में आज ही के दिन जापान के व्यवसायी कोकीचो मिकीमोटो ने दुनिया में पहली बार कृत्रिम रूप से मोती तैयार करने में सफलता पाई थी और रच दिया था इतिहास। और आज ही के दिन दोस्तों 1921 में मंगोलिया को आजादी मिली थी चीन के शासन से और वो बना था स्वतंत्र।

स्वतंत्र देश है। और आज ही के दिन 1889 में सोवा बाजार क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने वाला पहला भारतीय दल बना था। और अभी फीफा वर्ल्ड कप का बुखार चढ़ा हुआ है सबको, है ना। तो आपको उस फिल्म का गीत सुनाता हूं जिसका नाम है धन धना धन गोल। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को कल 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। लॉस एंजलिस में खेले गए दूसरे क्वार्टर फाइनल में पहले हाफ तक तो दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी, लेकिन अंत में एक गोल और स्पेन ने कर दिया। फेबियन रुइज और मिकेल मेरिना ने इस गोल को किया और स्पेन को जगह बना दी। दूसरे क्वार्टर फाइनल से सीधे फाइनल तक पहुंच गई, क्या बात है। अब जिस फिल्म की बात मैं कर रहा था ना, धनाधन गोल, ये पूरी फिल्म भी फुटबॉल पर आधारित है और जिसमें जॉन अब्राहम की एक किक ने ना पूरे स्टेडियम को हिला कर रख दिया था। जी हाँ, क्या शोर हो रहा था। वैसे तो मैच में होता ही है ना, यकीन मानिए अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है ना तो देख लीजिएगा, और जब आप देखेंगे ना तो आपको भी फुटबॉल से प्यार हो जाएगा। वो फुटबॉल से प्यार हुआ तो आप भी जॉन अब्राहम और बिपाशा बासु की तरह मिलकर एक दूसरे से प्यार भरी तकरार करते हुए यही गुनगुनाएंगे क्या ये।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर, प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर विद एसआर, एसआर बोले तो संतोष राव। दोस्तों अभी आपने ये गीत सुना 1978 की फिल्म कसमे वादे का, जिसमें अमिताभ बच्चन, रणधीर कपूर और राखी इस खूबसूरत गीत को गाकर एक सुंदर परिवार और समाज की कल्पना कर रहे हैं। अगर आपने देखा है तो आप मेरी बात को समझ जाएंगे। वैसे जब इस धरती की रचना ईश्वर ने की ना, तो एडम और ईव से की थी, ऐसा पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है। तब से समय समय पर ऐसी ही कामनाएं की गई मनुष्यों के द्वारा कि इस धरती पर रहने वाला मनुष्य हमेशा खुश रहे, आबाद रहे, ये कल्पना की गई थी ईश्वर से। लेकिन फिर पाप आया वगैरह वगैरह बहुत सी बातें हुई। लेकिन ये जब ईश्वर ने कहा मनुष्यों से कि आबाद रहो, खुश रहो, और इसी खुशी और आबाद रहने के चक्कर में क्या हुआ कि जब 11 जुलाई 1987 को दुनिया की आबादी 5 अरब पार हुई तो सब हो गए चौकन्ना। जी हाँ, क्योंकि हैरान करने वाली बात यही थी कि अगर इसी तरह जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई तो सबका जीना हो जाएगा दुश्वार। और इसीलिए 11 जुलाई 1989 से विश्व जनसंख्या दिवस को आज के दिन मनाने की शुरुआत हुई, ताकि जन जन तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि बढ़ती आबादी के संकट पर सबको अब ध्यान देना होगा, जनसंख्या को रोकना होगा। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया की आबादी अब पहुंच चुकी है तकरीबन 8 अरब 30 करोड़ से ज्यादा, और वहीं हमारे देश की आबादी पहुंच गई है 1 अरब 47 करोड़ के लगभग। मतलब दुनिया की कुल आबादी का 17.78% है हमारी आबादी का योगदान। आज विचारने और चिंतन करने की जरूरत है, जागरूक बनिए और समझदार भी, क्योंकि कहते हैं ना, छोटा परिवार रहता है हमेशा सुखी परिवार, और जो परिवार सुखी रहता है तो उस सुखी परिवार के सभी सदस्यों के लबों पर रहता है यही गीत। कौन सा? ये वाला।

जी हाँ दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसका आशियाना सुंदर हो, उसके घर में खुशियों की बहार हमेशा हमेशा बनी रहे, सब हंसते रहें, खिलखिलाते रहें और एक साथ रहें, है ना। लेकिन इन सब के लिए है ना कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जो सिर्फ किस्मत के सहारे रहता है ना, उसके सपनों को तो छोड़िए, उसके सर की छत भी है ना हवा का एक तेज झोंका होता है ना तहस नहस कर देता है। लेकिन जो ईमानदारी और लगन से अपना आशियाना सजाते हैं, उस परिवार में ईश्वर भी ऐसी संतान देता है जो उस परिवार का नाम रोशन कर देता है। एक ऐसे ही परिवार था सरदार इंदर सिंह का, जो गांव दुमना जिला रूपनगर पंजाब में रहते थे। और इनके परिवार में आज ही के दिन यानी 11 जुलाई 1902 में जन्म हुआ था सरदार बलदेव सिंह जी का, जो 1947 से 1952 तक भारत के पहले रक्षा मंत्री रहे। आज उनकी जयंती पर आकाशवाणी एफएम रेनबो करता है उनको नमन। दोस्तों आज अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं भारत के मशहूर इंग्लिश लेखक अमिताभ घोष। आपका जन्म आज ही के दिन यानी 11 जुलाई 1956 में कोलकाता में हुआ था। दिल्ली यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई करने वाले अमिताभ घोष की राइटिंग में हिस्ट्री, मिथ और क्लाइमेट का मिक्स देखने को मिलता है। जी हाँ, 2007 में पद्मश्री से सम्मानित अमिताभ घोष को 2018 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया और ये पहले इंग्लिश लेखक भी थे जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगर हम इनकी फेमस किताबों की बात करें, जी हाँ फेमस किताबों की बात करें, तो बहुत से नाम सामने आते हैं, जैसे कि 1988 की द शेडो लाइन्स, 2008 में सी ऑफ पॉपीज, 2011 में रिवर ऑफ स्मोक, 2015 में फ्लड ऑफ फायर, 2004 में था द हंग्री टाइड और 2019 गन आइसलैंड प्रमुख रहे हैं। आज इनके जन्मदिन पर आकाशवाणी एफएम रेनबो की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर विथ एसआर, एसआर बोले तो संतोष राव।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे

0: रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसी सिचुएशन में आप आ जाएं तो आप रोया मत करिए, बल्कि आप आकाशवाणी एफएम रेनबो सुना करिए, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ आपको मिलेगा। जी हाँ, मनोरंजन भी और जानकारियां भी। दोस्तों आज 11 जुलाई और आज पुण्यतिथि एक ऐसे लेखक की जो अपनी कलम से दिखाते थे समाज का आईना। जी हम बात कर रहे हैं भीष्म साहनी जी की, जिन्होंने 11 जुलाई 2003 में दिल्ली में ली थी आखिरी सांस। से भीष्म साहनी जी मशहूर एक्टर बलराज साहनी जी के छोटे भाई थे। अगर हम बात करें भीष्म साहनी जी के मशहूर उपन्यास तमस की, तो जो 1947 के बंटवारे पर आधारित है, तो इसके लिए भीष्म साहनी जी को 1980 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। और जब तमस पर दूरदर्शन पर 1987 में सीरियल बना ना, तो पूरा हिंदुस्तान इसको बड़े चाव से देखा करता था। इसके अलावा इनके तीन उपन्यास भाग्य रेखा, कड़ियां, बसंती, इन तीनों उपन्यासों को भी काफी पसंद किया गया। जहां तक इनकी लिखी कहानियों की अगर हम बात करें तो चीफ की दावत और भटकती राख भी बहुत पसंद की गई। चीफ की दावत तो स्कूलों में भी पढ़ाई जाती है। लेखन के साथ साथ हिंदी साहित्य को आम भाषा में लाने वाले लेखकों में गिने जाने वाले भीष्म साहनी जी को एक्टिंग से बहुत प्यार था, इसीलिए आप थिएटर से भी जुड़े। और 1982 में आई फिल्म गांधी में आपने गांधी जी के भाई का रोल किया था। आज आपकी पुण्यतिथि पर आकाशवाणी एफएम रेनबो करता है शत शत नमन।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और ये प्रोग्राम चलता है ठीक 9 बजे तक। 8 बजे तक मैं आपके साथ रहा और 8 बजे से 9 बजे तक आपके साथ रहेंगे संजीव श्रीवास्तव। तो आप बने रहिए उनके साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। मैं 9 बजे फिर जुड़ूंगा दिल के तराने, गाने नए पुराने लेकर। बने रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो।

सुनिए सुबह 8 बजे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल की वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापार, वाणिज्य और रक्षा सहित आपसी सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की समीक्षा की। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। भारतीय नौसेना के स्वदेशी युद्ध पोत INS महेंद्रगिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसैनिक बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री

अर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भारत की संस्कृति और विरासत के संरक्षण तथा समावेशी विकास के लिए प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान श्री राधाकृष्णन बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को भी संबोधित करेंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा ने राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली हाट में कल मेघालय अनानास महोत्सव 2026 के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन से 4 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा सहित पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोबा का सामना लिंडा नोस्कोबा से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। लॉस एंजल्स के इंगलवुड में खेले गए दूसरे क्वार्टर फाइनल्स के पहले हाफ तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। तो ये थे सुबह 8 बजे के मुख्य समाचार और अब बारी है प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर की।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: जी हाँ, वेलकम बैक प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। बिल्कुल अभी आप संतोष के साथ थे 7 बजे से लेकर 8 बजे तक, और अब 8 बजे से लेकर 9 बजे तक मेरे साथ यानी संजीव श्रीवास्तव संजू के साथ रहेंगे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। एक से बढ़कर एक बातें करेंगे, मौसम की बात करेंगे, दिल्ली के इवेंट्स की बात करेंगे, और भी स्पोर्ट्स से जुड़ी बातें करेंगे, आपके दिल की बात करेंगे हम। शनिवार की सुबह है, बहुत सारे लोगों की छुट्टी है, बहुत सारे लोग काम की तरफ जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और जो भी आप कर रहे हैं फिलहाल हम आपके साथ, आपके हर सफर में साथ हैं, क्योंकि अगर हम हैं तो म्यूज़िक है, और म्यूज़िक है तो मस्ती है, और मस्ती है तो जीवन की खुशी है। तो चलिए आपसे ये मुलाकात का सिलसिला चलता रहेगा।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

वेलकम बैक है जी, प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग डेलेंस। यार आप सुन रहे हैं मेरे साथ यानी संजीव श्रीवास्तव संजू के साथ आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक। वक्त हो गया है 8:13 और 14 मिनट्स की तरफ, मिनट की तरफ सेकंड की सुई लगातार टिक टिक करके आगे बढ़ रही है। शनिवार की सुबह है, दिल्ली का मौसम बहुत प्यारा और लगातार जो बारिश की है झमाझम चल रही है उससे AQI जो है दिल्ली का हमारा वायु गुणवत्ता सूचकांक काफ़ी हद तक बड़ा सुंदर रहा है। और अगर देखें हम खबरों पे खबर डालें नज़र डालें तो पिछले 3 वर्षों में दिल्ली में जो मौसम AQI था उसके मुकाबले बड़ी सुंदर व्यवस्था रही है। AQI बड़ा अच्छा रहा है और स्वच्छ और पोल्यूशन रहित हवा दिल्ली वालों को मिली है, बड़े शुक्र की बात है। इसके लिए हम सबको प्रकृति को धन्यवाद देना चाहिए, साथ ही उन सारी एजेंसीज़ को, उन सारी गवर्नमेंट्स को जो इस दिशा में काम कर रही हैं, और लोगों को भी जो लगातार प्रकृति के सुधार के लिए निरंतर पेड़ों को लगा रहे हैं और हमारे इस पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए निरंतर धरती माँ के इस पर्यावरण को अच्छा और स्वच्छ बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो अभी इस वक्त राइट नाउ टेम्परेचर दिल्ली का है 30 डिग्री सेल्सियस जी। और अगर हम दिन भर में आज बात करें तो कुल मिलाकर शनिवार के दिन में पूरे दिन में 36 डिग्री मैक्सिमम जो टेम्परेचर रहने की संभावना है और जो मिनिमम टेम्परेचर यानी कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और कुल मिला के हम अगर आपको कहें कि दिल्ली में कुछ अगले दिनों में भी आंशिक रूप से अगर हम कहें तो इसी तरह का मौसम बना रहेगा, बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। मौसम है बारिश का भाई, बारिश होनी भी चाहिए क्योंकि बारिश अगर होगी तो जो जल है जो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है वो हम सबको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। इसलिए हम मेघ देवता से ये प्रार्थना करते हैं, ये उनसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप खूब बरसिए और हम हमेशा से आपके साथ थे, आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। प्रकृति के इस वातावरण को सुंदर बनाने की दिशा में हम क्या कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, हम सब मिलकर अपनी प्रकृति को बहुत ही सुंदर और निर्मल बनाने का प्रयास लगातार जारी रखेंगे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक। जी हाँ, यह है म्यूजिकली योर्स यानी आकाशवाणी रेनबो।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

जी हाँ, वेलकम बैक प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आप सुन रहे हैं हमारे साथ और यह है आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक। मैं आपका अपना संजीव श्रीवास्तव, संजू 9 बजे तक आपके साथ रहूंगा। आंखों से होके दिल में उतर जाएंगे, दिल में उतर कर तस्वीर बन जाएंगे, नजरों को झुकाकर चलना वरना जमाने को तुम्हारी आंखों में हम नजर आएंगे।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

वेलकम बैक जी, एक बार पुनः स्वागत आपका प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। वक्त हो गया है 8:26 और 28 मिनट की तरफ सेकंड की सुई दौड़ रही है। वक्त लगातार दौड़ता जाता है और इस वक्त के साथ जो चलता है वो कभी जिंदगी की राह में पिछड़ता नहीं है। हाँ, स्पोर्ट्स की बात हम करने जा रहे थे। बिल्कुल जी, मुझे याद दिला दिया मेरे एक दोस्त ने। ढेर सारे मैसेज आप करते रहते हैं, अच्छा लगता है बहुत ही। आप सुनते हैं हमारे प्रोग्राम को, सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया भर में आप हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं, हमारे आकाशवाणी रेनबो को सुनते हैं। इसके लिए आपको हृदय से आभार, धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। भारत बनाम इंग्लैंड 5वां और आखिरी T20 मैच आज 11 जुलाई को साउथहैम्पटन के रोज बाउल स्टेडियम में खेला जाएगा। इंग्लैंड इस सीरीज में पहले ही अपनी बढ़त बनाकर ट्रॉफी अपने नाम कर चुका है और इसके बाद T20 सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज भी खेली जाएगी, जिसमें भारतीय टीम की कप्तानी शुभमन गिल करेंगे। तो आगे की शुभकामनाएं। मैच जो होते हैं, खेल जो होते हैं, जो भी स्पोर्ट्स है, उसमें एक स्प्रिट होती है, एक भाव होता है, एक भावना होती है। जीते कोई भी, बस हमको इतना ज़रूर हमें भाव रखना होता है कि खेल एक ऐसी भावना से खेले जाते हैं जिसमें सौहार्द होता है। और खेल का जो मूल प्रयोजन है, मूल उद्देश्य, वो यही है कि ना सिर्फ हम अपनी फिजिकल फिटनेस को बनाए रखें, एक आपसी सौहार्द को बनाए रखें, समय समय पर हम अपनी जो एक रूटीन नेटवर्क है उससे हटकर हम एक अलग जो आनंद है, रोमांच है, उसका आनंद लेते रहें। जैसे कि आजकल एक और बहुत ज़बरदस्त रोमांच चल रहा है, वो है फीफा वर्ल्ड कप 2026, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको, जैसे कि हम कहते हैं म्यूजिकल योर्स, हम आपके अपने आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक संजीव आपको सुनाता है ये वाला गाना।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
9: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, Always wherever you are, 102.6 आपके लिए।

जी हाँ, वेलकम बैक प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। आपको बताएं कि अब बात कर रहे हैं हम जबरदस्त मुकाबले की, जो वर्ल्ड कप चल रहा है, फीफा वर्ल्ड कप 2026। जी, इस मुकाबले की सबसे खास और बहुत ही अहम बातें इस बार रही हैं कि क्वार्टर फाइनल तक आते आते, या कहिए कि आप सेमीफाइनल की बात भी हम करें तो वहाँ तक आते आते ये जो मुकाबला है, टूर्नामेंट है, दुनिया का सबसे रोमांचक टूर्नामेंट में से एक बन चुका है। अब हम इसको इसलिए कहें क्योंकि भले ही आप इसे मेरी व्यक्तिगत राय कहें या कुल मिलाकर बात कहें, फिर भी आंकड़े ये बताते हैं कि मैदान पर ये विश्व कप अब तक के सबसे रोमांचक टूर्नामेंट्स में से एक में शामिल हो चुका है। क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इस बार खास हुई हैं, जैसे हर चार में से तीन गोल जो हैं वो ओपन प्ले से हुए हैं। अब इस बात का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि 74.6% जो गोल हैं वो ओपन प्ले से आए हैं, यानी रनिंग खेल के दौरान, ना पेनल्टी और ना ही सेट पीस, कॉर्नर या फ्री किक से। ऐसा पहली बार हुआ है कि सिर्फ 5% गोल पेनल्टी से हुए, जो इतिहास में सबसे कम है। इसके अलावा इस बार 7 मुकाबलों में से 6-6 और 13-13 मैचों में 5-5 गोल हुए हैं, जिसमें टूर्नामेंट के रोमांच को बहुत ज़्यादा इसने बढ़ा दिया। और ख़ास बात इस वर्ल्ड कप की ये भी है, फीफा वर्ल्ड कप की,

सबसे बड़ी खासियत की ये कि आखिरी मिनटों तक मैचेस का रोमांच बना रहा है। नॉकआउट के 24 मैचों में से 8 में विजयी गोल 85वें मिनट में हुके बाद हुए, यानी औसतन हम बात करें तो हर तीसरा मैच अंतिम क्षण तक अनिश्चित बना रहा। ये बहुत ही आनंद की बात थी, जैसे दर्शकों को पूरा आनंद मिला है। वहीं नॉकआउट के 4 मुकाबलों का फैसला भी पेनल्टी शूटआउट से हुआ। इसके अलावा 90वें मिनट और उसके बाद 10 मैचों में विजयी गोल किए गए, जो विश्व कप के इतिहास में अब तक के सबसे अधिक गोल हैं। तो और जहाँ तक रही बात दर्शकों की, तो ज़बरदस्त उत्साह इस फीफा वर्ल्ड कप को लेकर दर्शकों के बीच में है। और अब अगर हम लेटेस्ट बात कर देते हैं तो फ्रांस और स्पेन ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है, जबकि दो बचे हुए जो क्वार्टर फाइनल्स हैं मैच हैं वो कल 12 जुलाई को खेले जाएंगे। और अमेरिका मैक्सिको कनाडा की मेज़बानी में चल रहा टूर्नामेंट ये अब तक के सबसे रोमांचक दौर में पहुँच चुका है। तो देखेंगे कि अभी आगे के मैचेस में क्या होता है और उसके बाद कौन जीता है इस बड़े मुकाबले को। सो फिलहाल एक बहुत ही प्यारा नगमा जो आपको हमारे दिल की बात बताता है।

बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। वक्त हो गया है 9:44, 45 मिनट की तरफ सेकंड की सुई दौड़ रही है। जैसे मैं कहता हूँ, वक्त के साथ चलते रहिए। वक्त हमें ये सिखाता है कि इसका साथ हमें कैसे देना है, तो ये वक्त हमारा साथ कैसे देगा। एक बढ़िया सी खबर आपको बता दें कि विश्व बैंक और पर्यावरण विभाग द्वारा दिल्ली में दिल्ली क्लीन एयर जो प्रोग्राम है, ओरिएंटेशन कार्यशाला, इसका उद्घाटन हो चुका है। और इसके तहत विश्व बैंक के सहयोग से 8,300 करोड़ रुपए की लागत वाले 7 वर्षीय इस कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के प्रयासों को और मजबूती दी जाएगी। इसके तहत नई ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहन नीति, इलेक्ट्रिक बसों का विस्तार और इसके अलावा 32,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट्स की भी स्थापना की जाएगी। धूल और कचरे और खुले में कचरा जलाने के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी इसमें प्रावधान है। 70 लाख पेड़ों का रोपण और यमुना पुनर्जीवन परियोजना जैसी पहले जो हैं इस कार्यक्रम के तहत दिल्ली को अधिक स्वच्छ, स्वस्थ और बड़ा ही शानदार एक पर्यावरण को देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। तो इसमें हम अपनी कितनी भूमिका निभा सकते हैं, ये हमारा दायित्व है, क्योंकि हम दिल्ली में रह रहे हैं, हम दिल्ली वाले हैं भाई। और दिल्ली के अलावा भी आप अपने पूरे देश में जहाँ भी हम रहते हैं, पूरी दुनिया में जहाँ भी हम रहते हैं, ये हमारा दायित्व है कि अपने पर्यावरण की रक्षा हम कैसे करें। और एक बहुत ही प्यारा सा नगमा है लता जी का, जो हम आपको ज़रूर सुनाएंगे अपने इस प्रोग्राम में, और उसके बाद आगे भी कुछ बातें हैं जो आपसे ज़रूर करेंगे।

जी हाँ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, और आपके साथ मैं आपका संजीव श्रीवास्तव संजू। अगर आप फूडी हैं तो जी व्यंजन किसको पसंद नहीं है, खाना किसको पसंद नहीं है, और ख़ासतौर पर बरसात के मौसम में आए हाय गर्म गर्मा गर्म पकौड़े, जब किचन से उनकी खुशबू आती है तरह तरह से, क्या बात है, प्याज के और आलू के, बैंगन के, हमारे तो सब्जियां भी इतनी सारी हैं देश में, बस क्या कहें कि हमारा देश बहुत ही कमाल का देश है। हमारे यहाँ देखिए हर तरह का सीज़न है, हर तरह के मौसम है, हर तरह की सब्जियां हैं, हर तरह के फल हैं, हमारे यहाँ हर तरह के लोग हैं, हर तरह की ड्रेसेस हैं, हर तरह के राज्य हैं, इतनी विविधता कहीं नहीं मिल सकती। इसलिए तो हम कहते हैं कि हम भारतवासी हैं, हमारा देश महान है। तो ऐसा ही एक बहुत ही शानदार फेस्टिवल हमारे एक बहुत ही प्यारे से स्टेट का, जिसका नाम है मेघालय, यानी

बादलों का आलिया, यानी बादलों का घर, उससे जुड़ा ये फेस्टिवल है फोर्थ मेघालय पाइन एप्पल फेस्टिवल 2026। ये दिल्ली के INA दिल्ली हार्ट में 10 से 12 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है, शुरू वहाँ चल रहा है इस वक्त, आप जा सकते हैं। इस 3 दिवसीय आयोजन का मुख्य आकर्षण क्या है, वो है मेघालय के प्रीमियम और कम एसिडिटी वाले केव यानी अनानास, स्थानीय उत्पाद और वहाँ की समृद्ध जो जनजातीय कृषि संस्कृति है उसका प्रदर्शन यहाँ पर होगा। आप बिल्कुल जा सकते हैं यहाँ पर और जाके इस सबसे मीठे केव पाइनएप्पल का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा लाइव म्यूज़िक है, हैंडीक्राफ्ट्स का आनंद ले सकते हैं आप। और इसके लिए अगर मैं पुनः आपको बता दूं आपको जाना है तो कहाँ जाना है आपको, INA दिल्ली हाट। समय है दोपहर 12 बजे से रात के 9 बजे तक और जो फेस्टिवल एरिया है वहाँ पर इस एरिया में एंट्री फ्री है, लेकिन दिल्ली हाट में जाने का जो सामान्य टिकट है शुल्क है वो आपको वहाँ देना होगा। तो बिल्कुल जाइए और जाके आनंद करिए, ठीक है ना, और आनंद लीजिएगा इस प्यारे से फल का जो बहुत ही मीठा है और मेघालय से आपके लिए दिल्ली में आया है।

जहाँ यूं ही हमारी बाहों के दरमियाँ बने रही है आप, ये प्यार है हमारा और आपका जो हमेशा चलता रहेगा। अभी प्रोग्राम दिल के तराने गाने नए पुराने में संतोष फिर से आ गए हैं, मेरे बहुत प्यारे दोस्त बिल्कुल मेरे पीछे खड़े हैं। संतोष कहाँ हो मेरे दोस्त? देखा, सुबह सुबह मुर्गे ने भाग दी। संतोष बहुत प्यारे दोस्त है मेरे, बहुत लंबे समय से मैं इनके साथ हूँ और ये मेरे साथ हैं, और ऐसी दोस्ती आप भी बना के रखिए जो जिससे आप अपने दिल की बात कह सकें, उसे कंधे पर अपना सिर रख सकें, है ना। फिलहाल इसी वादे के साथ कि पुनः मुलाकात होगी आपसे जल्द ही, मुझे यानी संजीव श्रीवास्तव संजू को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।

प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की, मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश भी दिए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं दिल्ली में आज गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। और अंत में फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो प्रोग्राम। अब शुरू होगा दिल के तराने, गाने नए पुराने, पूरे एक घंटे नॉनस्टॉप गीत संगीत का आनंद लीजिए आप अपने दोस्त एसआर यानी संतोष राव के साथ आकाशवाणी एफएम रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक। रेनबो 10

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर आकाशवाणी एफएम रेनबो पर इसी समय, मतलब गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर और दिल की तरह गाने नए पुराने पर। लेकिन आप बने रहिए क्योंकि 11 बजे से आपके साथ जुड़ जाएंगी अदिति बिष्ट लेकर आ रही हैं मैचलेस म्यूजिक आर। तो बने रहिए और सुनते रहिए, फिर मिलेंगे।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैचलेस म्यूजिक आवर ऑन 102.6 आकाशवाणी रेनबो। आई एम अदिति एंड आई हैव गॉट अ फ्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स टू शेयर विद यू दिस मॉर्निंग, बट अबव ऑल वी गॉट अ प्लेलिस्ट दैट्स गोइंग टू हॉप फ्रॉम वन म्यूजिकल एरा टू अनदर, फ्रॉम द डेज ऑफ रॉक एंड रोल टू द कलरफुल डेकेड्स दैट फॉलोड। सो देयर इज गोइंग टू बी अ होल लॉट ऑफ शेकिंग। हियर इज द क्वीन ऑफ रॉकबिली, वांडा जैक्सन, स्टार्टिंग इट ऑल फॉर अस।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

0: की वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, लीजिए सुनिए सुबह 11 बजे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंच गए हैं। ऑकलैंड में भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने संयुक्त वक्तव्य में बताया कि इस दौरान दोनों पक्षों के बीच आपसी हित के मुद्दों से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं। उधर ओमान के मस्कत में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन हमद अल बुसैदी से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापत्तनम में नौसेना के बेड़े में 6वें स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी को शामिल किया। ये पोत 17A परियोजना के अंतर्गत बनाया गया है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मानसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भी आज बिहार में गयाजी के दौरे पर रहेंगे। मुंबई में अत्यधिक बारिश और भूस्खलन की घटनाओं से मुंबई पुणे रेल मार्ग पर रेल सेवाएं प्रभावित हैं। इस बीच सेंट्रल रेलवे ने 17 जुलाई तक 22 नियमित और 8 विशेष रेलगाड़ियां रद्द की हैं। खेलों की दुनिया में अगर नजर डालें तो विंबलडन टेनिस के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में इटली के यानिक सिनर ने 7 बार के विंबलडन विजेता नोवाक जोकोविच को हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में भी प्रवेश कर लिया है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

दिल के वीराने में एक सोए हुए शहर को जगाने के लिए तो ये गुड मॉर्निंग हुई है, एक नई सुबह हुई है, नई शुरुआत हुई है और हमारी हिंदी फिल्मों की दुनिया का ताज़ा हाल लेकर मैं भी तो आई हूँ आपके लिए बॉलीवुड ट्रेल्स ये प्रोग्राम लेकर, जिसमें हम करते हैं ये सारी बातें कि बॉलीवुड के गलियारों में क्या कुछ खास हो रहा है, कौन सी मूवी रिलीज़ हुई है, बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन क्या है, न्यू प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, कौन से बॉलीवुड सेलेब अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं। तो इन सभी के साथ मैं सोनू भट्ट आ गई हूँ आपके लिए लेकर ये बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही लेटेस्ट खबरों से बना हुआ, भरा हुआ और एक बहुत ही एंटरटेनिंग और मसालेदार प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं बॉलीवुड ट्रेल्स। और इसमें बने रहिए आप हमारे साथ, सुनते रहिए हमें आप आकाशवाणी रेनबो के जरिए 102.6 MHz पर।

ब्यूटीफुल ट्रैक और इसके जस्ट बाद एक बहुत ही कमाल की खबर लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, जो कि बॉलीवुड से आई है। मोस्ट एंटिसिपेटेड कॉमेडी फिल्मों की बात करें तो उसमें शुमार धमाल 4, जिसका बहुत ही इंतजार था, सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। कल बीते दिन ये रिलीज हुई है। मल्टी स्टारर ये मूवी है, इंद्र कुमार के निर्देशन में बनी है और पहले ही दिन इसने बहुत ही अच्छी कमाई करके साबित कर दिया कि दर्शकों को इस फिल्म का इंतजार तो था ही। इसके जो छोटे छोटे टीजर आ रहे थे उनमें इनके जो पंचेस दिखा रहे थे, जो जोक वाले पंचेस थे, कॉमेडी के पंचेस थे, वो अच्छे से लैंड कर रहे थे। तो कुल मिलाकर एक उम्मीद की जा सकती है कि अच्छी एक फिल्म, एक कॉमेडी फिल्म देखने को मिलेगी और इतनी बड़ी स्टार कास्ट है इसमें, एक से एक बड़े इसमें स्टार शामिल हैं, तो उम्मीद है कि इस फिल्म में की कहानी भी बांधे रखेगी लोगों को। खैर, इट्स टू अर्ली टू जज, एक हफ्ता होने दीजिए, पता चल जाएगा क्या कमियां रही, क्या अच्छा लगा, किन पर काम करने की ज़रूरत है। अभी तो शुरुआती क्रेज है, तो बहुत बड़ी मात्रा में जो दर्शक हैं वो पहुंच रहे हैं वहां पर, बड़ी संख्या में वहां तक पहुंच रहे हैं। और बात करें इस कमाई की, इसकी तो अजय देवगन की फिल्म है, अपने आप में बड़ा नाम है। पहले दिन जो घरेलू

बॉक्स ऑफिस की बात करें तो 13.75 करोड़ की ओपनिंग कलेक्शन की है, जो कि एक बहुत अच्छा आंकड़ा है। और कई फिल्म्स जो हैं लगभग छोटी मोटी मिला के जो पिछले दिनों रिलीज हुई 10 फिल्म्स, उनका रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है पहले दिन की इस कमाई से। और इंडियन ग्रॉस और ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो इन सब में भी अच्छा काम करते हुए ये पहुंच गई है, लगभग 5 करोड़ का कलेक्शन यहाँ पर किया है। तो 21.50, इसका ये मतलब है कि 21.50 करोड़ तक ये पहुंच गई है, बिजनेस कर लिया है। और ये देखिए, कल रिलीज हुई फिल्म 10 तारीख को, आज 11 तारीख है, तो हम मान के चल रहे हैं कि एक ही दिन मिला है फिल्म को, लेकिन अच्छा ये कमाई कर लेगी। और मुझे तो लगता है ये अपनी जो कॉस्टिंग है उसको भी निकाल लेगी जल्दी। और वीकेंड है, तो वीकेंड पे तो उम्मीद है कि बहुत बड़ी मात्रा में, संख्या में लोग वहाँ पर ज़रूर पहुँचेंगे और अपने अपने पसंदीदा हीरो को देखने के लिए लोग पहुँचते ही हैं। और जहाँ तक बात करें अजय देवगन की, तो उनका क्रेज़ है ही, और अरशद भी इसमें नज़र आए, और बहुत सारे और भी कलाकार इसमें हैं जो अपने हुनर को दिखाने वाले हैं। तो चलिए, इस फिल्म को अगर मौका मिले और अगर आप पसंद करते हैं इनमें से किसी भी कलाकार को, तो जरूर पहुंचेगा थिएटर में देखने के लिए इस फिल्म को।

ब्यूटीफुल ट्रैक, और इस ट्रैक के बाद एक बहुत ही कमाल की इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ मैं आपको, वो भी है राघव जुयाल से जुड़ी हुई। राघव ने कल अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है, काफ़ी अच्छी पार्टी भी रही उनकी, और इसी दौरान इस उनके बर्थडे के उपलक्ष्य में ही द पैराडाइज नाम से राघव जुयाल की जिसमें अहम भूमिका में वाले हैं, नजर आने वाले हैं, उसका पोस्टर रिलीज किया फिल्म मेकर्स ने। उनके किरदार का नाम इसमें है विक्रम मलिक, और इस फिल्म में अभिनेता का जो रोल है वो नेगेटिव रोल है, तो विक्रम मलिक की भूमिका में नजर आने वाले हैं। और कल ही ये पोस्टर जो है रिलीज हुआ है, एक तरह से उन्हें बर्थडे गिफ्ट की तरह दिया गया, उस पर विशेज भी लिखी गई उनके बर्थडे की शुभकामनाएं देते हुए इसको रिलीज किया गया। और राघव की अगर बात करें तो इन्होंने अपना करियर जब स्टार्ट किया था एक डांसर के रूप में स्टार्ट किया था, और अपना जो स्लो मोशन का डांस है उससे इन्होंने सारे लोगों को बहुत प्रभावित किया। उसके बाद ये एंकरिंग की दुनिया में भी आए, फिर ये ABCD फिल्म से इन्होंने जब डेब्यू किया, जो कि एक बहुत ही डांसिंग थीम पर बनी हुई फिल्म थी और लोगों ने पसंद किया, वहां पर नजर आया इनका एक्टिंग टैलेंट कि वे बहुत अच्छे से एक्टिंग भी कर लेते हैं, अपने किरदार को निभा लेते हैं, उसमें जान फूंक देते हैं। और उसके बाद इन्होंने बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन किया अपना। किल और बैट्स ऑफ बॉलीवुड में हम सभी ने राघव जुयाल को बहुत ही अच्छी अदाकारी करते हुए देखा है और दर्शकों का दिल जीतते हुए भी देखा है, और वैसे भी बहुत सॉफ्ट स्पोकन पोलाइट हैं और देखने में बेहद शानदार दिखते हैं, अपने आप पे निरंतर काम करते रहते हैं, तो ये बहुत अच्छे उभर कर आते हैं जब सिल्वर स्क्रीन पर आते हैं। और अब ये जो फिल्म है ना, ये तेलुगु फिल्म है इनिशियली, तो इसमें ये अपने अभिनय का जलवा दिखाने वाले हैं, हालांकि बाद में इस फिल्म को हिंदी, तमिल, इंग्लिश, स्पेनिश, बंगाली, कन्नड़ और मलयालम कुल 8 भाषाओं में साथ ही में रिलीज़ किया जाएगा, और ये अगस्त में रिलीज़ हो जाएगी। और फिल्म में जो है आपको बताएं कि जो लीड रोल है वो अभिनेता नानी नज़र आएंगे इसमें, जिन्हें नेचुरल स्टार भी कहा जाता है, उनकी तो अपनी ही गजब फैन फॉलोइंग है, तो फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित होने वाली ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही हैं। और इसके जो इसका निर्देशन है वो श्रीकांत ओदेला ने किया है, और राघव एक बहुत ही सशक्त भूमिका में नज़र आने वाले हैं। नेगेटिव रोल अपने आप में कमाल का होता है, अगर वो बिल्कुल वैसा ही उभर कर आ जाए पर्दे पे जैसा कि वो लिखा गया है, और निभाने वाला उसको बिल्कुल वैसे ही जी जाए, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी राघव के लिए। उनके बर्थडे पर सामने आई है टीज़र, और आज ये खबर आपके सामने इस बॉलीवुड ट्रेल्स के ज़रिए। हम विश करते हैं इन्हें लक और कि अच्छा काम करें और इसी तरह से एंटरटेन करते रहें इस फिल्मी दुनिया में सभी देखने वाले और सुनने वालों को। सुनते रहिए आप बॉलीवुड ट्रेल्स।

0: वाले एक मौका तो इस गाने ने दिया है नाचने का, और दूसरा जो मौका दे रही हूँ मैं सेलिब्रेट करने का, बॉलीवुड सरताज में पार्टिसिपेट करके जीतने का, और फिर उसके सेलिब्रेशन का। यानी कि पूछने जा रही हूँ मैं आपसे बॉलीवुड सरताज वो का सवाल, जो सवाल आप सही जवाब के साथ हमसे जुड़ सकते हैं उस सवाल के सही जवाब के साथ, और एक सेलिब्रेशन का चांस हमें और आपको दोनों को मिलकर मिल सकता है अगर हमारी बात हो जाए तो, है ना। तो आप बॉलीवुड सरताज के इस क्विज में पार्टिसिपेट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। सवाल ये है कि आज बर्थडे है कुमार गौरव का। कुमार गौरव बहुत ही शालीन और बहुत ही कहते हैं चॉकलेटी हीरो, अब जो कि रातों रात स्टार बन गए थे अपनी एक फिल्म से जो कि रिलीज़ हुई थी और बहुत पसंद आई थी युवाओं को, और ख़ास तौर पर जो हमारे बिल्कुल कॉलेज के जो लड़के लड़कियाँ थे उनको बहुत ही फिल्म पसंद आई थी। एक लखनऊ, ये लखनऊ में जन्मे थे, उत्तर प्रदेश लखनऊ में जन्मे, और 11 जुलाई को यानी कि आज के दिन ये जन्मे, और बहुत सी फिल्मों में अपने कुमार गौरव को देखा भी होगा, जैसे नाम में, स्टार मूवी में, तेरे कसम में और कांटे जैसी फिल्मों में, और मेरी मोर्स एक लंबी लिस्ट है, फेरिस्ट है, और जुबली स्टार और हमारे जो लेजेंडरी एक्टर माने जाते थे राजेंद्र कुमार, उनके ये बेटे हैं। अब ये सब तो मैंने बता दिया, आपको ये भी बता दिया कि किस तरह से वो स्टार बने, रातों रात बने। आपको पता है क्या बताना, आपको बताना है वो फिल्म कौन सी थी, यानी कि उनकी जो पहली फिल्म थी, जो डेब्यू मूवी थी, जिसकी वजह से वो ओवरनाइट सेंसेशन बन गए थे और सबके जहन में उन्हीं का नाम था, सबकी आंखों में उन्हीं की तस्वीर थी उस समय जिन्होंने उन्हें देखा 1981 में सिल्वर स्क्रीन में। आपको उस फिल्म का नाम बताना है, बताने का तरीका बिल्कुल वही है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए 9868107070 इज द नंबर। सही जवाब सबसे पहले जिन्होंने हम तक पहुंचाया है वो बनेंगे हमारे बॉलीवुड सरताज, और उनसे हम बातचीत का सिलसिला जो है आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आप सुनते रहिए इसी तरह से आकाशवाणी रेनबो।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR खर्च, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
3: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा, जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है,
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
6: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा, ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।

0: परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

कल मैंने गाना इसीलिए प्ले किया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि एक मोड़ और आया है सनी देओल की जिंदगी में, जो कि है OTT की तरफ उनको लेकर गया और उन्होंने OTT पर एंट्री कर ली है 10 जुलाई को बड़े पर्दे के। बहुत ही धमाकेदार ये एक्टर रहे, लेकिन अब ये OTT पर भी अपना जलवा बिखेरने को तैयार है। फिल्म का नाम है इक्का, ये रिलीज हो चुकी है और ये एक बहुत ही इंटेंस कोर्ट रूम ड्रामा है जिसमें सनी देओल के साथ नजर आएंगे अक्षय खन्ना भी। अक्षय खन्ना आपको पता है ये दोनों कब नजर आए थे, कितने साल पहले, लगभग 30 साल पहले नजर आए थे बॉर्डर फिल्म में और तब भी कमाल हुई थी वो फिल्म। और इससे भी उम्मीदें की जा रही हैं कि अच्छी बनेगी। और एक कोर्ट रूम ड्रामा जो है वो अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं और हमारी जो हिंदुस्तानी जनता है उसे देखना बहुत पसंद करती है, हमारे दर्शकों को अच्छा लगता है। और इस फिल्म की लंबाई जो है वो है लगभग 2 घंटे 20 मिनट और अभी तक का इसका जो रिस्पॉन्स है वो यही है कि लोगों को पसंद आ रहा है और ख़ासतौर पर सनी देओल और अक्षय खन्ना जो एक दूसरे के सामने हैं, दमदार कलाकार हैं, दमदार इनकी एक्टिंग है, तो ये उम्मीद और बढ़ाती है। फिल्म अर्जुन मेहरा के किरदार में नजर आ रहे हैं इसमें सनी देओल और एक बने हैं वकील और इसी के जरिए सनी देओल का जो OTT का डेब्यू जो है वो हो चुका है। कितनी अच्छी बात है ना, एक्टर्स अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं, सिर्फ एक बड़े पर्दे सिल्वर स्क्रीन तक ही नहीं लेकिन पहुंच रहे हैं अब उस माध्यम से भी लोगों तक जो कि अब हम लोग OTT तो चलते फिरते कभी भी देख लेते, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोगों को नहीं समय मिल पाता कि हम पहुंचे थिएटर्स तक, लेकिन OTT के माध्यम से वो और दिल तक पहुँच रहे हैं, लोगों के बिल्कुल हाथ में मोबाइल है, उसके ज़रिए आप कहीं भी कभी भी जुड़ सकते हैं और इस फिल्म को देख सकते हैं और उम्मीद है ये फिल्म सभी को पसंद आएगी। इक्का इस फिल्म का नाम है, 10 जुलाई को रिलीज हुई है।

वाली गाना मैंने आप तक पहुंचाया इसलिए क्योंकि ऋतिक से जुड़ी हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट छोटी सी मैं आप तक पहुंचाने जा रही हूं कि ऋतिक शायद अब हां बोलने वाले हैं डायरेक्टर लक्ष्मण उतेरकर की फिल्म के लिए, क्योंकि उन्होंने इसको अप्रोच किया है डायरेक्टर ने ऋतिक को। बहुत ज्यादा डिटेल्स तो सामने नहीं है, लेकिन हम सभी जानते हैं लुका छुपी, मिमी और जरा हट के जरा बच के जैसी कामयाब स्मॉल टाउन स्टोरीज को लेकर आए लक्ष्मण विक्की कौशल के साथ बना चुके हैं बड़ा पीरियड ड्रामा चावा, जिसने 800 करोड़ का बिजनेस किया था। और उम्मीद है कि ऋतिक को लेकर भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, और ऋतिक इसमें हाँ बोल दें तो एक बहुत ही अच्छी जोड़ी, कमाल के दो एक्टर दमदार फिल्म के साथ देखने को इसमें मिलेंगे।

और इसी ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ ही मैं बताने जा रही हूँ आपको बॉलीवुड सरताज का नाम भी। हम कोशिश कर रहे थे लेकिन उनसे संपर्क नहीं बन पाया, फोन पर तो बात नहीं हो पाई, लेकिन नाम जरूर आप तक पहुंचाया जाएगा। अमरदीप कुमार बने हैं हमारे आज के बॉलीवुड सरताज बिल्कुल सही जवाब के साथ, और इनके साथ ही साथ बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास पहुंचे हैं जिन्होंने सही जवाब दिए, जैसे अमित कुमार ने पालम से, तनुजा शाह ने महाराष्ट्र से, रंजीत कुमार मंडल ने सिकटी अररिया बिहार से, अर्चना जुड़ी हमारे साथ मुखर्जी नगर से, सुखलाल बाला जुड़े वेस्ट बंगाल से, विनीत उत्तर प्रदेश बदायूं शहर से हमारे साथ जुड़े हैं, और सही आंसर है लव स्टोरी। यही वो फिल्म थी जिसने कुमार गौरव को रातों रात ओवरनाइट एक सेंसेशन बना दिया था और सबके दिलों पर वो राज करने लगे थे, खासतौर पर जब हम युवाओं की बात करते हैं, यूथ में वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। ये फिल्म 1981 में आई थी और इस फिल्म को बनाया था इन्हीं के फादर ने इनको लॉन्च करने के लिए, और इसमें विजेता पंडित नज़र आई थी इनके सामने, दोनों की ही डेब्यू फिल्म थी, बहुत ही ब्यूटीफुल इस फिल्म के गाने थे। और अब गाना सुनाने का तो ज़रूर ये जो मौका है वो मेरे हाथ से जाता

0: दिख रहा है क्योंकि समय उतना नहीं इजाजत दे रहा है, लेकिन गानों की जहां तक बात हुई है, मेरा वाला सॉन्ग में आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपनी पसंद का गाना, उसमें जरूर आपकी मेरी मुलाकात होगी 12 से 1 के बीच में। फिलहाल अदिति आ गई हैं आपके लिए प्रोग्राम लेकर, और इनके साथ बने रहिए आप और इंजॉय करते रहिए इसी तरह से आकाशवाणी का चैनल रेनबो म्यूजिक।
1: तिरछी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: मैं माँ बनने वाली हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा स्वस्थ हो।
3: स्वस्थ बच्चे के लिए गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच करवाना बहुत जरूरी है।
2: क्या ये जांच उपलब्ध है?
4: जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में HIV और सिफिलिस की जांच तथा उपचार निःशुल्क उपलब्ध है। समय पर जांच और उपचार से माँ और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
5: याद रखें, HIV और सिफिलिस का समय पर पता लगने से संक्रमण को बच्चे तक पहुंचने से रोका जा सकता है।
4: गर्भावस्था में HIV और सिफिलिस की जांच अवश्य करवाएं। स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ परिवार।
5: अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
6: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
7: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस

समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुं सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
6: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
5: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
7: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
8: ठीक है,
7: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। कैसे डिपॉजिट करेंगे? डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
6: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
5: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
9: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
5: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
6: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
5: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
6: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
5: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
6: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
5: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
6: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
10: कोयल सी तेरी बोली,
11: आए हाय,
10: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
11: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
10: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
11: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
12: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, लीजिए सुनिए दोपहर एक बजे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों के बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास पर केंद्रित है। सिक्किम एक बार फिर देश के सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपये से अधिक रही। अमरीका में ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें ईरान के नेतृत्व से जुड़े व्यक्तियों और वित्तीय नेटवर्कों को निशाना बनाया गया है। और खेलों में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में एक विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो।

0: मेरी वाणी आकाशवाणी,
1: आपकी वाणी आकाशवाणी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। दोपहर के 1:03 लगभग होने जा रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ सोनू भट्ट। प्रोग्राम शुरू हो गया। मेरा वाला सॉन्ग ये वही प्रोग्राम है जिसमें आपकी पसंद के गाने हम तक पहुंच रहे हैं। और जैसा कि अदिति ने बताया कि बहुत से मैसेजेस हैं जो कि समय से थोड़ा पहले ही पहुंचने लग गए हैं। और मुझे बताया, एक्साइटमेंट बनी रहती है कि हमारी पसंद का गाना रेडियो पर चल जाए किसी तरह से। तो ये सभी में रहती है। ये अगर मैं माइक के इस तरफ ना होके उस तरफ होती, रेडियो सेट पर सुन रही होती, तो मैं भी यही सोच रही होती एक रिक्वेस्ट भेजने के बाद कि अब मेरा वाला गाना आएगा, अब मेरा वाला गाना आएगा। और ये होता है, ये बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है और ये होनी भी चाहिए। एक्साइटमेंट आपको जिंदा रखती है। ये एक्साइटमेंट, ये बच्चों जैसी किसी भी चीज़ को लेकर क्यूरियोसिटी और अपनी बारी का इंतज़ार, कितना अच्छा लगता है ना कि हमारी पसंद की चीज़ आने वाली है और उसका बेसब्री से इंतज़ार होता है। तो यही वो प्रोग्राम है, मेरा वाला सॉन्ग। इसमें आप ज़रूर एक अच्छा ब्यूटीफुल सा गाना जो आपको लगता है कि आप सुनना चाहते हैं, किसी को सुनवाना भी चाहते हैं, एक अच्छे से मैसेज के साथ भी आप मुझे भेज सकते हैं। कोई पुरानी याद को ताज़ा करता हुआ आप अपनी रिक्वेस्ट को हम तक भेज सकते हैं। 9868107070 इज द नंबर, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और मैं पहले ही बता देती हूँ आपको कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बहुत सारी रिक्वेस्ट हम ले सकें और इन गानों को एयर कर सकें, लेकिन जो रह जाएंगे वो नाराज़ मत होइएगा। आप हर गाने के साथ इन्जॉय कीजिए क्योंकि हर गाने के लिरिक्स बहुत अच्छे होते हैं, हर सॉन्ग आपको कुछ ना कुछ सिखाई देता है। आपका मन का मैसेज ना पहुँचा, किसी और के मन का मैसेज पहुँच गया आप तक, कितनी बड़ी बात है ना। लेकिन पहला गाना तो मेरी तरफ से, ये मेरी पसंद का गाना। अब आपके गाने इन्वाइट करती हूँ मैं। 9868107

वजीर फिल्म से बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक मैंने आपको सुनवाया अमिताभ और फरहान की आवाज में, अमिताभ बच्चन साहब की बहुत ही ब्यूटीफुल इसमें आवाज थी। और आप जो आवाज सुनने जा रहे हैं उदित नारायण साहब की, ये फिल्म है राजा हिंदुस्तानी। अनुज राठी की आई है ये रिक्वेस्ट मेरठ से अपनी दोस्त पूजा के लिए, तो ये गाना

वेल आई एम श्योर ये गाना आपको बहुत पसंद आएगा। उदित नारायण साहब की आवाज तो वैसे ही अपने आप में लाजवाब है। और अगला गाना जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है, जो कि फिल्म जब वी मेट से मैं चलाने जा रही हूँ आपके लिए। प्रदीप सलूजा और संगीता सलूजा जी की रिक्वेस्ट आई है जनकपुरी नई दिल्ली से। और साथ ही साथ कमाल की बात यह है कि जैद और हुदा की जो रिक्वेस्ट है वो भी सेम है जब वी मेट से, यही ब्यूटीफुल ट्रैक की। गाजियाबाद यूपी से लिख रहे हैं, तो दो नहीं चार लोगों के मन का गाना है ये। इसको एंजॉय कीजिए और आई एम श्योर कि हमारी जो बड़ी तादाद होगी जो लिसनर्स हमें सुन रहे हैं उनको भी ये गाना बहुत पसंद आएगा, मोहित चौहान की आवाज़ में फ्रॉम द मूवी जब वी मेट।

वेल, इसी ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ ही एक और गाने की रिक्वेस्ट आई है अंशी शर्मा की हस्तिनापुर मेरठ से, और ये जो गाना है जो इन्हें पसंद है वो है तुमसे मिलना बातें करना। ये गाना हमें भी पसंद है और ये गाना बहुत सारे लोगों को और पसंद है।

वेल, तो आप सभी को एक दूसरे से बात करना और स्पेशली हमसे बात करना और हमें आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है. तो ये ब्यूटीफुल ट्रैक था अंशी के लिए. और अब रंजीत का आया है मुकुंदपुर दिल्ली से, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक की रिक्वेस्ट आई है जो कि है पापा कहते हैं फिल्म से. गाने बहुत बहुत खूबसूरत है, इसे सुनिए आप और फिर अगले ही रिक्वेस्ट पर जाते हैं आपकी, प्ले करते हैं. 9868107070 इज द नंबर. आप से रिक्वेस्ट है कि ब्यूटीफुल सा कोई ट्रैक जो आपके मन में इस समय चल रहा हो वो हमें लिख के भेजें.

बिल्कुल सही बात है, ये गाने ने कही है कि या तो आप ही जानते हैं मैं ही जानती हूँ, आप जानते हैं कि आप रिक्वेस्ट करें और मैं जानती हूँ कि मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ कि सभी के पसंद के गाने ऑन एयर हो सके। समय सीमा हमेशा बंधी होती है, इसलिए मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि जो भी गाना चलेगा उसको इन्जॉय कीजिएगा, नाराजगी बिल्कुल मत जताइएगा। ऐसी बात नहीं कि मुझे आपके मैसेज नहीं पता चल रहा है या फिर मैं आपका मैसेज पढ़ नहीं पा रही हूँ, पढ़ पा रही हूँ, लेकिन उस गाने को मैं आपके लिए ढूंढ के ला रही हूँ, चला रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि आपके मन की बात पूरी हो जाए। तो थोड़ा सा धैर्य के साथ एंजॉय करते रहिए आप आकाशवाणी रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है मेरा वाला सॉन्ग, मैं हूँ आपके साथ सोनू भट्ट। एंड यस, ये तो मैं बताना भूल गई कि ये प्रमिला ने कहा है कर्नाटका से, ये मैसेज उनका है, ये पसंद उनकी है।

और इसी ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ ही होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से मेरे पास आए हैं कई सारे मैसेजेस और उन्हें लगता है कि मैं उनका गाना नहीं प्ले कर रही हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए आपकी पसंद का गाना बिल्कुल चल चुका है बैकग्राउंड में और इन लोगों के नाम मैं लेती हूँ। जयराम खोरवाल है, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल और उन्होंने बहुत सारे गानों की रिक्वेस्ट की थी जिसमें से ये गाना मैं चुन के आपके लिए लेकर आई हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने इतने सारे गाने मुझे भेजे हैं। जब जब मौका मिलेगा हम सॉन्ग्स को प्ले करते रहेंगे। आप हमारे हर प्रोग्राम से जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए इंजॉय कीजिए आप ये वाला गाना, आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक प्रोग्राम चल रहा है मेरा वाला सॉन्ग। और ये जो गाना अब मैं चलाने जा रही हूँ वो गाना है मास्टर राधे श्याम शाक्य की तरफ से। गुड आफ्टरनून लिख रहे हैं और इनको एक गाना बहुत पसंद है, हिमलता की आवाज़ है ये, फिल्म है नदिया के पार, कौन दिशा में लेके चला रहे बटोहिया। ये गाना बहुत वैसे भी बहुत पसंद है, सभी को पसंद है। और इस समय जो खास तौर पर अपनी वाहन को लेके इधर उधर जा रहे होंगे, किसी को लेके जा रहे होंगे ना, उनको

वेल, कुछ मैसेजेस ऐसे भी पहुंच रहे हैं जो कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून दोस्त, वेलकम बैक। सौरभ अनेजा लिख रहे हैं गाजियाबाद से, इन्होंने कहा दोस्त मेरी कोई चॉइस नहीं होती, मैं तो बस हर शो एंजॉय करता हूँ, हर गाना एंजॉय करता हूँ। क्या ब्यूटीफुल सी बात कही है इन्होंने। वेल, अब इसी के साथ अगली जो फरमाइश है वो अब चल पड़ी है। बीवी नंबर वन फिल्म से ये गाना है और इसको का वो रिक्वेस्ट करने वाले हैं कांत से, मोहम्मद फुरकान। इन्होंने कई चॉइसेस दी थी, इन्होंने अपनी पसंद के गानों में भी बहुत सारी चॉइसेस ली थी, जिनमें से मैंने एक गाना चूज कर लिया है और ये गाना चल पड़ा है।

और इसी गाने के साथ साथ मैं बता दूं आपको कि जिला मुरादाबाद से भी हमें मैसेज आए हैं, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह, और बहुत ही स्वीटली इन्होंने कहा है कि किसी भी गीत में हमें शामिल कर लीजिए, तो आप शामिल हो गए इस ब्यूटीफुल ट्रैक में।

वेल, एक और बहुत ही ब्यूटीफुल से ट्रैक की रिक्वेस्ट आई है हमारे पास और हम कह सकते हैं कि ये भी किसी खूबसूरत सी बगिया से ही आया गाना। ये मेरठ कैंट से आया है, दिग्दर्शन और कविता गौर जी लिख रहे हैं, गांव है शुभापुर। और बहुत ही सारे गानों की रिक्वेस्ट में से एक

बढ़िया सा गाना उनके लिए, गदर फिल्म से उन्होंने कहा मैं निकला हूँ गड्डी लेके। वेल मौसम भी बहुत अच्छा है, आप चाहें तो अपनी गाड़ी को ले जा निकाल कर ले जा सकते हैं और कहीं घूम आ सकते हैं।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप और बाहर मौसम बहुत अच्छा हो गया है और इसी के चलते हमारे पास लगातार एक रिक्वेस्ट है जो बनी हुई है, वो है आनंद विहार से। और उन्होंने कहा है कि क्या नाराजगी है कि बारिश के मौसम में भी बारिश का गाना नहीं चला रहे हैं। तो देखिए, बारिश का गाना आपकी पसंद का किशोरदा की आवाज में, रिमझिम गिरे सावन।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मेरा वाला सॉन्ग सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर। राहत और गजल की तरफ से बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रैक आप सभी के लिए। नेहतपुर बिजनौर यूपी से लिख रहे हैं, इन्होंने कहा कि ओल्ड आशिकी मूवी से कोई भी गाना सुनवा दीजिए। देखिए आशिकी हम पुरानी नहीं होती हैं, ये गाना आज भी उतना ही नया है। कुमार सानू की आवाज में सुनिए, एंजॉय कीजिए।

बिल्कुल, जैसे सांस की जरूरत होती है ना मौसिकी के लिए, संगीत बजाने के लिए, उसी तरह से सारे के सारे रिक्वेस्ट प्ले करने के लिए समय की जरूरत होती है, वक्त की जरूरत होती है, जो कि अब मेरे हाथों से लगभग लगभग फिसल के चला गया है। गोपाल आ गए हैं आपके लिए प्रोग्राम लेकर बिल्कुल स्टूडियो में, और अब आखिरी और अंतिम गाना जो है इसकी रिक्वेस्ट आई है हमारे दूर दराज में बैठे हुए हमारे एक बहुत ही ब्यूटीफुल से लिसनर की, जोया लिख रही हैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से, जो कि हमें ऐप के जरिए सुन रही हैं। उनका कहना है कि बागबान का कोई भी एक गाना बजा दीजिए, तो एक ही गाना जो प्ले कर रही हूँ मैं, बहुत ही अच्छा सा गाना है, डांसिंग नंबर भी है और बहुत ही प्यारे तरीके से इसे फिल्माया गया, तो इसे इन्जॉय कीजिए। और इसी के साथ ही साथ जिनों के गाने मैं प्ले कर पाई वो मेरे मुझे अप्रिशिएट कर दीजिएगा, और जिनके नहीं कर पाई वो बाकी सबके गानों के साथ इन्जॉय कर लीजिएगा, नाराज़ मत होइएगा। फिर हमारी मुलाकात होगी, फिर आपकी बातों को हम सभी तक पहुंचाएंगे, और ये जो गानों का सिलसिला है, गीतों का और बातों का, ये तो 24/7 चलता रहेगा आकाशवाणी रेनबो पे। बने रहिए, इन्जॉय करते रहिए, एंड थैंक यू आप मुझसे कनेक्टेड रहे।

नमस्कार, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर दोपहर के 2 बज चुके हैं। प्रस्तुत हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड के

कैराना में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में दोस्ती, वैल्यू और कमिटमेंट है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकी के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इनमें ईरान के नेतृत्व से जुड़े व्यक्तियों और वित्तीय नेटवर्कों को निशाना बनाया गया है। खेल के मैदान से लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड की पहली पारी में एक विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: दिल्ली एनसीआर की आबोहवा में तैरती ध्वनि तरंगे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़ और देश भर में अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर आप हमें सुन रहे हैं। डीडीएच के माध्यम से भी हम आप तक पहुंचते हैं और साथ ही साथ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू कहीं भी कभी भी आप हमें सुन सकते हैं। घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में दोस्तों इस घड़ी वक्त हुआ है 2:03 और मैं हूं आपके साथ आपका मित्र आपका बंधु आपका सखा आपका दोस्त रेडियो का किशन का नया आरजे गोपाल लेकर आप ही का शो जिसे आप कहते हैं आशियाना। और आज आशियाना में हम बात करने वाले हैं पड़ोसियों की। क्या वास्तव में हर एक पड़ोसी जरूरी होता है? और कहीं ना कहीं एक भट्ट जो है चली चली करके जाने वाली थी लेकिन फिर भी स्टूडियो में अभी तक टिकी हुई है। गुड आफ्टरनून सोनू।
2: गुड आफ्टरनून।
1: और मेरा सवाल मेरे पहले पड़ोसी से है कि वास्तव में क्या हर एक पड़ोसी जरूरी होता है?
2: बिल्कुल, पड़ोसी बहुत जरूरी होते हैं। पड़ोसी आपका पहला रिश्तेदार होता है। आपकी खुशी हो चाहे आपके गम हो, सबसे पहले जो ये खबर है ना वो पहुंचेगी आपके पड़ोसी होता है। और वो आते हैं और पड़ोसियों से इसलिए संबंध बनाए रखने के लिए हमारे घरों में सिखाया भी जाता है और हमेशा हमें अच्छे संबंध बनाए भी रखने चाहिए।
1: क्या बात, इस महाज्ञान के बाद मैं वापस लौटता हूँ दोस्तों और आपके लिए यहाँ पर पेशे खिदमत एक बेहतरीन वाला गाना। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि पड़ोसी वास्तव में जरूरी है या नहीं ये तो हम डिसाइड करेंगे द ड्यू कोर्स ऑफ द शो। लेकिन कहते हैं कि रिश्तेदार किस्मत से मिलते हैं लेकिन पड़ोसी जो है ना वो घर खरीदते ही फ्री में मिल जाते हैं। 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारे साथ बने रहिए और हम कोशिश करेंगे आज जानने की क्या वास्तव में हर एक पड़ोसी जरूरी होता है।

वास्तव में भाई यही जानना चाहते हैं आपसे कि पड़ोसी होना वास्तव में दुखड़ा है या फिर एक खूबसूरत सी चहचहाट जो आपके आसपास रहती है। तो दैट्स वी नीड टू डिसाइड एट द एंड ऑफ द डे कि साइड वाला मेरे सामने वाली खिड़की बजना चाहिए या फिर हैप्पी वाला। मुझे लगता है शुरुआत तो हैप्पी मूड पे ही होनी चाहिए। किशोर कुमार की आवाज़ में पड़ोसन फिल्म का ये वाला गाना आपके लिए 102.6 FM पर आप सुन रहे हैं आशियाना रेडियो के किशन कन्हैया आरजे गोपाल के साथ।

102.6 MHz आप सुन रहे हैं हमारे साथ आशियाना, जहां पर हम बात करें कि वास्तव में हर एक पड़ोसी जरूरी होता है। सीरियसली सोचिए ना कि अगर एक दिन सुबह चीनी खत्म हो जाए तो सबसे पहले किसकी याद आती है? पड़ोसी की। अगर घर की घंटी बजे और सामने कोई बोले भैया आपका ऑनलाइन पार्सल हमारे घर आ गया था, तो समझ जाइए कि भाई साहब अच्छे पड़ोसी ना किसी वरदान से कम नहीं होते। हाँ, कुछ पड़ोसी ऐसे भी होते हैं जो आपकी नई गाड़ी से पहले उसकी ईएमआई का हिसाब लगा लेते हैं, या फिर आपके घर अगर मेहमान आए हो तो उन्हें पता चल जाता कि भाई साहब कुल मिलाकर कितने लोग आए, क्या क्या बन रहा है घर में और कब जाएंगे। लेकिन ये सब अपनी जगह, सच तो ये है दोस्तों कि मुश्किल समय में सबसे पहले दरवाजा पड़ोसी ही खड़खड़ाता है। बिल्कुल कहते ना हमारी टैगलाइन में कि पड़ोसी की निगाहें चोरों से बचाती है। लेकिन अगर पड़ोसी ना हो तो कहीं ना कहीं वैक्यूम जिंदगी में रहता है, ऐसा मुझे लगता है। और इसीलिए कोई भी इमरजेंसी हो, अचानक से तबीयत बिगड़ जाए या फिर बच्चों को कुछ देर के लिए संभालना हो, तो भाई साहब एक अच्छा पड़ोसी ना परिवार से कम नहीं होता। तो चलिए आज अपने पड़ोसी के साथ इस दीवार को थोड़ा सा कम करके मुस्कान की दीवार को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस मुस्कुराहट को हम जिंदा रखें और ये जो खैरियत है ना अपने पड़ोसी की वो पूछते रहे। 102.6 MHz पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे बताइए 9868107070 पर, बोले तो 9868107070। मेरा एकदम पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहा हूँ, अगले एक घंटे बोले तो 3 बजे तक मेरे पास रहेगा। और अगर आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं पड़ोसी को लेकर, अपने इनपुट्स अपनी ओपिनियन, तो मुझे ज़रूर बताइए। बहरहाल अरिजीत सिंह साहब बता रहे हैं खैरियत फ्रॉम अ ब्यूटिफुल फिल्म छिछोरे।

102.6 मेगाहर्ट्ज पर घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में दोस्तों इस घड़ी वक्त हुआ है 2:14 यानी आपकी हमारी भाषा में सरड़े दोपहर के 2:15 होने को हैं और आप सुन रहे हैं हमारे साथ आशियाना। मैं हूं आपके साथ आपका मित्र, आपका बंधु, आपका सखा, आपका दोस्त आजय गोपाल। और हम आज बात कर रहे हैं दोस्तों कि वास्तव में क्या पड़ोसी ज़रूरी होता है। कहते हैं ना कि रिश्तेदार साल में एक दो बार मिलते हैं लेकिन पड़ोसी जो है रोज़ ही मिल जाते हैं। इसलिए रिश्तों की शुरुआत सबसे पहले पड़ोस से होती है। ज़रूरत के समय सबसे पहले जो दरवाज़ा खुलता है वो अक्सर पड़ोसी का ही होता है। और ऐसे में हमारे देश में चीनी, चाय पत्ती और धनिया शायद सबसे ज़्यादा मुझे लगता है पड़ोस से ही आते जाते हैं। मज़ेदार बात तो यह कि कभी कभी लौटाने से पहले ही इनकी ज़रूरत वापस पड़ जाती है। लेकिन ये छोटी छोटी बातें पड़ोस में अपनापन भी बढ़ाती है। क्या वास्तव में आज की इस तेज़ दौड़ती भागती ज़िंदगी में जब फैमिलीज न्यूक्लियर होती जा रही हैं, आपको लगता है कि वो पड़ोस वाला जो अपनापन था, जो पड़ोस वाली मोहब्बत थी, खुलूस था, वो अभी भी बाकी है? मुझे बताइए 9868107070 पर। मैं हूँ आपके साथ आपका मित्र, आपका बंधु, आपका सखा, आपका दोस्त आरजे गोपाल, आपके लिए एक और बेहतरीन ट्रैक यहाँ पर लेकर नीरज श्रीधर की आवाज़ में। जो सबसे पहला ट्रैक मैंने बजाया था वो पड़ोसन से बजाया था, लेकिन अब हम आज के ज़माने के रेडियो स्टेशन हैं, सो दिस इज़ फ्रॉम द फिल्म नई पड़ोसन।

वेलकम बैक जी 102.6 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी का सतरंगी रेडियो स्टेशन रेनबो सुन रहे हैं आप, और मैं आपके साथ वही आपका मित्र, आपका बंधु, आपका सखा, आपका दोस्त, जिसे सारा का सारा शहर रेडियो रोमियो के नाम से जानते हैं जी। और नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन वंस अगेन। अगर अभी आप जुड़े तो बता दूं कि हम आज बात करें कि वास्तव में क्या हर एक पड़ोसी ज़रूरी होता है। हर एक, अगेन आई थिंक इट्स अ सब्जेक्ट टू डिस्कशन, लेकिन क्या पड़ोसी वास्तव में ज़रूरी होता है नहीं होता, इसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ज़्यादातर रुझान हमारे पास आ रहे हैं इस समय मेरे व्हाट्सएप बोर्ड पर, वो कह रहे हैं कि हाँ ज़रूरी तो होता है। कुछ पड़ोसी तो भाभी या भैया के रूप में एकदम एनर्जी ड्रिंक की तरह होते हैं, बस कुछ देर बात कर ले तो सारा तनाव दूर। ये जो मुख्य विचार हैं, महान विचार हैं, ये डॉली से आ रहे हैं हमारे पास। साथ ही साथ करें कि नहीं, बिल्कुल ज़रूरी होते हैं, ऑन अ सीरियस नोट आई मीन से। और ये वाला जो मैसेज हमारे पास आया है, ये मनोज सिंह जी का आया है, लाजवंती गार्डन दिल्ली से लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई साहब आपके पड़ोसी बहुत खुशनसीब होंगे। ये तो मुझे भी अपने पड़ोसियों से पूछना पड़ेगा बाय द वे। लेकिन हाँ, इनका भी यही मानना है कि अच्छा पड़ोसी एक अच्छे रिश्तेदार की तरह ही होता है, और मुझे तो कभी कभी लगता है कि रिश्तेदार से भी बेहतर होता है। दिस इज़ व्हाट आई फील, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशंस एट टाइम। जोया हमें ऑस्ट्रेलिया से कह रही हैं कि भैया एक बार मेरी बैटरी जो थी खराब हो गई थी, धक्का लगाया था मेरे पड़ोसी ने, कितनी बड़ी बात है सोचो, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में। एक्चुअली कोई भी देश हो, कोई भी रीजन हो दोस्तों, अगर आप आसपास बना के रखते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके ही वो काम आता है। और हर छोटी छोटी बात पर यू नो बहस होना, इट रूइंस रिलेशनशिप एट टाइम्स एंड डजंट मेक सेंस, इजंट इट। और मुझे तो ऐसा भी लगता है दोस्तों कि पहले के मुकाबले ना अब जो पड़ोसी का जो एनवायरनमेंट होता था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, वो भी कम हो गया। पहले लोग शाम को चौपाल पर, छत पर या गली में मिल जाया करते थे, और बस क्या धमा चौकड़ी होती थी। जो चुगली गैंग होता था जो महिलाओं का, वो अलग से होता था। ताऊ जी जो है अपनी बातें कर रहे हैं, उनका है ना, वो अपने एकदम चौपाल में बैठ कर, बच्चे दौड़ रहे इधर से उधर, और मज़ेदार जो एक्सरसाइज है, खेल है,

0: हो रहा है दोस्तों। लेकिन अब मोबाइल हमारे पास आ गया, हम ये नहीं जानते कि बगल में बिल्डिंग में, बगल वाले अपार्टमेंट में कौन है। सब कुछ अगर आप देखें ना, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया है। मतलब हम पूरी तरह से सोशल है, लेकिन वो भी एकदम अकेले बन के साथ है, डिजिटली सोशल हो रहे हैं हम। और कितना सही है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। इसके बारे में भी मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। बहरहाल, यहाँ पर एक और खूबसूरत ट्रैक मैं यहाँ बजाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, 102.6 MHz पर। वैसे आपको बताऊँ, अजब लहर जो मैंने गाना बजाया था ना आपके लिए, और मैंने कहा नहीं पड़ोसन, मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि ये आज की पड़ोसन वाला गाना था। हालांकि जो फिल्म है वो है ब्रेक के बाद, और मुझे लगता है कि जो अगला गाना मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो भी एक ब्रेक के बाद ही बजना चाहिए। तो चलिए एक बहुत ही छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं यहां पर, और उसके बाद हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक नॉटी 90s से।
1: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
2: पता का चाय गजब का स्वाद।
0: पर ये है हरिहरन आपके लिए, सपने फिल्म का ट्रैक मेरी सांसों में बसा है, सिर्फ और सिर्फ 102.6 MHz पर। ये है आकाशवाणी का सतरंगी रेडियो स्टेशन।

102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप हमारे साथ सुन रहे हैं आशियाने, और मुझे लग रहा है कि आज मैं अपने पड़ोसियों के ख्याल में ज़्यादा हूँ और इस बात का फ़ायदा हमारा जो कंप्यूटर है ना वो उठा रहा है। ऐसा लग रहा है कि फिरकी ले रहा है हमसे। सपने फिल्म का गाना बजाना चाहते थे हम, लेकिन गाना बजा है ये और प्यार हो गया से। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ नॉटी नाइनटीज के कुछ और बेहतरीन ट्रैक मेरे पास हैं आपके लिए। बस आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, बैठे रहिए, टिके रहिए, चिपके रहिए और सुनते रहिए दिल से दिल तक, क्योंकि ये है आकाशवाणी का सतरंगी रेडियो स्टेशन, जहां पर हम आपको देते हैं हर पल की खबर और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट का ऐसा डोज कि आप कहोगे वाह जियो मेरे लाल, मजा आ गया। गोपाल कहते हैं ना कि घर में क्या पक रहा है ये खुशबू पहले पड़ोसी को पता लगती है और बाद में हमको। और अच्छा पड़ोसी ना हमेशा वो होता है दोस्तों जो सिर्फ नमस्ते कहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो ज़रूरत पड़ने पर बिना कहे मदद के लिए आ जाए। और ऐसे मोहल्ले में एटलीस्ट कुछ ना कुछ पड़ोसी तो ऐसे होने ही चाहिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ताका झांकी जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, ऐसा मुझे लगता है। ये हमारे साथ तनुज जुड़े हैं और अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, कहते हैं कि भाई आज बारिश का मौसम है और असली पड़ोसी गाँव में ही रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में ऐसा लगता नहीं कि किसी को किसी से कुछ भी लेना देना होता है। अगर थोड़ा बहुत पड़ोस कहीं बचा भी है तो वहीं कॉलोनीज में एक दो घर हुआ करते हैं और वही जो है आपस में अपनी कम्युनिटी बनाकर इस पड़ोस को बचाने की, इस पड़ोस की जो परंपरा है इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक इट मेक सेंस। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि जिम्मेदारी दोनों तरफ से होती है दोस्तों, और अपनी तरफ से तो एटलीस्ट हमें कोशिश करनी चाहिए। 102.6 मेगाहर्ट्ज पर घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में इस घड़ी वक्त हुआ है 2:28, यानी आपकी हमारी भाषा में सरड़े दोपहर के 2:30 को है। लता दी की आवाज में एक और बहुत ही खूबसूरत गाना फिल्म दुश्मन से, एंड दिस टाइम आई एम श्योर आई एम 100% राइट। और ये गाना खास तौर से इसलिए क्योंकि पड़ोस में जब दुश्मनी हो जाना तो बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कोशिश कीजिए कि उस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।

102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी का सतरंगी रेडियो स्टेशन रेनबो। मैं आपके साथ आपका मित्र, आपका बंधु, आपका सखा, आपका दोस्त आरजे गोपाल। और आज हम बात करें कि वास्तव में क्या एक पड़ोसी जरूरी होता है। तो देखो, कुल मिलाकर जो बॉटम लाइन है, कुल मिलाकर जो निष्कर्ष है, वो तो ये कि पड़ोसी तो जरूरी है, लेकिन एक सीमा में अगर रहे तो बहुत अच्छा है। जरूरत से ज्यादा जो ताका झाकी है, जरूरत से ज्यादा इंटरफेरेंस होता है, वो कई बार आज की जनरेशन को खासतौर से पसंद नहीं आता। वैसे पसंद तो कभी भी किसी भी जनरेशन को नहीं आया, लेकिन समटाइम यू कॉम्प्रोमाइज। आज की जनरेशन कॉम्प्रोमाइज करने में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते, और इसलिए उनको लगता है कि भैया इससे अच्छा है दूर ही रहो। लेकिन इन दोनों के बीच का भी एक रास्ता होता है, जिसे विन विन सिचुएशन कहते हैं दोस्तों। तो कोशिश कीजिए कि वो बैलेंस्ड रिलेशनशिप जो है वो बनाई जाए अपने पड़ोसियों से, और कहीं ना कहीं उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो डिसाइड कर लिए जाएं कि भाई देखो इतने तक ठीक है, जब भी जरूरत पड़े तो हम आपके लिए खड़े हैं, लेकिन आप रोज आकर सोफे पे बैठ जाकर कहें भाभी जी चाय बनाइए ना, दैट्स आई थिंक नॉट फेयर। और एट द सेम मॉर्निंग टाइम अगर आप देखें ना दोस्तों, तो बहुत जरूरी होता है कि जो भी आपके पड़ोसी हैं उनके साथ एक जो रिलेशनशिप है उसके अंदर इमोशंस जो हैं उसका कंटेंट बहुत बैलेंस होना चाहिए। वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत बात मैंने गहरी कही, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर ज़रूर सोचिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स आर ड्रिवन बाय इमोशंस। तो ये एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पर आप कह रहे हैं कि भैया बहुत ज़्यादा ताका झाकी, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, लेकिन एट द सेम पॉइंट इन टाइम जब ज़रूरत पड़े तो बिना किसी सवाल के, बिना किसी प्रश्न के आपकी मदद के लिए वो खड़े हो जाएं। तो ऐसे में आपको ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि वो जो लक्ष्मण रेखा है उसे कैसे खींचा जाए दोस्तों। हालांकि हर एक पड़ोस में एक ऐसा करेक्टर ज़रूर होता है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है, और एक ख़ास नाम जो है वो दिया जाता है उस करेक्टर को। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके आस पड़ोस में क्या कोई वास्तव में ऐसा खास व्यक्ति है, ख़ास पड़ोसी है, जिसको आपने बहुत ही स्पेशल नाम जो है वो दिया हुआ है। मैं ऑफ एयर सोनू से बात कर रहा था, और सोनू ने मुझे कुछ नाम ज़रूर बताया, और मेरे पास भी ऐसा ही एक नाम है। मेरे पड़ोस में एक आंटी है, और बहुत ही बढ़िया वाला नाम हमने उनका रखा है फॉर अ रीज़न। तो आप भी मुझे ज़रूर बताइए अगर आपके आस पड़ोस में भी

ऐसा खास पड़ोसी आपका है, ऐसी शख्सियत है जो एकदम स्पेशल है, और आपने बहुत ही स्पेशल वाला नाम जो है उनका रखा हुआ है। अभी मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आपके साथ ही हूँ और आपके लिए कुछ बेहतरीन गाने जो है वो बजा रहा हूँ। ज्योति नूरन और अरिजीत सिंह साहब अब आपके लिए बहुत ही प्यारा वाला गाना गा रहे हैं, सही होनी नॉटी 90s का फ्लेवर है दोस्तों, लेकिन आज के ज़माने की धमक भी है इस गाने में। सुनते रहिए, सुनाते रहिए, स्टेशन ऑफ द नेशन बजाते रहिए। मैं हूँ आपके साथ, आपका मित्र, आपका बंधु, आपका सखा, आपका दोस्त, आरजे गोपाल। गुड आफ्टरनून, नमस्कार जी।

0: 102.6 मेगाहर्ट्ज़ जी, ये आकाशवाणी का सतरंगी रेडियो स्टेशन जहाँ पर आप हम जुड़ते हैं करने कुछ प्यार भरी बातें, कुछ ऐसी बातें जो हम सभी की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं और कुछ बेहतरीन ट्रैक। शो है आशियाना, मैं हूँ आपके साथ, आपका मित्र, आपका बंधु, आपका सखा, आपका दोस्त आरजे गोपाल जी। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, दोपहरीपन आप सभी को। और घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में इस घड़ी वक्त हुआ है 2:43, यानी कि आपकी हमारी भाषा में सैटरडे दोपहर के 2:45 होने को है। अभी भी 15 मिनट का समय लगभग बाकी है हमारे पास दोस्तों, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की, हम 45 मिनट का सफ़र लगभग तय कर चुके हैं और जो एड ब्रेक्स बजाए ना मैंने सिर्फ 10 सेकंड्स के। दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ द स्टेशन दोस्तों, जहां पर हम एंटरटेनमेंट का और इन्फॉर्मेशन का, बोले तो इन्फोटेनमेंट का पूरा ख्याल रखते हैं। कम से कम एड ब्रेक्स और ज़्यादा से ज़्यादा मनोरंजन, ये गारंटी है आकाशवाणी के सतरंगी रेडियो स्टेशन रेनबो के। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक और छोटे से ब्रेक का समय हो गया। जब मैं बोलता हूँ ना छोटा सा ब्रेक, ट्रस्ट मी आई मीन इट, सिर्फ 90 सेकेंड्स में, डेढ़ मिनट में वापस लौट रहा हूँ मैं। बस आप कहीं जाएगा नहीं, रेडियो किसे बिल्कुल भी घुमाएगा नहीं, मैं बस यूं गया और यूं आया।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
4: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: जी इसी के साथ 2:45 पूरे हो चुके हैं, यानी कि 2:45 बाद स्टूडियो क्लॉक। आप हमारे साथ सुन रहे हैं आशियाना और हम बात कर रहे थे पड़ोसी, अच्छे पड़ोसी, और किस तरह से हम पड़ोसियों के साथ एक विन विन सिचुएशन के साथ बैलेंस रिलेशनशिप रख सकते हैं दोस्तों। और अब बारी है उस प्रश्न की जो मैंने आपसे पूछा कि भैया क्या कोई स्पेशल पड़ोसी है आपके आस पड़ोस में जो कि विशेष है, बहुत विशेष है, और आपको लगता है कि भाई इनका कोई विशेष नाम होना चाहिए और आपने उनका विशेष नाम रखा भी हुआ है। मैं ऑफ एयर सोनू से

बात कर रहा था और सोनू मुझे बता रही थी कि उनके वहां पर एक पड़ोसन थी और उनका नाम उन्होंने सीसीटीवी रखा हुआ था, क्योंकि वो पूरे मोहल्ले पे नजर रखती थी, कौन कब जा रहा है, कब आ रहा है, किसके साथ जा रहा है, किसके साथ आ रहा है, एवरीथिंग इज राइट, रेडी टू यू नो यूज इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो उनके पास हमेशा मिलेगी। अगर किसी को नहीं पता ना तो उनको जरूर पता होगा, कोई गुमशुदा तलाश की रिपोर्ट लिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बस पता लग जाता है आंटी के पास, जब बता देंगे इतने बजे निकला था और इन इन के साथ गया था, तो देखो वहीं होगा और मिल जाया करता था। साथ ही साथ मेरे मोहल्ले में भी एक पड़ोस में हमारे आंटी है और हम उन्हें सैटेलाइट कहते हैं, क्योंकि दुनिया भर की कोई भी खबर हो दोस्तों, मतलब वो एक ऐसी आंटी है जो घर मोहल्ले की खबर से लेकर के इंटरनेशनल अफेयर तक किसी पर भी बात कर सकती है बेबाक अंदाज में। इसी के साथ डॉली है और ये कह रही कि हमारे पड़ोस में भी एक आंटी थी, भाभी जी थी, और वो उन्हें मेंढक के नाम से जानते थे उनके जो आस पड़ोस के लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको घूमने का शौक रहा होगा और वो बिल्कुल टिकती नहीं थी घर में बिल्कुल भी, इसलिए उन्हें ये विशेष नाम जो वो दिया गया। हंसी मजाक के तौर पर हमें इन तरह के इंसिडेंट्स को लेने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनके बगैर भी पड़ोस जो है वो अधूरा है दोस्तों। अगर आपके पास इस तरह के खास पड़ोसी नहीं है ना, तो जो मसाला चाहिए ना रिलेशनशिप्स में, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि ज़रूरी है हम सब के लिए कि हमारे आसपास पड़ोसी होने चाहिए, एक बैलेंस रिलेशनशिप उनके साथ होना चाहिए, जब ज़रूरत पड़े वो खड़े हो जाए आपकी मदद के लिए, लेकिन ज़बरदस्ती का इंटरफेरेंस पसंद नहीं है और ना ही होना चाहिए। अलग अलग करेक्टर्स जो हैं, करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, वो हर एक पड़ोसी में होते हैं और हमें पूरी रिस्पेक्ट के साथ उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। भाई किसी को ज़्यादा बातें करने की आदत होती है, किसी को कम, किसी को भाई पूरी नज़र रखने की जिम्मेदारी उनको लगता है कि पूरे मोहल्ले की मेरी ही है, और वो कई बार लेते भी हैं। सेल्फ यू नो अनाउंस्ड लीडरशिप जो होती है ना, वो आपको पड़ोस में बहुत ज़्यादा मिलती है, ऐसा मैंने अक्सर देखा है। बहरहाल एक और ट्रैक यहाँ पर दोस्तों आपके लिए, 102.6 MHz पर मैं बजा रहा हूँ नॉडी 90s का एक और ट्रैक, सिर्फ और सिर्फ 102.6 MHz पर, दिस टाइम सोनू निगम फॉर यू।

0: 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी का सतरंगी रेडियो स्टेशन रेनबो। मैं हूं आपके साथ आपका मित्र, आपका बंधु, आपका सखा, आपका दोस्त बोले तो दिल्ली दा सोना रंगीला मुंडा अजय गोपाल जी। और फिर एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और जब मैं बोलता हूं ना छोटा सा ब्रेक, आई मीन इट। बिल्कुल दोस्तों, बहुत लंबे लंबे एड ब्रेक्स नहीं हैं यहाँ पर, सिर्फ 30 सेकंड में वापस लौटूंगा, इसलिए कहीं जाएगा नहीं, रेडियो किसे बिल्कुल भी घुमाएगा नहीं, क्योंकि आई एम हैविंग अ सरप्राइज फॉर यू आफ्टर दिस ब्रेक।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: बिल्कुल जी, मेरे 30 सेकंड पूरे हो चुके हैं और मैं वापस लौट चुका हूं आपके पास लेकर आप ही का शो जिसे आप कहते हैं आशियाना, जहां पर आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया जो पड़ोसी हैं वो जिंदगी में कितना जरूरी होते हैं। और कुछ पड़ोसी की उम्र ना कसम से बता रहा हूं 100 साल लंबी होती है। मैं जिन पड़ोसी की बात कर रहा था ना, उनका ऑफ एयर जब मैं था, जब गाना बज रहा था अभी पीछे, तो उनका फोन आया, बोली अरे बेटा आपने SIR कराया नहीं कराया, उत्थे बूथ थे लोग बैठे जल्दी जाओ। मैं समझ गया भाई साहब कि कराना जरूरी है। मैंने उन्हें बताया, आंटी जी मैंने बिल्कुल करा लिया, लेकिन That's what the power of a पड़ोसी। ट्रस्ट में दोस्तों कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो कभी कभी हम भूल जाते हैं, इग्नोर कर जाते हैं, या फिर हमारे जहन में नहीं आता, कोई ना कोई तो रिमाइंड कराने के लिए होना चाहिए। वो मेरे बहुत अच्छे पड़ोसी थे, उन्होंने मुझे रिमाइंड करा, ना आई एम नाउ योर नेबर एट द मोमेंट रिमाइंडिंग यू वंस अगेन, अगर आपने SIR अभी तक नहीं कराया तो आप अपना जो SIR का प्रोसेस है उसे ज़रूर पूरा कर लीजिए। और इस समय कोमल जमल स्टूडियो में आ चुके हैं। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। आज पड़ोसी की बातें करके एकदम दिल गार्डन हो गया,
3: इसीलिए मैं भी स्टूडियो में आ गई हूँ कि मुझे भी अपने पड़ोसी के बारे में बहुत
0: अब मुझे मेरा पड़ोस बड़ा हरा भरा सा लग रहा है, समय बड़ा खाली था स्टूडियो एक घंटे से।
3: कहते हैं ना कि दूर के रिश्तेदारों से पास का पड़ोसी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जब भी कभी आपको किसी भी चीज की इमीडिएट जरूरत पड़ती है तो आपके आसपास अगर कोई होता है तो वो आपका एक अदद पड़ोसी होता है। और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ इस मामले में गोपाल, कि मेरे आसपास जो है ना ऐसे बहुत सारे पड़ोसी हैं जिनसे जब भी मुझे कोई जरूरत पड़ती है, क्योंकि हालांकि मैं नई नई शिफ्ट हुई हूँ जहाँ पर अभी मैंने,
0: तो कभी आपने चीनी मांगी पड़ोसियों से? अरे बहन जी कटोरी
3: क्योंकि अभी नए नए हम लोग घर में शिफ्ट हुए हैं तो बहुत सारी चीजें जो है उथल पुथल है, लेकिन मेरे पड़ोसी इतने अच्छे हैं ना, मेरे मांगने से पहले ही मेरे दरवाजे पर आ जाते हैं, किसी

0: इसकी जरूरत है तो बताइए। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ये वाकई बहुत सही बात है कि आपके दूर के रिश्तेदार से आपका पास का पड़ोसी बहुत जरूरी है।
1: बहुत बढ़िया बात है आपने कही, और वास्तव में मुझे लगता है कोमल इसका क्रेडिट बहुत हद तक आपको भी जाना चाहिए, क्योंकि शुरुआत हमसे होती है। वी आर गुड तो हमारे आसपास हमको सब कुछ अच्छा अच्छा सा लगता है, और इसीलिए अच्छे पड़ोसी हमारे आसपास होंगे, क्योंकि अगर आप अच्छे पड़ोसी की भूमिका निभा रहे हैं तो। चलिए आज एक बहुत अच्छी सी इस सीख के साथ अपने पड़ोसी के साथ, अगर आपने अभी तक हाय नहीं बोला तो आज बोल दीजिएगा, एक कप चाय साथ में पी जा सकती है इस वीकेंड पे। दोस्तों मैं बहरहाल अपनी टी ब्रेक पे जा रहा हूँ और वापस लौटूंगा लेकर आपके लिए एक और खास टॉपिक 4 से 5 के बीच। बस आप कहीं जाएगा नहीं, रेडियो से बिल्कुल भी घुमाएगा नहीं। अभी आपके लिए अभिजीत साहब गा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत ट्रैक नॉटी 90s से। सुनते रहिए, सुनाते रहिए, स्टेशन ऑफ द नेशन, बजाते रहिए।

नमस्कार, एफएम रेनबो पर आप सुनिए अब तक के मुख्य समाचार। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर में एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी का जलावतरण किया। उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अलनीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हो गई है। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और स्कूल बंद रहे। और खेलों में भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथ टेम्पन में खेला जाएगा।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रेडियो डॉक्टर में, स्पेशल फोन इन प्रोग्राम रेडियो डॉक्टर। और आज रेडियो डॉक्टर स्पेशल ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। जी हाँ श्रोताओं, आज दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। हर साल 11 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है। 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल ने यह तय किया कि 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाएगा और बढ़ती आबादी को लेकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। 1990 में पहला विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। तेजी से बढ़ रही आबादी को नियंत्रित करने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं और लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा सकता है, इस पर बातचीत की जाती है इस दिन। तो हम भी इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और आप सभी में जागरूकता का एक अभियान लेकर चलेंगे। तो हमारे साथ सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली की सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योत्सना सूरी मौजूद हैं स्टूडियो में। आइए उनसे मिलते हैं, स्वागत करते हैं। वेलकम डॉक्टर ज्योत्सना सूरी।
3: नमस्कार एंड थैंक यू, आपने मुझे आज इस बहुत इम्पोर्टेंट डे पे इनवाइट किया। तो हम अपने श्रोताओं से आज बहुत सारी बातें करेंगे आज के स्पेशल डे के बारे में।
2: डॉक्टर सूरी, इस टॉपिक को कवर आप करेंगे और साथ ही श्रोताओं के जो हमारी क्वेरीज हैं, जो प्रॉब्लम्स वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, उनके आंसर्स भी आपके पास तैयार ही रहेंगे। तो आप अपने सवाल तैयार रखिए। इस बीच हम एक गाना सुनते हैं डॉक्टर साहब की पसंद का, तो चलिए पहले इस गाने का आनंद ले लेते हैं और उसके बाद जो आज का सीरियस टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे।

0: हमने सुना बारिश जो बाहर बूंदा बांदी हो रही है या कहीं कहीं पर जोरों की बारिश भी हो रही है, हमने उसका मजा भी ले लिया इस गाने के माध्यम से। लेकिन अब आते हैं हमारे टॉपिक पर, स्पेशल ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। रेडियो डॉक्टर में है और आज हमारे एक्सपर्ट हैं सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योत्सना सूरी फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, और मैं हूं सुजाता रथ। तो डॉक्टर, चीन के बाद भारत की जो जनसंख्या है वो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है भारत। तो अगर मौजूदा हालात को देखते हुए कहें तो वर्तमान में भारत में पॉपुलेशन की क्या स्थिति है मैम?
1: सुजाता जी, हमारी 1952 में नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हमारा स्थापित हुआ था एंड इट वाज द फर्स्ट जो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस। एंड हमने एक बहुत लंबा सफर तय किया है, बहुत हेडवे किया है, बहुत हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं। और आज हमारी जो इंडियन पॉपुलेशन, वी स्टैंड एट अबाउट 1,040,000,000, मतलब ऑलमोस्ट वी आर रीचिंग 1.5 billion। और रोज के बर्थ्स अगर देखे जाएं तो 65,000 से ऊपर पर डे बर्थ्स हो रहे हैं, और लगभग 1 से 2 बेबीज बॉर्न होते हैं एवरी 1 टू 2 सेकेंड। एक बर्थ हमारे बेबी का हो रहा है। तो हमने काफी प्रोग्रेस की, जैसे मैंने आपको बताया हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो बहुत हाई था। जो हमारे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेज होते हैं रेगुलरली, हर 5 years में होते हैं, तो अभी हमारा ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट, इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में कि व्हाट इज द एवरेज नंबर जो एक शादीशुदा महिला अपनी लाइफ टाइम में, उनके कितने बच्चे होंगे एवरेज, तो वो आज की डेट में 2 है, जो अभी लेटेस्ट हमारा सर्वे था 2019-21 का NFHS 5। और उससे पहले हमारा 2.2 था, उससे पहले 2.4, 3.5, मतलब प्रोग्रेसिवली कम हो रहा है। तो आज हम 2 पे हैं, नेशनल एवरेज है ये, और ये जो 2 है ये एक रिप्लेसमेंट लेवल से अब नीचे हो गया है, मतलब रिप्लेसमेंट लेवल है 2.1। तो अगर हम इस पे रहें तो हमारी डेफिनेटली जनसंख्या जो है इंडिया की वो धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगी, और आगे के जो हमारा टाइम

0: धीरे धीरे हो जाए। तो इसके लिए मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि फैमिली प्लानिंग के उपायों की जानकारी अधिक से अधिक दी जाए, और जो लोग इसमें नहीं मानते हैं उनके खिलाफ अगर दंडात्मक कार्रवाई हो सके तो की जाए, और जो अच्छी तरह मान लें तो उनको प्रोत्साहित भी किया जाए। बस इतना ही कहना चाहता हूँ।
1: धन्यवाद, आपने हमारे साथ आप जुड़े आज इस प्रोग्राम में, और हम भी आपसे थोड़ा इस बात में तो सहमत है कि अवेयरनेस जरूर बढ़नी चाहिए, और हर ऐसा व्यक्ति जो फैमिली प्लानिंग को अपनाना चाहता है उनको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, और वो फैसिलिटीज लेने के लिए उनको एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए और उनको अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, और ये सब चीजें उनका राइट है, एक रिप्रोडक्टिव राइट जो हम बोलते हैं, ये हर महिला और पुरुष का राइट है। बट दंडात्मक तरीके से हम शायद उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हमारी कंट्री के डेमोक्रेसी के खिलाफ है, और क्योंकि परिवार नियोजन को अपनाना हम सबका एक हमारे फायदे के लिए है, तो इसमें अगर हम सबको एक ज्ञान दें, उनका फायदा होगा और उनकी प्रोग्रेस होगी, तो वो एक वॉलेंटरी वे में ही होना चाहिए और कभी भी फोर्सफुल नहीं होना चाहिए। ये हमारी राय है और हमारी कंट्री की भी शुरू से यही राय है कि फोर्सफुल हम इस चीज के लिए कभी नहीं होंगे, क्योंकि ये एक महिला और पुरुष का राइट है कि उनको कितने बच्चे होने चाहिए और वो अपने बच्चों को कैसे पाले, तो ये उनका एक रिप्रोडक्टिव राइट होता है।
2: तो मैम आपने बहुत अच्छे से इस सवाल का जवाब दिया। फिलहाल आपके पसंद का एक और गाना मैं प्ले करने जा रही हूँ मैम, चलिए सुनते हैं।

0: और विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आज स्पेशल ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे एक्सपर्ट सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योत्सना सूरी फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली और मैं सुजाता रैत। व्हाट्सएप मैसेज है मोनू सेठ खलियापुर अमेठी से, लिखते हैं कि जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार ने भी और समाज में भी इस पर ध्यान दिलाया है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं जनसंख्या विस्फोट जो है क्यों नहीं रुक रहे।
1: तो हर चीज अपने समय लेती है। देखिए बहुत हेडवे हुआ, मैंने अभी आपको स्टैटिस्टिक्स बताए तो हम काफी आगे आ गए हैं, बट ये है कि अभी ये यूनिफॉर्म नहीं है। जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो हमने कहा एवरेज 2 पे आ गया है पूरी कंट्री के लिए, बट उसमें ये देखा गया है कि जो शहरों में रह रहे हैं उसमें तो 1.5 तक भी आ गया है, बट रूरल एरियाज में अभी भी 2.5-3 कुछ स्टेट्स में 2.5 के ऊपर है। तो वहां पे हमें काम और करना है, जहां जहां पे हमें लगता है कि ये मैसेज नहीं पहुंच रहा या उनको किसी तरीके से ये फैसिलिटीज एक्सेसिबल नहीं है, तो उन जगहों पे हमें और आगे काम करना है। और आपको इसका इम्पैक्ट आगे आने वाले सालों में जरूर दिखेगा। बहुत अच्छा काम चल रहा है और आई थिंक पिछले 2 डिकेड्स में काफी फर्क आया है।
0: हेलो
2: हेलो सुजाता जी को मेरा नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार।
2: डॉक्टर साहब को फादर प्रणाम।
1: हाँ नमस्कार जी।
2: रघुविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी रघुविंदर जी बोलिए।
2: डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश है, लेकिन जिस तरह से हमारी आबादी बढ़ रही है वो लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश भी हमारा ही हो जाएगा, क्योंकि पहले एक नारा था हम दो हमारे दो और अब है हम दो और दो, अब चार होने लगे हैं। फिर अब लड़के की चाह में लड़कियां पैदा होती रहती है। ये पुराने ख्यालात कब तक चलेंगे और देश को इससे राहत कब मिलेगी, कृपया मुझे बताने का कष्ट करें।
1: देखिए ये हर एक भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति की जिम्मेवारी है। एक इसमें डॉक्टर अकेले कुछ नहीं कर सकते, ये तो एक समाज का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परिवार नियोजन के अपनाओ उपाय और लिखो तरक्की के नए अध्याय। तो तरक्की और ये हम लिंक कर रहे हैं कि परिवार नियोजन जो करते हैं उनकी आगे जाके जरूर उनकी तरक्की भी होगी। और ये कहना कि पॉपुलेशन से हमारी कंट्री में कुछ नेगेटिव होगा, ये भी देखिए पॉपुलेशन है जनसंख्या और जनसंख्या हमारी ताकत है। हर कंट्री, जिस कंट्री में लोग नेगेटिव जनसंख्या हो रही है, नेगेटिव पॉपुलेशन है, वो भी परेशान है। जिधर ज्यादा पॉपुलेशन है वो भी परेशान है। तो वो बैलेंस एक लाना बहुत जरूरी है और हर कंट्री को अपने डेमोग्राफिक्स के हिसाब से अपनी पॉलिसीज बनानी है। तो हमारी एक जो हमारी पॉपुलेशन है उसको हमें एजुकेट करना है, उसको जागरूक करना है, उसको अच्छी हेल्थ देनी है, शिक्षा देनी है और

0: वो आगे इसी तरीके से प्रोग्रेस करेंगे। और हर की जो आपने क्वेश्चन रेज किया कि लड़का लड़की के बारे में, ये तो एक समाज का एक कर्तव्य है, आप जैसे लोगों का, हम जैसे लोगों का, ये सबको मिलके इसको चेंज करना है।
1: जी, तो जिस तरह का सवाल इन्होंने किया मैम, इस तरह की समझ अगर हमें सभी में होगी, लोगों में होगी,
0: हाँ जी,
1: तो एजुकेशन है, आपने कहा कि एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें कि लड़कियों की चाह में पॉपुलेशन बढ़ती जाती, लड़कों की चाह में, तो ये सब नहीं होना चाहिए, देन दे विल बी अ बैलेंस।
0: यस,
1: तो मुझे लगता है कि एजुकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता
0: की है, रोल है,
1: की रोल एजुकेशन का। तो बात करेंगे इस मौजू पर आगे भी, लेकिन फिलहाल आपके पसंद का एक और गाना मैं प्ले करने जा रही हूं मैम, चलिए सुनते हैं।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: और विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आज स्पेशल ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे एक्सपर्ट सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योत्सना सूरी फ्रॉम सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली और मैं सुजाता रैत। दोस्तों आज 11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मना रहे हैं। जनसंख्या कंट्रोल करने के उपायों पर इस दिन चर्चा की जाती है, लोगों के बीच जागरूकता लाने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। दरअसल जनसंख्या बढ़ने के कारण देश और दुनिया को जो परेशानियां जैसे इको सिस्टम और मानवता को जो नुकसान पहुंचा है उसके प्रति लोगों को इस दिन अलर्ट किया जाता है। इस दिन लोगों में परिवार नियोजन, गरीबी, समानता, नागरिक अधिकार, मां और बच्चे का स्वास्थ्य, गर्भ निरोधक दवाइयों के इस्तेमाल आदि जैसे कई समस्याओं पर बातचीत की जाती है और इन विषयों पर चर्चा की जाती है। तो ज्योत्सना मैम, अब बात करते हैं जनसंख्या कंट्रोल के उपायों पर।
2: हाँ जी, तो बहुत सारे उपाय हैं हमारे पास और ये उपाय दोनों स्त्री और पुरुष दोनों के लिए अवेलेबल हैं। तो इन उपायों में हमारे पास जो सबसे कॉमनली अवेलेबल और एक हम बोलते हैं बास्केट अप्रोच, क्योंकि जब भी कोई दाम्पत्य जो कपल है, जो जब वो कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज के लिए हमारे को अप्रोच करते हैं तो हम उनको पूरी चॉइसेस देते हैं, तभी उसको हम ऑल्सो वी कॉल इट कैफेटेरिया अप्रोच या बास्केट अप्रोच। तो एक बास्केट में जैसे कई तरह के आर्टिकल्स होते हैं उसी तरीके से बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, तो उसमें हमारे पास जैसे मेल के लिए कॉन्डोम्स होते हैं और फीमेल के लिए हमारे पास जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोले जाते हैं वो होते हैं। फिर हमारे पास IUCD जो होता है, जो यूट्रस के अंदर जो डिवाइस डाला जाता है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसमें कॉपर टी है, मल्टी लोड है, ये होते हैं। फिर इंजेक्टेबल ये हमारे कॉन्ट्रासेप्शन, ये हमारे लेटेस्ट हमारे जो बास्केट में आने वाले ये हैं जो मुफ्त सारे सरकारी अस्पतालों में मिलते हैं। तो एक है हमारा जो अंतरा के नाम से, ये इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शन है जो हर 3 महीने में महिला को लगता है। इसके अलावा हमारे पास और भी तरह के पिल्स हैं जो नॉन हार्मोनल पिल्स हैं, वो भी एक नया हमारा जो आया छाया, सेंट क्रोमन पिल है, छाया के नाम से अवेलेबल है। और फिर ऑफ कोर्स जिनको आगे अपनी फैमिली नहीं बढ़ानी, और बिल्कुल एक तो होता है स्पेसिंग मेथड। तो स्पेसिंग मेथड का मतलब है कि आप अभी बच्चा नहीं चाहते, चाहे वो न्यूली मैरिड कपल हो या जिनका एक बच्चा है और वो आगे कुछ साल अभी और दूसरा बच्चा नहीं चाहते, तो वो मेथड होता है स्पेसिंग मेथड। और ये जो मैंने अभी आपको सारे उपाय बताए ये सारे स्पेसिंग मेथड्स हैं। फिर एक है कि जिन्होंने आगे और जिनको बच्चे नहीं चाहिए, जिनके पास 2 बच्चे हैं और वो अब आगे बच्चे नहीं चाहते, तो वो हो जाता है जो हमारे लिमिट हो जाती है, अब फैमिली को हम लिमिट करना चाहते हैं, तो वो हमारे अलग तरह के मेथड्स, 2 मेथड्स होते हैं जो कि महिला और पुरुष दोनों के लिए अवेलेबल हैं। तो एक होता है हमारा ट्यूबेक्टमी, और उसको हम चाहे तो लैप्रोस्कोपिक हम स्टेरिलाइजेशन हम कर सकते हैं, और कभी कभी वो जैसे डिलीवरी के एकदम बाद होता है तो पोस्टपार्टम स्टेरिलाइजेशन महिला उसका प्रयोग कर सकती हैं, और पुरुषों के लिए NSV, तो वो एक बहुत आसान उपाय है पुरुषों के लिए जो नॉन स्कैल्पल वेजेक्टमी बोला जाता है। और वो महिलाओं का और पुरुषों का हम देखते हैं कि रेशो बहुत डिफरेंट है, मतलब जहां कि अगर पूरे हम अगर अपने स्टैटिस्टिक्स देखें तो जैसे 18 से 20% अगर महिलाओं ने

0: कराया तो वो इवन 1% भी पुरुष ये ऑपरेशन आगे बढ़ के नहीं कराते। तो इसके बहुत सारे कारणवश है कि कुछ मिथ्स हैं और कुछ उनको एक फियर होता है कि कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उनको इम्पोर्टेंस हो सकती है या कमजोरी हो सकती है। बट ये सब चीजें बिल्कुल सही नहीं है, ये सब मिथ्स हैं, तभी तो हम बोल रहे हैं मिथ हैं, बल्कि ये बहुत उनके लिए एक बहुत इजी तरीके से उनका ऑपरेशन हो सकता है।
1: जी, तो मैम आपने बहुत ही अच्छे से समझा कर बताया बास्केट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे कि ये कितनी सुगमता से दूर दराज के गांव में भी क्या अवेलेबल है, वहां पर भी जो महिलाएं हैं पुरुष है वो इसका फायदा, इसका लाभ उठा पा रही है कि नहीं। लेकिन पहले कुछ कॉलर्स हमारे साथ हैं, इनकी बात सुन ले मैम।
2: हेलो।
1: हाँ जी,
2: आदाब।
1: हाँ आदाब, बताइए।
2: मैं लहरपुर से आजाद अहमद आजाद लहरपुरी बोल रहा हूँ।
1: हाँ लहरपुरी साहब, बताइए क्या पूछना चाहते हैं
2: आप। पूछने की बात ये कि कुछ सवाल रह नहीं गए, इतना ज्यादा डॉक्टर साहबा ने बता दिया।
1: जी जी जी,
2: कि आप कुछ सवाल पूछने का नहीं रहा।
1: हाँ जी,
2: बस मैंने फोन मिला दिया, बात हो गई, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अच्छा चलिए, आप सुन रहे हैं और वाकई डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से सभी को समझा कर कहा है और लोग सुन रहे हैं और सराह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया आपका।
0: धन्यवाद, धन्यवाद, आपने सुना हमारा मैसेज सुना और हम उसके लिए भी आपको थैंक यू बोलते हैं।
2: आदाब, आदाब,
0: आदाब जी, आदाब।
1: तो मैम जैसा कि मैं जानना चाह रही थी कि जो बास्केट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन जो सरकार की तरफ से दिया गया है उसका लाभ क्या असल में हमारे जो ग्रामीण इलाकों में है, बहुत बीहड़ इलाकों में रहती हैं महिलाएं पुरुष परिवार दूर दराज है, वहां तक क्या ये पहुंच पा रहा है मैम?
0: ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा सुजाता जी। तो अब पूरा हमारा प्रयास यही है कि ये हमारे हर महिला को ये सारे और पुरुष को भी, महिला ही क्यों, हम दोनों को ये जागरूकता देना चाहते हैं और उनको ये फैसिलिटीज देना चाहते हैं कि उनको ये सब उपाय उनको उपयुक्त हो। तो आपको भी मालूम है हमारे हेल्थ सिस्टम में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं और फिर हमारे और भी आंगनवाड़ी भी हैं जहां पे ये जैसे कॉन्डोम्स डिस्ट्रीब्यूशन और पिल्स की डिस्ट्रीब्यूशन ये सब होती है। आशा है, जो वर्कर्स हैं, जो आशा, ये घर घर जाकर जिनको कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए उनको किट्स इस तरह की बांटी जाती हैं जिसमें कि पिल्स हैं और कॉन्डोम्स हैं। तो ये सब चीजें और एक अभी जैसे न्यू एक प्रोग्राम कई स्टेट्स में लागू हुआ है, नई पहल, इसमें किट्स हैं जो न्यूली मैरिड कपल्स के लिए स्पेशली, वो भी आशा जाके उनके घरों में देते हैं जिसमें कि कॉन्डोम्स हैं और पूरी एक उसमें ब्रोशर होता है कलरफुल वे में कि क्या क्या तरीके हैं। और आप एकदम जैसे न्यूली मैरिड कपल हैं वो एकदम परिवार नहीं बढ़ाना चाहते, वो थोड़ा स्पेसिंग वो चाहते हैं कि हम पहले एक दूसरे को अच्छे से जाने। कई लोग उस समय अपनी जॉब में प्रोग्रेस करना चाहते हैं जो कि बिल्कुल ठीक है और कुछ साल का वो गैप देना चाहते हैं। तो उनको ये सारी जो जो अवेलेबल हैं वो सब उनको ज्ञान इन्फॉर्मेशन दिया जाता है थ्रू दीज किट्स।
1: तो जो और हमारी आशा आंगनवाड़ी की जो बहनें हैं वो इस तरह से ये संदेश उन तक पहुंचाती हैं कि उनमें एक विश्वास भी जगता है।
0: यस,
1: और एक ये सारे स्कीम के प्रति एक पॉजिटिविटी मन में आती
0: है। बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी है पॉजिटिविटी से काम करना और उसके ऊपर एक फेथ होना सिस्टम पे, वो बहुत जरूरी है किसी भी चीज के सक्सेस के लिए।
1: तो समय है मैम एक म्यूजिकल ब्रेक।
0: हाँ जी जरूर, आपने सारे मेरी पसंद के गाने चला रहे हैं, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ।
1: ओके मैम।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: और आज रेडियो डॉक्टर में हम बात कर रहे हैं स्पेशल ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, और हमारे एक्सपर्ट हैं सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योत्सना सूरी, साथ में मैं सुजाता रथ। डॉक्टर सूरी एक कॉलर हैं, पहले इनकी बात सुन लेते हैं फिर हम आगे चर्चा करेंगे। हेलो।
2: हेलो, नमस्कार मैम।
1: नमस्कार,
2: मैं शाहजहां उत्तराखंड देहरादून से बात कर रहा हूँ।
1: बात कीजिए डॉक्टर।
2: सबसे पहले तो डॉक्टर का शुक्रिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम पसंद आ रहा है।
1: थैंक यू, धन्यवाद जी। हाँ बताइए, अपना सवाल बताइए।
2: और मैं जानना चाहता हूँ परिवार नियोजन का कोई कॉन्टेक्ट नंबर ऐसा सरकार ने जारी किया है।
1: परिवार नियोजन के लिए आप उत्तराखंड में रहते हैं?
2: यस मैम।

0: हाँ, तो मैम वहाँ के सरकारी अस्पताल में, जैसे कि मैम ने अभी बहुत ही विस्तार से बताया था कि सरकार की तरफ से पूरा एक स्कीम चलाई जा रही है, एक पूरा बास्केट इस लिए दिया जाता है जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, तो हर सरकारी अस्पताल में मेरे ख्याल से ये जो सुविधा है ये मिल जाएगी।
1: जी, मिल जाएंगी। आप अपने जो आपके नियरेस्ट सरकारी आपके अस्पताल हैं या आपके जो भी सेंटर हैं, तो वहाँ पे आप जरूर गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट में जाकर आप ये सुविधाएं ले सकते हैं जो फैमिली
2: प्लान। तो बात सही है मैम, मैं जानना चाहता हूँ कि परिवार नियोजन का कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है ऐसा, कोई टोल फ्री
1: नंबर तो ऐसा नहीं है, आपको विजिट करके लेना पड़ेगा जो भी आप सर्विसेज लेना चाहते हैं।
2: हाँ जी, थैंक यू मैम, बहुत बहुत जानकारी दी, धन्यवाद। हाँ
1: जी,
0: जो उस समय में एक व्हाट्सएप मैसेज है प्रोमिला का दिल्ली से, इन्होंने लिखा है कि इनका बच्चा अभी 4 महीने का है और अभी फिलहाल इसके बाद ये नहीं चाहती हैं कि प्रेगनेंसी हो, तो किसी तरह के प्रेगनेंसी का डर तो नहीं है मैम?
1: हाँ, तो ये बहुत अच्छा सवाल उन्होंने पूछा, क्योंकि ज्यादातर महिलाओं और पुरुष ये सोचते हैं कि जब उनका बच्चा छोटा है और दूध पीता है तो अभी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, पर ऐसा देखा गया है कि इवन दो जब तक वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं माताएं अपने बच्चे शिशु को, और उनका मासिक धर्म अभी वापस नहीं आया, तो वो एमिनोरिया बोलते हैं हम, कि अभी उनको पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ और वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं और बच्चा अभी 6 महीने की आयु से कम है, तो उनको प्रोटेक्शन मिलता है, बट ये कभी भी 100% प्रोटेक्शन नहीं है। और बहुत सारी महिलाएं जो इसी पीरियड में कंसीव कर देती हैं और उनको ये ज्ञान भी नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो जब तक उनको ज्ञान होता है, वो बच्चा 6 महीने का जब हिलने लगता है, तो कई महिलाएं अस्पताल आती हैं कि हमने सोचा कि हम दूध पिला रहे हैं और इसीलिए पीरियड नहीं आया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको और अभी बच्चा नहीं चाहिए तो आप कोई परिवार नियोजन का मेथड अपनाएं। तो इनमें पोस्टपार्टम पीरियड में जैसे हम बोलते हैं, जो एक तो होता है कि जैसे आपका तो 4 महीने का बच्चा है और अभी आप उसको पूरी एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कर रहे होंगे बच्चे को, तो ब्रेस्ट फीडिंग के समय हम आपको कुछ जो हमारे ये हैं जैसे कि कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये हम आपको ब्रेस्ट फीडिंग के समय नहीं दे सकते, बट कॉपर टी आपको कभी भी लग सकती है, इंजेक्शंस जो 3 महीने वाले आपको लग सकते हैं, और एक और मैंने आपको बताया एक नया जो हमारा एक और है छाया, वो भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी टैबलेट है जो हफ्ते में एक बार लेना होता है। तो ये आपको सारी चीजें आपको अपने जो भी नियरेस्ट आपका हॉस्पिटल गवर्नमेंट का या सेंटर, तो आप ये सारी फैसिलिटीज ले सकती हैं और जरूर आप कोई ना कोई मेथड अपनाएं। और बाकी भी जो श्रोता सुन रहे हैं, जब डिलीवरी के लिए आप अस्पताल जाते हैं तो एक हमारा एक प्रोग्राम है PPIUCD, जो पोस्टपार्टम पीरियड में इमीडिएटली डिलीवरी के बाद, जैसे ही डिलीवरी होती है, बेबी की डिलीवरी होती है, अगर बाय चांस आपका सिजेरियन भी होता है, तो वो साथ के साथ आपका कॉपर टी, जो बहुत छोटी सी एक डिवाइस है बट वो आपको बहुत प्रोटेक्शन देती है, बहुत कामयाब है वो, और उसमें ये नहीं कि आपको रोज याद करके खाना है, जैसे गोली खानी है तो रोज आपको याद करना है, आप कभी कभी भूल भी सकते हैं, वो एक बार डल जाती है तो आप 10 साल के लिए निश्चिंत हैं, और अगर उससे जल्दी आपको बच्चा चाहिए आप कभी भी निकलवा सकते हैं। तो ये आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि डिलीवरी के एकदम बाद अगर आप स्पेसिंग करना चाहते हैं तो आप ये कॉपर टी लगाएं, नहीं भी चाहते आगे बच्चा तो भी कॉपर टी लगा सकते हैं।
0: तो मैम जो उससे मैम ने बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दी, खास करके हमारी जो यंग माताएं हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक हम लेंगे और मैम आज बहुत अच्छे अच्छे गाने चुन कर लाई हैं आप सभी के लिए, तो सुनते हैं जो उसने मैम के पसंद का ये गाना।

और आज इस विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में हमारी जो एक्सपर्ट हैं वो हैं डॉक्टर ज्योत्सना सूरी, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, और बहुत अच्छे से हमारे श्रोताओं को समझा

0: आकर जानकारी दे रही हैं स्पेशल ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो मैम आपके एफर्ट्स के लिए बहुत सारी तारीफें आई हैं व्हाट्सएप के जरिए। कुछ एक मैं जरूर लेना चाहूंगी। सरोज बंसल अनूप कौर ने गुड़गांव से आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है। थैंक्स फॉर गिविंग वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन।
1: थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड अप्रिशिएटिंग
0: जी। और एक मैसेज है मैम गुड्डू फ्रॉम दिल्ली से ही हैं। इन्होंने लिखा है कि इनकी उम्र है 32 साल, दो बेटियां हैं, एक बेटा है। हम दोनों अब बच्चा नहीं चाहते मैम, ऑपरेशन नहीं करना चाहते, इसके लिए क्या उपाय है?
1: हाँ गुड्डू जी, ये आपने जो सवाल पूछा ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका हम यही आंसर देंगे कि ऑपरेशन सिर्फ नहीं है, बहुत सारे उपाय हैं हमारे पास। और आप गुड्डू जी ये महिला हैं?
0: नहीं पुरुष हैं।
1: पुरुष हैं। तो गुड्डू जी आप खुद भी परिवार नियोजन आप भी यूज कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते ऑपरेशन जैसे आपने बोला, तो जो आपकी वाइफ हैं उनको आप कॉपर टी जैसे है, ये कॉपर टी भी एक तरह से हम इनको ना बोलते हैं लार्क मेथड, लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन, एक बार लगाइए और 10 साल के लिए आपको पूरी तरह से निश्चिंत हैं कि कोई आपको प्रेगनेंसी का चांस नहीं है। तो ये आप कॉपर टी का सेवन कर सकते हैं ऐसे में। और बाकी तरीके हैं जैसे कि मैंने आपको इंजेक्शन बताए थे और गोलियां बताई थी। और एक और तरीका है जो कि वैसे अभी पब्लिक हॉस्पिटल्स में नहीं मिल रहा, बट ये प्राइवेटली अवेलेबल है। जैसे हम इसको जो हमारे इम्प्लांट्स हैं, तो इम्प्लांट्स हैं जो कि एक रॉड होती है जो आपके जो महिला हैं उनके ये अपर आर्म में थोड़ा सा बस नीचे जाके इम्प्लांट कर दी जाती है और वो आपको 3 to 5 years तक, वो भी 5 years तक आपको निश्चिंत करती है आप प्रेगनेंसी नहीं होती। तो ये आप प्राइवेट हॉस्पिटल से आप ये वाला आप लगवा सकते हैं इम्प्लांट्स। और बाकी तो कॉपर टी मैं आपको राय दूंगी, वो एक तरह से बिना ऑपरेशन करे भी वो एक तरह से उसी का काम करेगी, क्योंकि बहुत लंबा उसका टाइम होता है उसका, और उसमें आपको बार बार किसी भी हॉस्पिटल में जाना नहीं है, एक बार हो गया और फिर आप निश्चिंत हैं।
0: मैम एक कॉलर है। हेलो,
2: गुड आफ्टरनून डॉक्टर।
0: हाँ
1: गुड आफ्टरनून,
2: गुड आफ्टरनून गोवा।
0: यस,
2: मेरे ख्याल से दो तरह का लोग होते हैं जो पॉपुलेशन के प्रमोशन करते हैं। एक तरह का एक कैटेगरी है जो इलिटरेट है, उनको पता नहीं है, गरीब है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होता है। और दूसरा है पढ़ा लिखा, हर मर्द को बेटा ही चाहिए, तो बेटियां बेटियां पैदा होता है, जब तक बेटा पैदा नहीं होता है वहाँ पे भी पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इनको एडुकेशन चाहिए, और जो बेटियां हैं ज्यादा उनके बीवियों को एडुकेशन चाहिए जो पॉपुलेशन ये कंट्रोल करने का, वो जो आप बताया इसी ओर।
1: हाँ जी, आपको हम बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, आपके बहुत अच्छे व्यूज हैं। और अगर हर हमारी कंट्री में हमारे सारी जो पॉपुलेशन इस तरीके से सोचेगी जैसे आपने बोला, तो आई थिंक सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बेटा और बेटी दोनों ही इक्वल हैं और हमें उनको एक ही नजरिए से देखना चाहिए।
0: तो मैम चलते चलते एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ, शायद आप भी डिस्कस करी थी मेरे साथ, कि पॉपुलेशन कंट्रोल में हमेशा हम सभी का ध्यान महिलाओं की ओर जाता है कि महिलाएं रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इसके विपरीत पुरुषों का रोल शायद ज्यादा है महिलाओं से। तो कितने रिस्पॉन्सिबल है मैम पुरुष पॉपुलेशन को कम करने में? मैम
1: देखिए, आपको भी पता है कि वो इक्वल के भागीदार हैं, है ना। तो मैं सिर्फ इसको ऐसे बोलूंगी, सुखी दाम्पत्य जीवन का मूल मंत्र सबने यही माना है, पुरुषों को भी बराबर की भागीदारी निभाना है। उसके बिना हम नहीं आगे प्रोग्रेस कर सकते। हर चीज महिला की जिम्मेवारी नहीं है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट, जो हमारी फैमिली प्लानिंग इज नॉट जस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इट इज वेन यू वॉन्ट टू हैव चिल्ड्रन, हाउ मेनी चिल्ड्रन, और उन बच्चों को हमें पढ़ाना लिखाना और वो इक्वल उनको राइट्स

0: उनके, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। ये हमारा है एक मैसेज आज सबके लिए कि इसी से हमारा देश प्रोग्रेस करेगा और तरक्की करके विश्व में सबसे अच्छा देश बनेगा, सबसे प्रोग्रेसिव देश बनेगा।
1: पॉपुलेशन है हमारी स्ट्रेंथ
0: बनेगी, स्ट्रेंथ बनेगी।
1: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और इतने अच्छे से हमको समझाकर सभी को बताने के लिए।
0: थैंक यू सो मच सुजाता जी फॉर कॉलिंग मी टुडे आफ्टरनून एंड आई रियली थैंक यू एंड ऑल आर व्यूअर्स जिन्होंने इतने ध्यान से सुना, इतने सवाल पूछे और इतना अप्रिशिएट किया।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
6: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
7: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
8: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
7: म्यूजिक मस्ती।
9: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
7: म्यूजिक मस्ती।

शाम के 4 बज चुके हैं। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरि का जलावतरण किया। उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि एलनीनो के कारण देश में मानसून की बारिश सामान्य से कम हो गई है। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द की गई और स्कूल बंद रहे। खेल के मैदान से भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला उन्हीं की देश की लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन खिताब जीतने के इरादे से उतरेंगी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी
1: 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सतरंगी रेडियो स्टेशन। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू आप हमें कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। डीटीएच के माध्यम से हम आप तक पहुंचते हैं हर समय हर घड़ी। घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में दोस्तों इस घड़ी वक्त हुआ है शाम के 4:03, वो समय जब हम आपसे मुखातिब होते हैं, करते हैं आपसे आप ही की बात। बोले तो अल्फा जन में आज हम करेंगे आप ही की बात दोस्तों। और अगर हम देखें दोस्तों ज़िंदगी की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सुबह जैसे ही आँख खुलती है सबसे पहले हम किससे मिलते हैं? मोबाइल से। पहले अलार्म बंद होता है, फिर मैसेज, फिर सोशल मीडिया, और देखते देखते कब आधा घंटा निकल जाता है पता ही नहीं लगता। लेकिन अगर कोई पूछे कि आज खुद से कितनी देर बात की तो जवाब होता है, अरे उसके लिए टाइम ही कहाँ है। कहते हैं जनाब, इंसान सबसे ज़्यादा व्यस्त तब दिखता है जब उसे अपने लिए 5 मिनट निकालने हों। और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। क्या आप अपने लिए समय निकालते हैं? क्या आपका अपना कोई मी टाइम है? क्या आप दिन में सिर्फ 20 मिनट भी अपने लिए निकाल सकते हैं? और अगर निकालते हैं तो कैसे? ज़रूर जाना चाहेंगे इसी वाले शो पर जिसे आप कहते हैं अल्फा जन। मैं हूँ आपके साथ, आपका मित्र, आपका बंधु, आपका सखा, आपका दोस्त आरजे गोपाल। और हम इन सभी विषयों पर बात करेंगे आज इस शो पर दोस्तों। अगर आप अपनी राय, अपनी विचारधारा मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो मैं अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगले एक घंटे तक एकदम पर्सनल रहेगा आपके और हमारे बीच में। 9868107070 दोस्तों, बोले तो 9868107070। और इस पर हम करेंगे बात। लेकिन उस सबसे पहले एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो इसी विषय पर आपसे बात करेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे विशेष प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की। तो चलिए सुनते हैं दोस्तों इस कार्यक्रम को और उसके बाद हम इसी मुद्दे पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।

हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। वैसे एकांत और अकेलापन को कई जगह एक दूसरे के पर्याय जैसे प्रयोग किया जाता है, दैट मींस दे आर इंटरचेंजेबली यूज्ड। ध्यान रहे कि इनमें से किस शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किस संदर्भ में व अर्थ में किया जा रहा है, उसे समझना आवश्यक है। यह एकांत का मतलब अकेला पड़ जाना या बिन सार्थकता से अकेले जीना मत समझ लेना। अकेलापन की अपेक्षा एकांत काफी अच्छा होता है। सुसंगति सत्संग सार्थक संगति है, एकांत से बढ़कर होती है। सबसे पहले एकांत और अकेलेपन में अंतर समझते हैं। टाइम पास, बोरिंग, फुर्सत, अशांति जैसे शब्द आएंगे और शांति सुकून जैसे शब्द। टीवी, गेम, स्पोर्ट्स, अखबार, मैगजीन पढ़ना, सोना, मनोरंजन, फन, एंटरटेनमेंट चाहते होना तथा समय का नाश अथवा दुरुपयोग कुछ सार्थक करने की अभिलाषा, जैसे कि आत्म परिष्कार, मंत्र लेखन, धार्मिक, आध्यात्मिक, साहित्य पठन, पौधारोपण इत्यादि, कई सकारात्मक चाहे होना तथा ध्यान साधन व अन्य सार्थकता में सामान का सदुपयोग, अतीत की स्मृतियां व भविष्य की अनिश्चितता के ख्याल। इसलिए तन से अकेले होकर भी मन में इधर उधर की बातें भरी मन को ईश्वर से मिलन की ओर लगाया जाता है। मन में कोई व्यर्थ काम नहीं है, खाली दिमाग शैतान का घर है। व्यर्थ के गतिरोधी से दूरी, दृष्टिकोण अथवा रूखे में विभिन्न के कारण कई बार ऐसा देखने में आता है कि सकारात्मक दब जाती है अथवा रचनात्मकता का परिष्कार संभव नहीं हो पाता है तथा परस्पर प्रतिकार एवं घोषित या अघोषित द्वंद्व में मानसिक ऊर्जा खपती है, जबकि एकांत में यह ऊर्जा संरक्षित रहती है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के

आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। ध्यान भटकने वाले कारकों से दूरी, मोबाइल व संगी साथियों से दूरी होना अपने आप में एक अच्छा अवसर का सृजन हो सकता है। एकांत में साधना उपासना की ओर चिंता को प्रवृत्ति करना उपेक्षाकृत कम कठिन रह जाता है, क्योंकि कोई सामान्य संवाद करने वाला पास नहीं होता, कोई विरोध करना अथवा ठोकने वाला नहीं होता, थोड़ी थोड़ी देर में कोई ध्यान खींचने वाला नहीं होता। इसके अतिरिक्त परिचितों की अनुपस्थिति से इस बात की संभावना भी बढ़ जाती है कि उससे चर्चा के दौरान आने वाले नश्वर विषयों में हमारा जो ध्यान उलझता रहता है वो अब बच जाएगा। मानसिक दृढ़ता की दृष्टि से भी एकांत बड़ा अनमोल है। धर्म व सत्य के मार्ग में प्राय सर्वप्रथम अपने ही अवरोध बनते हैं, अच्छे लक्ष्यों की ओर बढ़ने से रोकते हैं, सार्थक दिशा में चलने से पांव पीछे खींचने को विवश करते हैं तथा पवित्र परम उद्देश्य से दूर रखने के यथासंभव प्रयास करते हैं एवं अपने अपने तर्कों से हमारा मन उनके पक्ष में ले लेने को आतुर रहते हैं। इस प्रकार शक्ति को बांटने से रोकना एवं इसे लगातार बढ़ाने में एकांत सहायक है। शाश्वत लक्ष्य निर्धारित करने, सतपथ पर अग्रसर होने में सहायता हो जाती है यदि एकांत हो तो। इस प्रकार कोई ऐसी बाहरी कारक एक्टिव नहीं रह जाता है जो हमें रोके या दबा रखे। परिस्थिति जनित थपेड़ों से भी काफी सीमा तक बचाव हो जाता है। आपने देखा पढ़ा भी होगा कि जितना भी सच्चे साधु संत रहे हैं वो नितांत एकांत प्रेमी रहे हैं, प्रसिद्धि व नगरों से दूर रहा करते थे। यहाँ तक कि कई बार तो अपने निजी अथवा अन्य जटिल कार्यों के लिए अपने शिष्यों तक की सेवाएं प्राप्त करने से मना कर दिया करते थे। उनका आभा मंडल विशाल होता था। आभा मंडल का विशालता भी एकांत के समानुपात में हुआ करती थी। भीड़ में रहने वाले व्यक्ति की मानसिक व आध्यात्मिक ऊर्जाएं क्षीण होती रहती है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। लगातार बढ़ते कंपटीशन के दौर में समय के साथ चलना मुश्किल तो है, लेकिन बेहद जरूरी भी, क्योंकि काफी हद तक हमारा सफलता और असफलता इसी पर टिकी होती है। टाइम को सही तरह से मैनेज न करने वाले के साथ ऐसा दिक्कतें आती है। तो निर्धारित समय में कैसा क्वालिटी वर्क किया जाए और अपने लिए कैसा समय बचाए। किसी भी काम की शुरुआत प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें। ऑफिस हो या घर पर, जरूरी कामों के लिस्ट बनाएं। काम को 3-4 शिफ्ट्स में करें। जैसे जैसे काम पूरा होता जाए लिस्ट से उसे क्रॉस करते जाए, जिससे पता रहे कि कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है। दोस्तों, अपने लिए क्वालिटी समय बचाएं। इसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं, खुद से समय बिता सकते हैं। सत्संग एकांत से भी श्रेष्ठ। एकांत तभी फलदायी होगा यदि व्यक्ति का आत्मज्ञान पर्याप्त हो। सभी को सच्चे मार्गदर्शक, सच्चे सहायक की आवश्यकता आजीवन वे सदैव बनी रहती है। सत्संग का मतलब पंडाल लगाकर अंधविश्वास फैलाने वाले लोगों के पास जाना न समझे। लाइक माइंडेड पीपल के साथ बिताना या जो आपको एंकरेज करे, ऐसे लोगों के साथ रहना। चाहे जितने भी लोग हो दोस्तों, अपने लिए कुछ समय निकाले और अपने बारे में जाने। With this, we come to the end of today's Lamhe program. I'll get back to you in our next segment. Till then, have a great time. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है
feedback amc1@gmail.com।

0: 8097 पर कॉल करें या अपने नजदीकी ICTC केंद्र से संपर्क करें।
1: हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो
2: 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सतरंगी रेडियो स्टेशन रेनबो। दोस्तों, घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में इस घड़ी वक्त हुआ है 4:14, यानी कि आपकी हमारी भाषा में सरडे शाम के 4:15 होने को है। और हम बात कर रहे हैं मी टाइम की, अपने लिए टाइम निकालने की बात आज हम इस शो पर करने वाले हैं दोस्तों। और सीरियसली, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका एक बहुत ही फेवरेट वाला स्टेटमेंट होता है, फेवरेट वाला डायलॉग होता है, बहुत बिजी हूँ यार। अगर उनसे पूछो क्या कर रहे हो तो जवाब, नहीं कुछ खास नहीं, बस चल रहा है। और वास्तव में पूछो ना तो बस रील देख रहे हैं, सच बता रहा हूं। और मजे की बात यह कि 5 मिनट के लिए टहलने का समय नहीं है, लेकिन 2 घंटे कब मोबाइल पर निकल जाते हैं ना पता नहीं चलता। कई बार तो मोबाइल खुद सोचता होगा, भाई साहब छोड़ दो मुझको, थोड़ा आराम करने दो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरे दोस्त कि तकनीक बुरी चीज नहीं है, बट स्क्रीन टाइम बढ़ता जाए और मी टाइम घटता जाए तो ज़रूर सोचने की ज़रूरत है। और आज हम यही सोच रहे हैं आपके साथ अल्फा जेन पर। मैं हूँ आपके साथ दिल्ली का सोना रंगीला मुंडा अजय गोपाल। लेट्स डिटॉक्स, कुछ बेहतरीन म्यूज़िक, कुछ बेहतरीन बातें और कुछ ना कुछ साथ में मिलकर सीखते हैं इस खूबसूरत शाम में। बहरहाल, आपके लिए निखिल पॉल जॉर्ज ला रहे हैं बर्फी आशियाना। सुनते रहिए, सुनाते रहिए, स्टेशन ऑफ द नेशन, बजाते रहिए। गुड इवनिंग है जी।

बस ये इतनी सी जो खुशी है ना, इसी को ढूंढने की कोशिश करते हैं हम जिंदगी में, और फिर कहीं ना कहीं खो जाते हैं उन खुशियों को ढूंढते ढूंढते। घर से निकला था घर बनाने के लिए, लोग कहते हैं ना अक्सर, और उसी घर बनाने की चाहत में कई बार अपने सपनों को तोड़ते चले जाते हैं, अपनी खुशियों को कॉम्प्रोमाइज़ करते चले जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग डोंट हार्ड वर्क, ट्रस्ट मी, बट इन सब के बीच बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालें। और पता है, जब मैं अक्सर लोगों से बात करता हूं इस विषय पर, तो लोग कहते हैं कि हाँ यार, आई रियली नीड अ ब्रेक, मुझे एक ब्रेक चाहिए, बस मुझे जाना है। और उनको ऐसा लगता है कि खुद के लिए समय निकालने का मतलब है कि चलो पहाड़ों पर छुट्टियां मनाने चला जाए, एक ब्रेक लिया जाए 7-8 दिन का। एंड आई बिलीव इट्स अ रॉन्ग डेफिनेशन ऑफ सो कॉल्ड मी टाइम। मी टाइम इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंटली स्पेंडिंग सम टाइम ऑन योर सेल्फ एवरी डे। और हम घंटों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, इवन मिनट्स, जस्ट 20 मिनट्स। साइंटिफिकली कहा जाता है कि जस्ट 20 मिनट्स एवरी डे इफ यू कैन स्पेंड विद यू योर सेल्फ, आई मीन टू से, जिंदगी बदल जाएगी दोस्त, सच बता रहा हूँ मैं। एक कप चाय लेकर बालकनी में बैठिए, कभी बहुत मन करे तो कोई पुराना वाला गाना सुनिए, पौधों को पानी दीजिए, गार्डनिंग कीजिए, या फिर बिना किसी वजह के खुल के हंस लीजिए, कुछ पुरानी तस्वीरों को खोल कर देखिए, एंड ट्रस्ट मी, यू विल फील योर सेल्फ कम्प्लीटली रिजुविनेटेड। और यही असली मी टाइम है। वैसे कभी आपने गौर किया, बचपन में हम बिना वजह हंस लिया करते थे। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो यू विल रियलाइज दैट दे हैव नो रीज़न टू स्माइल, और अब हमें हंसने के लिए वजह ढूंढनी पड़ती है दोस्त। That's not fair, isn't it? और यही हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने लिए थोड़ा सा मी टाइम ज़रूर निकालिए, वो समय जो सिर्फ आपका है। अदरवाइज इस तेज़ दौड़ती भागती जिंदगी में कब जिंदगी गुजर जाएगी पता ही नहीं चलेगा, एंड दैट टू विथ स्ट्रेस, नहीं चाहिए ना। तो इसीलिए कह रहा हूँ, खुश रहिए। और जहाँ तक बात आप तक खुशियाँ पहुँचाने की है, तो बंदा खिदमत में हाजिर है आपके। एक बहुत ही बढ़िया वाला गाना लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, दिलजीत दोसांझ की आवाज़ में, इश्क द चेहरा। सुनते रहिए, सुनाते रहिए, स्टेशन ऑफ द नेशन, बजाते रहिए। अल्फा जैन सुन रहे हैं आप आकाशवाणी के सतरंगी रेडियो स्टेशन रेनबो पर। मैं हूं आपके साथ दिल्ली का सोना रंगीला मुंडा अजय गोपाल। गुड इवनिंग एवरीवन।

102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमारे साथ सुन रहे हैं अल्फा जैन, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि कैसे हमें अपनी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत समय खुद के लिए भी निकालना चाहिए। पता है, हम अपने मोबाइल की बैटरी 20% होते ही चार्जर ढूंढने लगते हैं, कई बार तो 80% पे, कि 100 से कम होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब हमारी बैटरी खत्म होने लगती है, हमारी बॉडी की बैटरी खत्म होने लगती है, थकान, चिड़चिड़ापन, तनाव हमको नज़र आता है, स्ट्रेस नज़र आता है, तब हम कहते हैं यार बस ये थोड़ा सा काम निपटा लूँ उसके बाद आराम से। पता है दोस्तों, कोई भी मशीन, चाहे वो हमारी ह्यूमन बॉडी ही क्यों ना हो, बिना मेंटेनेंस के नहीं चलती। तो इसलिए हमें भी थोड़ा बहुत खुद को मेंटेन करना पड़ेगा, और मेंटेनेंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो समय, वो टाइम जो आप खुद के लिए निकालते हैं दोस्तों। और यही ज़रूरी है अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। याद रखिए, आराम करना ना आलस करना नहीं होता एवरी टाइम, दो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड फॉर श्योर, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप देखें तो अगर आप थोड़ा सा यू नो इफ़ यू टेकिंग अ क्विक ब्रेक ड्यूरिंग द डे, वो कुछ नहीं बट अपने आप को तैयार करते हैं आप अपनी अगली कोशिश के लिए, अपने अगले काम के लिए दोस्तों। और यही आपको करना है रोज़ थोड़ा थोड़ा। 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम चाहते हैं कि आप हमेशा धुरंधर बने रहें दोस्तों। और ये गाना आपके लिए मैं अब बजा रहा हूँ, पुराना इसका फ्लेवर है दोस्तों, लेकिन अंदाज एकदम नया नया, आजकल बहुत हिट हो रहा है। धुरंधर फिल्म का ये ट्रैक आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ आपके साथ दिल्ली का सोना रंगीला मुंडा अजय गोपाल, आप सुन रहे हैं अल्फा जैन। गुड इवनिंग एवरीवन।

शाम के 4:30 हो चुके हैं भाई साहब। 102.6 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सतरंगी रेडियो स्टेशन रेनबो। गुड इवनिंग पहरी पहना तो नमस्कार एवरीवन। और आज हम बात कर रहे हैं हमारे शो अल्फा जेन पर कि आप कैसे खुद के लिए मी टाइम निकालते हैं, सच में निकालते भी हैं या नहीं, या सिर्फ एक्सक्यूजेज में ही रह जाते हैं। पता है ये भी अपने आप में उन रेजोल्यूशंस में से एक है जो सबसे ज़्यादा तोड़ा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ये बोलते हैं कि मैं ज़रूर अपने लिए थोड़ा समय इस साल निकालूंगा, बट इट डजेंट हैपन एट द एंड ऑफ द डे। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका ये मीडिया रिव्यू है आपके रेजोल्यूशन का और आप बहुत बेहतर इसमें नहीं कर रहे। दिस इज़ टू रिमाइंड यू माय डियर फ्रेंड्स, घर में एक रिमोट होता है और उस रिमोट पर किसका अधिकार होगा इस पर एक अलग चर्चा होती है। आई थिंक इट्स अ गुड टॉपिक टू डिस्कस सम टाइम सम अदर डे। लेकिन ये इसलिए मैं इस समय कॉन्टेक्स्ट में लेके आ रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप देखें तो इस एक रिमोट को अलग अलग लोग अलग अलग तरह से यूज़ करना चाहते हैं। कोई न्यूज़ देखना चाहता है, कोई क्रिकेट, कोई डेली सोप्स, तो कोई कार्टून्स देखना चाहता है। और बस यही कोशिश की जाती है कि जो रिमोट है ना वो मेरे पास रहे, मेरे कंट्रोल में रहे, तो बस बढ़िया आ जाए, बढ़िया हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। लेकिन सर सोच के देखिए कि हमारी ज़िंदगी का रिमोट कभी कभी दूसरों के हाथ में क्यों चला जाता है। समटाइम बॉस, समटाइम घर, समटाइम अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और हम अपने लिए जीना ही छोड़ देते हैं। और स्पेशली मैंने अक्सर 40s के बाद लोगों को बोलते हुए सुना है कि अब क्या अपनी तो कट गई, अब तो बच्चों के लिए कमा रहे हैं। आई थिंक इट्स ट्रू फिलोसफिकल, इज़न्ट इट? भाई साहब आपकी ज़िंदगी आप जियो, थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में चला जाएगा और आप कहते रह जाएंगे कि भाई साहब क्या करें, अपना तो बस यूं ही ऐसे ही चला जाएगा। इसलिए दूसरों की उम्मीदें, काम और जिम्मेदारियां निभाते निभाते अपनी पसंद को मत भूलिए। अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखिए और कोशिश कीजिए कि अपने लिए रोज़ थोड़ा सा समय निकालें। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस समय में आप करेंगे क्या, बिकॉज अगर आप मोबाइल ही देख रहे हैं देन ट्रस्ट मी अगेन यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग। बात करूंगा उस पर, लेकिन अभी श्रेया घोषाल स्टूडियो में आ चुके हैं तो शिराना के साथ आपके लिए शोर इन द सिटी से निकलकर बहुत ही प्यारा वाला गाना बजा रही हैं, गा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी वाले स्टेशन पर, एकदम एक्सक्लूसिव। आप सुन रहे हैं इस समय साइबो, इतना पीसफुल ट्रैक, फिल्म का नाम शोर इन द सिटी। गुड इवनिंग एवरीवन।

102.6 मेगाहर्ट्ज़ घड़ी बदलती घड़ी में दोस्तों इस घड़ी वक्त हुए हैं शाम के 4:35 वीकेंड का समय जो है अपने पूरे चरम पर है दोस्तों। और हम बात कर रहे थे कि हम अभी भी मोबाइल में कहीं ना कहीं गुम हैं और इसी की वजह से हमारा जो सो कॉल्ड मी टाइम है ना वो निकल नहीं पा रहा है। लेकिन यकीन मानिए सबसे ज़्यादा अगर हमें खुद को डिटॉक्स करने के लिए किसी चीज़ से दूर रहने की ज़रूरत है तो वो मोबाइल फ़ोन ही है दोस्तों। सुबह उठते ही मोबाइल फ़ोन, खाना खाते समय मोबाइल फ़ोन, सोने से पहले कुछ ना कुछ मोबाइल पे देखना है। कभी ध्यान दिया आपने कि कितना स्क्रीन टाइम आपका है? और उन सब के बाद एक ही शिकायत होती है कि भाई साहब टाइम ही नहीं है, बहुत बिजी हैं, मिल ही नहीं रहा। जबकि अगर आप देखो तो आप रोज़ ना जाने कितने मिनट्स और आई शुड से इनफैक्ट आवर्स निकाल दिया करते हैं जो किसी काम के नहीं होते दोस्तों। कुल मिलाकर सच ये है कि समय कहीं गया नहीं है, बस उसकी दिशा बदल गई है दोस्तों। और यही हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसे वापस सही डायरेक्शन में लेकर आए। डिजिटल डिटॉक्स मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए ज़रूरी है डिजिटल फास्टिंग। I'll not say please ensure that you are absolutely away from your phone in the weekends. I'm not going to give you this mantra. let's start with a small beginning. रोज कोशिश कीजिए कि एक घंटे से दो घंटे आप मोबाइल नहीं देखेंगे एंड फिक्स दैट टाइम, नॉट द ड्राइविंग वन, ओके? स्पेशली इन द इवनिंग व्हेन यू आर विद द फैमिली दोस्त, बहुत जरूरी है। अगर उस समय आप मोबाइल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो यू विल रियलाइज दैट थिंग्स आर रियली गोइंग इन योर फेवर, यू रियली फीलिंग मच मच मच स्ट्रेस फ्री। और वही हम सबको करना है एट द एंड ऑफ द डे। 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर फ्री में आपको सलाह दे रहे हैं और कहीं नहीं मिलता ही। 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर यहीं बने रहिए, बैठे रहिए, टिके रहिए, चिपके रहिए, क्योंकि और भी बहुत प्यारी प्यारी बातें करेंगे आपके साथ और वो भी बहुत ही खूबसूरत ट्रैक्स के साथ। इन सब के बीच मज़े की बात यह है कि कोई एड ब्रेक नहीं है, बिल्कुल आप हैं, हम हैं और खूबसूरत म्यूज़िक, कुछ खूबसूरत बातें। 102.6 मेगाहर्ट्ज़ की यही है ख़ास पहचान, इसीलिए तो हम कहते हैं हम हैं आकाशवाणी के सतरंगी रेडियो स्टेशन रेनबो। सुनते रहिए, सुनाते रहिए, स्टेशन ऑफ द नेशन बजाते रहिए। कविता सेठ और अमिताभ भट्टाचार्य अब लेकर आ रहे हैं एक तारा आपके लिए।

आई होप आप पैरेलली सोच रहे हैं दोस्तों जिस पर हम बात कर रहे हैं कि वास्तव में क्या आप अपने लिए मी टाइम निकालते हैं, अपने लिए थोड़ा सा समय निकालते हैं क्या? इस तेज दौड़ती भागती जिंदगी में अगर आप सिर्फ और सिर्फ गैजेट्स के आसपास घूम रहे हैं, शेड्यूल्स कैलेंडर्स के आसपास घूम रहे हैं, तो जिंदगी में बहुत कुछ मिस कर रहे हैं दोस्त। और समय निकलता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि भाई कुछ तो था जिंदगी में जो पीछे छूट गया है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो स्ट्रेस है उसे आप कैरी करते रहेंगे, वो कभी खत्म नहीं हो पाएगा अगर आप अपने लिए वो मी टाइम नहीं निकालते जो जरूरी है। एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट यू शुड रियली स्पेंड आवर्स एंड आवर्स इन दैट, और यू शुड रियली गो फॉर अ लॉन्ग वीकेंड, लॉन्ग ब्रेक, पहाड़ों पर चले जाएँ, कुछ पैसे खर्च करें, अच्छे से रिजॉर्ट में रुकें, तो ही जाके आपको ऐसा फील आएगा कि यस आई एम कम्प्लीटली यू नो रिजुविनेटेड नाउ, मैं पूरी तरह से डिटॉक्स हो गया। इट्स नॉट ऑल अबाउट दैट, ट्रस्ट मी, इट्स ऑल अबाउट हाउ डू यू टेक टाइम, अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स एवरी डे फॉर यू एंड डूइंग समथिंग विच यू पर्सनली लाइक, विच यू पर्सनली यू नो फाइंड ग्रेट फॉर योर सेल्फ दोस्तों। और स्पेशली अगर आप देखें ना, मैं वीकेंड की अगर बात करूँ तो वीकेंड हमको लगता है कि यार छुट्टी के लिए होता है, आराम के लिए होता है, बट कभी आपने नोटिस किया कि सबसे ज़्यादा काम वीकेंड पे ही रखे होते हैं हमारे लिए, चाहे वो घर की सफाई हो, कपड़े हो, बर्तन हो, बाजार जाना है, बैंक का काम करना है, किसी रिलेटिव के जाना है। और जब जैसे ही खत्म होता है तो वीकेंड लगता है अरे बाप रे कल वापस ऑफिस, कल फिर मंडे। और यही हमारे लिए सोचने की बात है दोस्त कि उन दो दिनों में, उस एक दिन में, डिपेंड्स अपॉन यू नो हाउ लॉन्ग योर वीकेंड इज, हम अपने लिए एक आधा घंटा नहीं निकाल पाते। और वही कोशिश आपको बस करनी है दोस्तों, कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। शुरू करते हैं मेरे पहले वाले टिप से। पहला

जो सबसे सबसे बेहतरीन टिप मैं आपको देना चाहूँगा दोस्त, वो ये कि अगर आप चाय के शौकीन हैं और किसी भी एक ड्रिंक जो आपको पसंद है, सपोज़ चाय, कॉफ़ी और यू नो एनी अदर स्पेसिफिक मॉकटेल जो आपको लगता है कि यार मुझे बहुत पसंद है और मैं इसे पूरी तसल्ली से, पूरे इत्मीनान से पीना चाहूँगा, मैं चाय का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आई एम अ चाय लवर, आई एम अ वेरी वेरी बिग टी लवर दोस्तों, और मेरे लिए चाय का स्वाद ना उसके दूध, उसकी चीनी, इलायची से नहीं आता है, उसका स्वाद मुझे सुकून से आता है। और मुझे लगता है कि जब आप चाय पी रहे हो उस समय एटलीस्ट आप सिर्फ चाय पी रहे हो, बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉफ़ी पी रहे हो तो सिर्फ कॉफ़ी पी रहे हो, उसके आसपास और कुछ नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, कोई टीवी नहीं है, कोई न्यूज़पेपर नहीं है, नथिंग, जस्ट यू एंड योरसेल्फ। अगर वो आप कर पाते हैं रोज़ ना, जो भी एक चीज़ आप करते हैं और वो पूरी शिद्दत से आप सिर्फ अपने लिए करते हैं, उसे आप स्टार्ट कर दीजिए। और भी बताऊँगा, वैसे ये मौसम बरसात का है, आप कितना टाइम हो गया कि बरसात में कभी विशफुल्ली नहीं नहाए, फोर्सफुल्ली तो हो सकता है नहाए हों क्योंकि बाहर बरसात हो रही है और आप निकले और छाता नहीं था तो भीग गए और फिर यू नो उसको लेकर भी एक एक अलग शिकायत की, अरे पूरे कपड़े गीले हो गए, मैं तो प्लान ही नहीं थी। अरे भाई साहब मैं कह रहा हूँ प्लान कीजिए, बारिश में भीगने का प्लान कीजिए, बारिश में नहाने का प्लान कीजिए। बड़ी मुश्किल से बादल वैसे भी बरस रहे आजकल 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। मी टाइम का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, डू व्हाट एवर यू फील गुड फॉर यू, डू व्हाट एवर यू फील विल ब्रिंग स्माइल ऑन योर फेस इन योर हार्ट। 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं अल्फा जैन, सुनते रहिए, सुनाते रहिए, स्टेशन ऑफ द नेशन बजाते रहिए। मैं हूँ आपके साथ, आप ही का मित्र, आप ही का बंधु, आप ही का सखा, आपका दोस्त आरजे गोपाल। प्रणाम स्वीकार कीजिए पार्थ।

बिल्कुल जी, और इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय कीजिए और थोड़े से फास्ट बीट के साथ आई विल से लेट मी प्ले अरिजीत सिंह विद द सेम ट्रैक फॉर यू 102.6 मेगाहर्ट्ज पर. आई एम श्योर यू विल लव इट मोर. वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आपकी खुशी कहाँ छिपी है दोस्त. पर घड़ी बदलती घड़ी में इस घड़ी वक्त हुआ है 4:45 यानी कि आपकी हमारी भाषा में सो कॉल्ड वीकेंड. सैटरडे शाम के 4:45 हो चुके हैं. थोड़ी देर में सिटी लाइट्स जलने लगेंगे. सुनते रहिए सनादरी स्टेशन ऑफ द नेशन बजाते रहिए. मैं हूं आपके साथ आरजे गोपाल. गुड इवनिंग एवरीवन.

102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप हमारे साथ सुन रहे हैं अल्फा जन दोस्तों, और हम बात कर रहे हैं आपके साथ कि किस तरह से आप अपने लिए थोड़ा सा मी टाइम निकाल सकते हैं, और आपको इनफैक्ट निकालना चाहिए, और क्या करते हैं आप उसके लिए। इफ़ यू कैन एडवाइस समथिंग दैट बी मोर देन हैप्पी। आई शेयर माई व्हाट्सएप नंबर विद यू, और आप मुझे बता सकते हैं 9868107070, बोले तो 9868107070। आई रिपीट, इट्स वेरी सिंपल, 9868 याद रखना है आपको, बस 9868, उसके बाद तो रिपीटेटिव है 1070 9868 107070। याद कराने की कोशिश कर रहा था आपको, लेकिन बहरहाल हम आपको ये भी याद दिला दें कि आप अपने लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं निकालते हैं मेरे दोस्त। हम डॉक्टर की अपॉइंटमेंट याद रखते हैं, ऑफिस की मीटिंग हमें याद रहती है, बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी हमको याद रहती है, लेकिन क्या आपने अपने लिए कभी कोई अपॉइंटमेंट याद रखा है? क्या कभी आपने अपने लिए कोई अपॉइंटमेंट लिया है क्या? Let's have an appointment for yourself in the diary. A small tip, but it really, really works. रोज सुबह 7 बजे से लेकर के 7:20 तक सिर्फ मैं और मेरा समय। I'll do something which I really like. Maybe during the day, ऑफिस में अगर आप हैं, after the lunch, एक 20 मिनट जब मैं अपने साथ अकेले हूँ, और doing something which I really like, maybe a single small walk, तभी भी चलेगा, कोई फाइट नहीं, लेकिन होना चाहिए। एक कॉफ़ी और उसके साथ अगर आप अपने टेरिस, ऑफिस के टेरिस पे घूम रहे हैं तो भी चलेगा, लेकिन वो समय जो सिर्फ आपका है, और वो 20 मिनट ट्रस्ट में आपकी प्रोडक्टिविटी ऑफिस में भी इतनी बढ़ा देगा ना कि आपके बॉस भी नहीं कहेंगे कि भाई क्यों ऑफिस के टाइम पे आप बाहर हो। ट्रस्ट मी, इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स। मैंने अपने ऑफिस में बहुत बार देखा है, हमारे लोग टीटी खेलने जाते हैं, और लगभग आधे पौने घंटे के उस गेम में ना, यू नो, दे रियली फील कम्प्लीटली रिफ्रेश्ड, और जब आते हैं वापस डेस्क पे, वर्क स्टेशन पे, तो आई सी द डिफरेंस ऑफ एनर्जी एंड एफिशिएंसी इन देयर वर्क, सो कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर यही बात कर रहे हैं हम आपसे कि सवार लीजिए अपने आप को उन छोटी छोटी चीज़ों से जो आपको और बेहतर बनाती है, अदरवाइज ज़िंदगी में तनाव, स्ट्रेस आपको लगता है कम होगा तो गलत सोच रहे हैं आप, आप ही को कम करना पड़ेगा। यू नीड टू बी ऑन द ड्राइवर सीट। बहरहाल अभी ड्राइवर सीट पर मोनाली ठाकुर है, माइक लेकर सवार लू कह रही हैं, और हमें यही मैसेज देने की कोशिश कह रही हैं कि जिंदगी सवार लीजिए, आप ही के हाथ में है। 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर 4:51 बाय द स्टूडियो क्लॉक। सुनते रहिए, सुनाते रहिए, स्टेशन ऑफ द नेशन बजाते रहिए। वंस अगेन पहली बार नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त गोपाल भट्ट।

0: 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप हमारे साथ सुन रहे हैं अल्फा जन। अंतिम पांच मिनट दोस्तों, और यहां पर मैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक लूंगा। जब हम बोलते हैं ना छोटा सा ब्रेक, ट्रस्ट मी आई मीन इट, सिर्फ 30 सेकंड में वापस लौट रहा हूं, इसलिए कहीं जाएगा नहीं, रेडियो किसे बिल्कुल भी घुमाएगा नहीं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: And this is my 30 seconds, I'm back, 102.6 megahertz पर। अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है, लेकिन कोमल स्टूडियो में, और उनको बाय बोले बगैर तो मुश्किल है मेरा जाना। मैडम मुझे स्टूडियो से बाहर नहीं जाने देंगे। Once again, very good evening, how are you?
3: Very good evening.
0: तो मैं बात कर रहा था कोमल की, हर किसी को अपने लिए एक मी टाइम निकालना चाहिए। मुझे पर्सनली लगता है कि जब मैं ऑन एयर होता हूँ ना, दैट्स माई मी टाइम, बिकॉज आई रियली स्पीक टू द पीपल आई मीन व्हेन आई एम स्पीकिंग एंड दे आर लिसनिंग। बट द सेम पॉइंट, आपके लिए आपका मी टाइम कौन सा होता है?
3: ये तुमने सही कहा कि जब तुम रेडियो पर होते हो या माइक पर होते हो तो वो तुम्हारा मी टाइम है। कहीं ना कहीं मेरा भी मी टाइम वही है, लेकिन मेरा मी टाइम वो भी है जब मैं कुछ नहीं करती हूँ और सिर्फ रेडियो सुनती हूँ।
0: क्या बात है, तो मतलब कुल मिलाकर कुछ खूबसूरत पुराने गीत सुनना,
3: बिल्कुल
0: अपने पसंद के आरजीएस को सुनना।
3: किसी भी चैनल को लगाती हूँ और हर वक्त कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आता ही रहता है, जो मतलब सिर्फ आपको एंटरटेन नहीं करता है और काफी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर होती है। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि मैं रेडियो पर बोल रही हूँ तो इसलिए मैं रेडियो की तारीफ कर रही हूँ। एक्चुअली मैं रेडियो में आने से पहले से रेडियो की बहुत अच्छी लिसनर रही हूँ।
0: क्या बात है, ट्रस्ट मी, एक पूरी जनरेशन है दोस्तों जो रेडियो का प्यार करती है, मोहब्बत करती है, और ये मोहब्बत रहनी चाहिए। अगर इफ दिस इज योर मी टाइम, कीप इट, ट्रस्ट मी, इट्स गुड फॉर अस आल्सो। अभी के लिए आपसे अनुमति चाहूंगा, रेनबो की सतरंगी दुनिया में कुछ और सतरंगी सपनों को बुनता हुआ फिर मिलूंगा मैं आपसे। तब तक के लिए बस यही, चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिए और दिल में हिंदुस्तान बनाए रखिए। शुभ दिवस, नमस्कार, जय हिंद। छोड़े जा रहा हूँ बहुत ही प्यारे वाले ट्रैक के साथ आपको।

नमस्कार, आकाशवाणी एफएम रेनबो पर बजे हैं शाम के 5 और लीजिए अब सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी 2 दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा थी। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय ने दिल्ली के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए जन से गण तक नामक कई संग्रहालय आधारित शिक्षण पहल का शुभारंभ किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी का जलावतरण किया है। उन्होंने कहा है कि भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने आज ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों में ईरान के नेतृत्व से जुड़े व्यक्तियों और वित्तीय नेटवर्कों को निशाना बनाया गया है। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग। शनिवार की शाम है, वीकेंड ऑफिशियली ऑन है। किसी के हाथ में कॉफी है तो कोई मेट्रो में है, और कोई कैब में, तो कोई अपनी कार में है। और अगर मौसम ने साथ दिया तो कहीं कहीं गरम गरम पकोड़ों की प्लानिंग भी शुरू हो जाएगी। मैं हूं आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 102.6, आपका अपना इवनिंग ड्राइव शो सिटी लाइट्स। अगले एक घंटे में आपकी शाम होगी थोड़ी और आसान, थोड़ी मजेदार, और ढेर सारी काम की जानकारियों से भरपूर। जानेंगे कि किन दवाओं की बिक्री पर सरकार ने बढ़ाई है सख्ती, किन वजहों से 6 महीने तक सस्पेंड हो सकता है आपका ड्राइविंग लाइसेंस, DU एडमिशन 2026 में प्रेफरेंस लॉक की आखिरी डेडलाइन क्या है, दिल्ली में कहां मिली है अत्याधुनिक मल्टीमीडिया ई लाइब्रेरी, और DTC के पिंक टिकट्स आखिर कब से हो जाएंगे पूरी तरह से छूमंतर। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे मौसम का हाल, और अगर ट्रैफिक का हाल आप बताना चाहते हैं तो आप भी हमें बता सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर। जी हाँ, और इस पर आप अपने ट्रैफिक का, जहां पर भी आप हैं, जो भी आपको पता है ट्रैफिक के बारे में, कहां पर जाम लगा है और कहां पर जो है वो स्मूथ है, कहां पर डाइवर्टेड है रास्ता, वो आप सब हमें बता सकते हैं, ताकि हमारे जो बाकी के सुनने वाले जो श्रोता हैं उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। और साथ साथ होंगे आपके बॉलीवुड सॉन्ग्स भी, जो कि आपके फेवरेट भी हो सकते हैं, हमारे भी फेवरेट हो सकते हैं, और हम सबके फेवरेट हो सकते हैं, जो इस सैटरडे इवनिंग की वाइब को बना देंगे और भी शानदार। तो आप जहां भी हैं मुस्कुराइए, सेफ ड्राइव कीजिए, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए, क्योंकि सिटी लाइट्स अब हो चुका है ऑन। मैं हूं आपकी ध्वनि तरंगों की संगनी, और अगले एक घंटे तक आपके साथ यहीं रहने वाली हूं आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर।

लोग हैं जो भी डेंजरस ड्राइविंग करने वाले हैं, उनके लिए नियम जो है वो और भी सख्त होते जा रहे हैं। सिर्फ चालान ही नहीं बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस 6 महीने तक आपका सस्पेंड किया जा सकता है, और लाइसेंस वापस पाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की 2 दिन की रोड सेफ्टी क्लास भी आपको अटेंड करनी पड़ेगी। जी हाँ, उसके बाद जब आप टेस्ट पास करेंगे तभी आपको लाइसेंस मिलेगा, यानी लर्न सेफ देन ड्राइव अगेन। देखिए, सड़क पर आपकी एक छोटी सी लापरवाही किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है, इसलिए अगर ऐसे में कदम जो है ये जिम्मेदार ड्राइवर बनने के लिए हमें प्रेरित किया जा रहा है तो इसका सबसे बड़ा फायदा भी हम सभी को ही मिलेगा। तो रिमेंबर, ड्राइव सेफ स्मार्ट, ड्राइव नॉट फास्ट। और अगर पार्टी करनी है तो डेजिग्नेटेड ड्राइवर चुनिए या फिर कैब बुक कर लीजिए। अगर घर पर आपको पहुंचना है सही सलामत तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि घर पर कोई ना कोई आपका इंतज़ार ज़रूर कर रहा होता है और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन तक सेफली पहुँचे अगर आप ड्राइव करते हैं तो। और अगर आप ड्राइव नहीं भी करते हैं, ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठे हैं, पीछे वाली सीट पर बैठे हैं, तो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने ड्राइवर को बोलें कि वो ड्राइव जो है बहुत सेफली करें, क्योंकि उसके घर पर भी और आपके घर पर भी आपके परिवार वाले आपका इंतज़ार कर रहे हैं। स्पीड से नहीं, सेंस से चलिए, क्योंकि आपकी मंजिल को आपकी सलामती ज़्यादा प्यारी है। सिटी लाइट्स के साथ हर सफ़र बने ब्राइट। ड्राइव सेफ, स्टे राइट।

0: है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दोस्तों, दवा तभी असर करती है जब उसका सही इस्तेमाल हो, और यही सुनिश्चित करने के लिए आया है एक नया नियम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 पर, और मैं हूं आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल। माइक से निकली हमारी आवाज हवा के रास्ते दिल्ली एनसीआर तक पहुंच रही है 102.6 पर, और इंटरनेट के रास्ते दुनिया के हर उस दिल तक जहां न्यूज ऑन एयर ऐप और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म मौजूद है। आज की जानकारी आपके और आपके परिवार की सेहत से जुड़ी हुई है। जी हाँ, अगर आप मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेते हैं तो ये अपडेट जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, सरकार ने 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली दवाइयों की बिक्री और खरीद के नियम जो हैं वो सख्त कर दिए हैं। अब ऐसी दवाएं सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलेंगी। इसके साथ ही मेडिकल स्टोर्स को भी इनकी बिक्री का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। कुछ दवाओं में अल्कोहल की मात्रा जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा पाई जाती थी और उनका जो है वो गलत इस्तेमाल देखने में आया। बहुत सारी शिकायतें ऐसी आई थी, और इस नए नियम का जो उद्देश्य है ना, वो ये है कि इससे दवाइयां जो है ना वो ज़रूरतमंद मरीजों तक सही तरीके से पहुंचे और उसका दुरुपयोग किया जाने से रोका जा सके लोगों को, ताकि उसका गलत इस्तेमाल कोई भी ना कर सके। तो याद रखें, मेडिसिन इज फॉर ट्रीटमेंट, नॉट फॉर मिसयूज। दवा हमेशा डॉक्टर की सलाह से लें, और बिना प्रिस्क्रिप्शन के ऐसी दवाएं खरीदने या इस्तेमाल करने से हमेशा बचें, क्योंकि ये जो दवाएं हैं ना बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। सही जानकारी, सही इलाज और जिम्मेदार व्यवहार, यही है बेहतर स्वास्थ्य की पहचान। मैं हूँ आपकी अपनी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफ रेनबो पर प्रोग्राम सिटी लाइट्स, आपका अपना इवनिंग ड्राइव शो। और दोस्तों, हम तो बस यही कहेंगे कि स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि सेहत से बड़ा कोई भी धन नहीं है। वो कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। दवा का सही उपयोग, सही इलाज, गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं।

दोस्तों, अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए आवेदन कर दिया है तो अगली अपडेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि एक छोटी सी चूक आपका मनपसंद कॉलेज या कोर्स आपसे दूर कर सकती है, और हमारे होते हुए हम ये बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। तो इसलिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं ये अलार्म। जी हाँ, DU में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए जो प्रेफरेंसेस हैं वो लॉक करने के लिए आखिरी तारीख आज यानी 11 जुलाई ही है, और आज आप रात 12 बजे तक ये कर सकते हैं अपनी प्रेफरेंस लॉक। उसके बाद आपको ये मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। याद रखिए, प्रेफरेंसेस भरने के लिए उसे सोच समझ कर लॉक ज़रूर करें, क्योंकि डेडलाइन के बाद जो है ना आपको चॉइस जोड़ने में या बदलाव करने में कोई भी अगला मौका नहीं मिलने वाला है। इसके बाद 12 जुलाई यानी कल जो है स्टिम्युलेटेड रैंक जारी होगी, जिससे आप अपनी संभावित स्थिति जो है वो समझ सकेंगे और प्रेफरेंस को रीअरेंज करने का जो है आपको कल के बाद मौका ज़रूर मिलेगा। और फिर 16 जुलाई को आएगी फर्स्ट सीट अलॉटमेंट लिस्ट, जिसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपनी सीट एक्सेप्ट करके एडमिशन का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ा सकते हैं। इस साल DU में बहुत सारे आवेदन आए हैं, लगभग 1.9 लाख जो आवेदन है वो वहाँ पर पहुँचे हैं, यानी कंपटीशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसलिए जल्दबाजी आप बिल्कुल भी मत कीजिए, बस स्मार्ट चॉइस आप जो है वो कीजिए। तो अगर DU आपका ड्रीम डेस्टिनेशन है तो आज ही अपनी प्रेफरेंस लिस्ट एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। राइट प्रेफरेंस, राइट डिसीजन और शायद राइट फ्यूचर। मैं हूँ आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो। आपके सपनों को सही दिशा मिले, यही हमारी शुभकामना है। ऑल द वेरी बेस्ट। और दोस्तों, हम तो यही कहना चाहेंगे कि कॉलेज वही चुनिए जहां सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि आपकी पहचान भी बन सके।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं, खास तौर से महिलाओं के लिए लेकर आए हैं, एक जरूरी जानकारी। दिल्ली में सफर करने वाली महिलाओं के लिए हम लेकर आए हैं अगली जानकारी। तो सहेलियों, सखियों, अगर आप DTC या क्लस्टर बस में सफर करती हैं तो अगले एक मिनट में दी जाने वाली जो जानकारी है ना, आपकी बहुत काम आने वाली है। अगर आप भी अभी तक बस में मिलने वाले पेपर पिंक टिकट का इस्तेमाल करती हैं तो अब बदलाव का समय आ चुका है। दरअसल मुफ्त बस यात्रा को पूरी तरह से स्मार्ट कार्ड बेस्ड बनाने का फैसला जो है वो पहले ही कर लिया गया था, लेकिन अब जो है वो पूरी तरह से बंद हो जाएंगी पिंक टिकट्स जो हैं, यानी 31 जुलाई 2026 तक ही पेपर पिंक टिकट जो है वो मान्य रहेंगी, और 1 अगस्त 2026 से DTC और क्लस्टर बसेस में मुफ्त यात्रा का लाभ केवल और केवल NCMC आधारित पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड से ही आपको मिल सकता है। तो सखियों, अगर अभी तक आपने अपना कार्ड नहीं बनवाया है तो जल्दी से जल्दी अपना ये कार्ड बनवा लीजिए, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। हालांकि घबराने की ज़रूरत नहीं है, कार्ड बनवाने की कोई भी आखिरी तारीख जो है वो तय नहीं की गई है। 31 जुलाई के बाद भी DTC डिपो और निर्धारित केंद्रों पर कार्ड जो है वो ऐसे ही बनते रहेंगे जैसे अभी बनते हैं। तो अगली बार जब आप बस में सफ़र करने के लिए जाएँ तो छोटी सी चेकलिस्ट याद रखिएगा, पिंक टिकट नहीं, पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड आपको लेकर के जाना है और उसी से आपको यात्रा करनी है। ये छोटा सा बदलाव आपकी यात्रा को बिना किसी परेशानी के जारी रखेगा। मैं हूं कोमल और आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 FM पर। अपडेट्स ऐसे जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को बनाए और भी आसान, तो जुड़े रहिए क्योंकि सही अपडेट सही सफर बनाता है और ये सफर बनता है आसान हमारे साथ।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल। यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM।

किताबों की खुशबू और टेक्नोलॉजी का साथ सीखने का ये नया पता अब दिल्ली में हो गया है तैयार। टाइम नोट कर लीजिए जनाब, शाम के बजे हैं 5:53 और 53 सेकेंड। और अगर आपको पढ़ने का शौक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप कर रहे हैं या रिसर्च में दिलचस्पी रखते हैं तो ये खबर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर के आ सकती है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी NDMC ने मंदिर मार्ग पर एक अत्याधुनिक 3 मंजिला मल्टीमीडिया ई लाइब्रेरी तैयार की है जिसका उद्घाटन आज हो चुका है। इस लाइब्रेरी की सबसे खास बात यह है कि यहां पर करीब 30,000 किताबें और 5,00,000 से ज्यादा ई बुक्स जो हैं वो मौजूद रहेंगी, आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। एक साथ 200 लोग यहाँ पर बैठकर पढ़ाई और रिसर्च कर सकते हैं। वहीं PhD स्कॉलर्स के लिए अलग रिसर्च रूम भी यहाँ पर बनाया गया है। और इतना ही नहीं, बच्चों के लिए अलग से रीडिंग जोन और स्टडी टूल्स की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। और सबसे अच्छी बात पता है आपको क्या है कि ये जो लाइब्रेरी है ना, ये पूरी तरह से निःशुल्क है, यानी नॉलेज इज फ्री। बस सीखने का जज्बा अगर आप में है तो आप इस लाइब्रेरी में पहुँच सकते हैं। एक अच्छी लाइब्रेरी सिर्फ किताबों का संग्रह नहीं होती दोस्तों, बल्कि नए विचारों, नए सपनों और नए भविष्य की शुरुआत भी होती है। अगर आप पढ़ने, सीखने या रिसर्च करने का शौक रखते हैं तो दिल्ली की ये नई ई लाइब्रेरी आपके लिए एक शानदार जगह बन सकती है। मैं हूं आपकी ध्वनि तरंगों की संगिनी कोमल और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर। प्रोग्राम चल रहा है आपका इवनिंग ड्राइव शो सिटी लाइट्स। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि ज्ञान जो है ना वो सबसे बड़ी ताकत होती है। और दोस्तों, किताबें जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ जानकारी नहीं देती, वो सोचने का नजरिया भी आपका बदल देती है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 पर।

और दोस्तों इसी के साथ जो समय है वो इशारा कर रहा है कि कोमल को यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जो अगली अनाउंसर है, हमारी जो अगली प्रेजेंटर है, वो यहाँ पर आ चुकी हैं और पूरी तरह से तैयार हैं आपसे ढेर सारी बातें करने के लिए। तो कोमल को दीजिए इजाज़त, फिर मिलूंगी आपसे रेडियो की इन्हीं तरंगों पर ऐसे ही आकाशवाणी एफएम रेनबो। तब तक सुनते रहिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। कोमल की तरफ से बाय बाय एंड टेक केयर।

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार के दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय के देशों के लोग के बीच साझा यात्रा एक अहम हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टिल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी का जलावतरण किया। उन्होंने कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई उसकी अध्यक्ष होंगी। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय में दिल्ली के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए जन से गण तक नामक नई संग्रहालय आधारित शिक्षित पहल की शुभारंभ किया है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम में फुकोवा द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अन नीनो के कारण देश में मानसून की बारिश सामान्य से कम हो गई है। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान की उड़ानें रद्द की गईं और स्कूल बंद रहे। और खेलों में भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे साउथैम्पटन में खेला जाएगा। उधर फीफा विश्व कप में क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेकिया और कोरोलिना मुकोवा का मुकाबला उन्हीं के देश लिंडा नास्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन के खिताब के लिए इसी इरादे से उतरेंगी। ये था इस घंटे का मुख्य समाचार। आप सुन रहे हैं रेनबो।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं रेनबो पे MMM यानी मैसेज मसाला मिक्स, और मैसेज मसाला मिक्स में मैं ढेर सारे मैसेजेस इनवाइट करने वाली हूँ। और आज का टॉपिक क्या रहेगा अभी तो आप गेस करिए, मैं बताती हूँ। अच्छा, गेस नहीं करना है आपको, तो चलिए मैं बता देती हूँ। आज का टॉपिक है कुछ ख़ास, और फिर से कुछ ख़ास यादों के साथ जुड़ा हुआ है। तो भाई चले जाइए वापस वापस वापस अपने बचपन के दिनों में, और इस वक्त में जुलाई के वक्त जब नए स्कूल या नई क्लास में हम जाते थे तब कैसा महसूस होता था, क्या उस समय की खूबसूरत यादें हैं, प्यारी प्यारी बातें हैं जब आप फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ या उससे भी छोटे थे, नई क्लास में जाने का क्या सा रहता था, कैसी हैं वो यादें आपकी, हमारे साथ साझा करिए 9868107070 पे। और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त मोक्षी। आगाज किया जाए एक खूबसूरत गाने के साथ।

भाई दिल तो मेरा भी बहुत तेज बार बार धड़क रहा है ये देखने के लिए कि भाई हमारे लिसनर्स ने हमारे मैसेज को किस तरह से लिया और हमारे मैसेज के रिप्लाई में किस तरह के मैसेज किए। भाई ये भी तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिसनर्स इस बात को समझ पाएँ कि हम किस तरह का मैसेज उनसे इन्वाइट कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि बहुत खूबसूरत मैसेजेस ऑलरेडी आने लगे हैं। और थैंक यू वेरी मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पहला मैसेज मैं पढ़ रही हूँ सरफराज आलम, मोहम्मद सरफराज आलम जो कि हार्ट से, वो लिखते हैं कि बचपन के सत्र का मतलब नई उम्मीदें होती थी और इन्होंने अपने एक छोटे से मैसेज में ना सब कुछ लिख दिया, नई किताबों की खुशबू, नए टीचर्स और बैग को सजाना और साथ में सीट में कौन बैठेगा उसका एक उत्साह और एक नई टीचर कौन होगी उसका एक उत्साह, ये सारे उत्साह के बारे में इन्होंने मैसेज, मुझे लगा कि सरफराज जी आपने एक मैसेज में ना सारी यादें, मेरे ख्याल से हम जितने भी लिसनर्स हैं हम जो भी मैसेज लिखेंगे वो आपके इसी मैसेज के आसपास कहीं होगा। बहुत अच्छा लगा आपका मैसेज देख के, आपका मैसेज रिसीव करके, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत धन्यवाद ये मैसेज हमारे साथ रिसीव, ये मैसेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। अगला मैसेज है, ये लिखते हैं कि इनका नाम है कृष्ण कुमार मिश्र और दिल्ली में रहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि जब बच्चे थे और स्कूल की छुट्टी, और जब ये बच्चे थे जब स्कूल की छुट्टी चलती थी तो भगवान से प्रार्थना करते थे कि ये छुट्टियाँ कभी ख़त्म ना हो। आप कृष्ण कुमार जी, आप अपनी माता जी से पूछिए क्या वो भी ऐसा ही सोचती थी। बिल्कुल नहीं, मुझे तो अपने घर में याद है कि गर्मियों की छुट्टियों में रोज़ दिन यही होता था कि इनके स्कूल कब खुलेंगे, और मुझे यकीन है आपके घर में भी आपने यही बात अपने बड़ों से सुनी होगी। भाई बच्चों की तो छुट्टियां बहुत प्यारी होती हैं, पर बड़ों की बात अलग होती है, बड़े परेशान हो जाते हैं बच्चों की शरारत से। और अगला मैसेज है सुखलाल बाला फ्रॉम वेस्ट बंगाल से, ये लिख रहे हैं कि मैं एक गांव के छोटे स्कूल में जाता था आइसक्रीम खाने के लिए, सुपारी मैं अगर सही पढ़ रही हूँ तो सुपारी चोरी करते थे और सुपारी के बदले में इनको एक आइसक्रीम मिलती थी। वाह, वैसे तो चोरी करना बहुत बुरी बात है, लेकिन चलिए आपकी ये बचपन की प्यारी सी शरारत एक्सेप्ट करते हैं हम भी और हमारे लिसनर्स भी, और बड़ी प्यारी शरारत है ये। नाइस, अगला मैसेज है, ये लिखते हैं कि हाँ ये दीक्षांत धीमन, ये लिखते हैं प्रिया धीमन, उनकी बहन का बर्थडे है, वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। और दीक्षांत धीमन जी, आप टॉपिक से रिलेटेड कोई मज़ेदार सा मैसेज भेजिए, फिर मैं उसको और पढ़ती हूँ। अगला मैसेज है, हाँ पढ़ाई 5वीं से 10वीं, पहले मैं नाम पढ़ लेती हूँ। इनका नाम है पंकज, अमरावती महाराष्ट्र से, लिखते हैं कि स्कूल की पढ़ाई 5वीं से 10वीं तक 1996 से 2002 तक की है और अपने गांव के विद्यालयों में पढ़ने जाते थे और दोस्तों के साथ खेलते थे, पढ़ाई के साथ साथ बचपन के सभी दोस्तों के साथ बहुत बहुत अच्छा समय बिताया। ये बात तो है भाई, बचपन की यादें हैं, लेकिन एक बात

दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम MMM और मेरे पास आ चुके हैं ढेर सारे मैसेज और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मोक्षी। और अगला मैसेज लेते हैं। अगला मैसेज भेजा है अंशी शर्मा हस्तिनापुर मेरठ यूपी से, और वो लिखती हैं कि एक्साइटमेंट होती थी बहुत ज़्यादा उस समय, नए कोर्स आता था, नया स्कूल बैग आता था, ड्रेस, जूते और उन सब की इतनी एक्साइटमेंट होती थी कि बस रात भर नींद नहीं आती थी। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस मैसेज। आप लोग ना कोई अगर बहुत ही प्यारा सा कोई किस्सा हो ना उस वक्त का, तो वो भी आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि कभी क्या हुआ जब आपने नया स्कूल ज्वाइन करा या नई क्लास ज्वाइन करी, कोई मज़ेदार सा किस्सा हो तो वो भी आप ज़रूर बताइएगा। अगला मैसेज है। अगला मैसेज, बचपन से जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते थे तो मन प्रसन्नता से भर जाता था, कहानियों की नई किताबें पढ़ने को मिलती थी और गणित के नए सवाल बनाने में मन उत्साहित रहता था। रंजीत कुमार मंडल सिकड़ी अररिया बिहार से, इसका मतलब आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होगी। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस मैसेज। थैंक यू। और अगला मैसेज है, ये मोहम्मद वक़ार फरीदी लिखते हैं, आपको मेरा प्यार भरा सलाम, आपको भी। और लिखते हैं, स्कूल के दिनों में नई किताबें, नया बैग और सब कुछ नया नया लगता था, बहुत उत्साह होता था और बचपन के वो दोस्त और सब बिछड़ गए हैं और सब बहुत याद आते हैं। बचपन के दोस्त नहीं बिछड़ते दोस्त, अगर आप उनके साथ लगातार बातचीत में रहें, उनसे बात करते रहें, मिलते रहें। देखिए, दोस्ती बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जीवन का, और इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पे पैसे से मतलब नहीं है, बात है वक्त से। तो आप जितना उनको, उनके साथ वक्त आप देंगे, उतना ही वक्त आपको मिलेगा भी, और आप ज़रूर उनको वक्त दीजिए, आपको अपने बिछड़े हुए दोस्त ज़रूर वापस मिल जाएंगे। भाई दोस्तों के बिना क्या ही जीवन है ना। दोस्त है तो भाई सब अच्छा लगता है, दोस्त नहीं है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। ओके, अगला मैसेज है केशव वंजानी, नीलम स्वाति और किशोर रेलवे कॉलोनी से लिख रहे हैं। इन्होंने भी मैसेज नहीं दिया है, इन्होंने सिर्फ हाजिरी लगाई है। भाई आपकी हाजिरी तो नहीं मानी जाएगी ऐसे, आप हमको फटाफट मैसेज रिलेटेड टॉपिक से फटाफट भेजें। अगला मैसेज है कि कैसे हैं आप, मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? आपका मुझे एक्चुअल मैसेज नहीं दिख रहा है, मुझे सिर्फ नाम दिख रहे हैं और नाम मैं पढ़ूंगी, लेकिन प्लीज़ आप मैसेज ज़रूर लिखें। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू राजपाल, काजल, लक्ष्य, मोहिनी, बलवीर, मानवी, आप प्लीज़ मुझे टॉपिक भी भेजें, क्योंकि नाम पढ़ने में तब ज़्यादा मज़ा आएगा अगर आपका उससे रिलेटेड कोई, मेरे मतलब टॉपिक से रिलेटेड कोई मैसेज भी होगा तो। अगला मैसेज है, सत श्री अकाल, आपको भी बहुत बहुत नमस्ते और बहुत सारी यादें हैं। पहले मैं उनका नाम पढ़ देती हूँ जिन्होंने लिखा है। ये रमेश नागर जी हैं और ये लिख रहे हैं सलूजा जनकपुरी न्यू दिल्ली से। अच्छा, प्रदीप सलूजा जी, राजेश नागर और प्रदीप सलूजा जी। तो ये बचपन की बहुत सारी यादें हैं, और बहुत सारी यादें हैं, बहुत मस्ती की है, होमवर्क पूरा नहीं कर पाते थे तो क्लासरूम में ये सबसे पीछे बैठ जाते थे ताकि मास्टर जी इन्हें ना देख पाएँ और इनको डांट ना पड़े। दैट्स सो स्वीट। अगला मैसेज दानिश खतौली, आई होप आप खतौली से लिख रहे हैं, दानिश खतौली।

से लिखते हैं गुड इवनिंग, आपको भी गुड इवनिंग। बचपन में मैं स्कूल में नई टीचर से मिलना और नई टीचर से पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था। दानिश जी, आपका मैसेज मैंने पूरी कोशिश करी है बहुत क्लियर पढ़ने की। आई होप मैंने आपका मैसेज सही सही पढ़ा हो, और आप अगली बार कोशिश करिएगा इसको और ज़्यादा क्लियर लिख करके भेजें। लेकिन आपका मैसेज पढ़ के बहुत बहुत अच्छा लगा दानिश जी, थैंक यू। अगला मैसेज, मैम जब मैं नई स्कूल में ज्वाइन करने गया तब किसी को नहीं जानता था। पहले मैं आपको नाम पढ़ के बता दूं, ये है अंशी शर्मा हस्तिनापुर मेरठ से। मैं किसी को नहीं जानती थी जानता था और फिर कोई फ्रेंड्स नहीं थे तो सीट का बहुत झगड़ा होता था। हाँ भाई, दोस्तों में सीट का झगड़ा तो बहुत बहुत बहुत ज़्यादा होता था भाई। आपकी अगर कोई सीटमेट नहीं आई ना तो सीटमेट की जगह बचा के बैठते थे हम लोग कि सीट नहीं जानी चाहिए भाई। और अगला है मैसेज, मेरा नाम काजल है, उत्तराखंड से मैसेज लिख रही हैं। स्कूल में जाते तो अच्छा लगता था, पर ऐसा लगता था कि हमको स्कूल से छुट्टी कब मिलेगी। पर जब स्कूल से निकल जाते थे तो लगता था स्कूल ही अच्छा था। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक साइकिल होती है काजल जी। जब स्कूल में होते हैं तो घर अच्छा लगता है, घर में होते हैं तो स्कूल अच्छा लगता है। और आपको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आपका मैसेज पढ़ूँ, क्योंकि ये मैं आपका ये प्रोग्राम आप ही का है और आपके मैसेजेस का है। मेरी तो सिर्फ आवाज़ है, अल्फा आप ही के हैं। और अगला मैसेज मैं पढ़ती हूँ। ये लिखती हैं खुशी गाज़ियाबाद से, ये लिखती हैं कि बचपन का एक किस्सा इन्हें याद आता है कि नई नई किताबें बस्ते में रखी। इतना खूबसूरत शब्द है ये, बस्ते बस्ते में रखी और घर आते वक्त बारिश हो गई। सारी उलझन इस बात की थी कि किताबें ना भीग जाएं। हाँ, ये तो ज़रूर सबके साथ हुआ होगा, ये मुझे यकीन है सबके साथ हुआ होगा कि इस बात की फ़िक्र नहीं है कि हम भी भीग सकते हैं, लेकिन इस बात का ज़रूर ज़रूर एक बहुत बड़ी फिक्र रहती है कि भाई नई नई किताबें, क्योंकि भीगने के बाद जब किताबें सूखती थी तो उसके पेज मुड़ जाते थे और वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इस वजह से लगता था नहीं नहीं किताबें तो एकदम साफ़ सुथरी रहनी चाहिए। थैंक यू। और आप सभी लोग मुझे मैसेज भेजते रहें 9868107070 पे। आपको पता है क्या करना है, मैसेज भेजना है आपको कि जब इस वक्त में हम नए क्लास में जाते हैं तो नए क्लास में जाते वक्त कौन सा उत्साह रहता है, और कोई नई सी कहानी मेरे साथ शेयर करिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे मैसेजेस पढ़ चुकी हूं। तो कोशिश करिए कोई नई बात, कोई नई शरारत, कोई नई याद मेरे साथ आप शेयर करें 9868107070 पे।

वेलकम है दोस्तों, फिर से आपका MMM में, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मोक्षी। और भाई हमने मोहम्मद वक़ार फरीदी जी का शायद नाम पूरा नहीं पढ़ा है, तो हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं। हम आपका नाम पूरा पढ़ते हैं, और मोहल्ला हलवाई यान शेरकोट जिला बिजनौर से। और अब मुझे उम्मीद है अब आपकी शिकायत दूर हो गई होगी। और अगला मैसेज है गुड्डू धाकर जी, मध्य प्रदेश उज्जैन जिले से बडावन से लिख रहे हैं कि बचपन में स्कूल खुलने पर न्यूज़पेपर का कवर चढ़ा के किताबों में ले जाने में बहुत मज़ा आता था। बिल्कुल सही लगता था, बस सब एकदम यूनिफॉर्मली एक साथ सारे न्यूज़पेपर के कवर चढ़ा दो, बहुत सही लगती थी किताबें तब, और उसके ऊपर रंग बिरंगा स्टिकर, है ना, नाइस। अगला मैसेज है मोक्षी जी, आप भी अपने बचपन की कोई बात बताएं, शेयर करें तो अच्छा होगा। ये प्रदीप शुक्ला जनकपुरी न्यू दिल्ली से लिख रहे हैं। प्रदीप जी चलिए ठीक है, आपके लिए एक चीज़ मुझे याद आती है। जब मैं 5th में पढ़ती थी, मेरे लिए बिल्कुल नई यूनिफॉर्म आई थी, और बहुत नई यूनिफॉर्म आप जानते हैं थोड़ा सा बड़ी भी होती है। और नई यूनिफॉर्म में मैं स्कूल गई थी, आते वक्त बारिश हो गई बारिश हो गई तो मेरी यूनिफॉर्म गंदी हो गई, तो मुझे बहुत बहुत डर लग रहा था कि घर जाएंगे मम्मी पीटेंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, माँ तो वैसे ही परेशान खड़ी खड़ी थी बाहर कि बच्चे कब आएंगे घर। उन्होंने बहुत प्यार से हम लोगों को बुलाया, टहलाया, चाय पिलाई, खाना खिलाया, फिर सुला दिया। और फिर मैंने सोचा देखो कितना हम लोग गलत सोचते हैं कि मम्मी पीटेगी, जिस वक्त में हम लोग सोचते हैं कि मम्मी पीटेगी, मम्मी उसी वक्त नहीं पीटती है। दैट इज़ सो स्वीट मेमोरी ऑफ मी, थैंक यू फॉर आस्किंग। थैंक यू प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला अगला अगला मैसेज, मैसेज पे मैसेज आ रहे भाई, एकदम से लगता है हमारा नेटवर्क स्लो था कि मैसेजेस सारे एक साथ आने लगे, बहुत सारे। और अगला मैसेज है KVSL मेरिट के फ्रेंड बहुत याद आ रहे हैं, उनका नाम पढ़ दीजिए। संजय सिंह जी आप हमको मैसेज लिखिए, हम नाम ज़रूर पढ़ देंगे, लेकिन हमसे अगली बार ऐसी रिक्वेस्ट बिना मैसेज किए मत करिएगा, ना ना ना। तो इनके दोस्तों का नाम है योगी नितिन कुसुम, इनका सविता एंड संदीप। और अगला मैसेज राहुल राउत साकेत भंडारा महाराष्ट्र से लिखते हैं, हम बचपन में बोरी का छाता करके

स्कूल जाते थे, पूरा सब कीचड़ पैरों से उड़ता था और बहुत मज़ा आता था। ये बात तो है भाई, आप तो खेल लेते हैं बारिश में, उसके बाद जो पिटाई होती है ना वो एक अलग बात है, है ना। तो दोस्तों चल रहे हैं मैसेजेस एक के बाद एक, अब आ गए हैं बहुत सारे मैसेजेस मेरी बात, और ये मैसेज मैं लूँगी अगले गाने के बाद। और सुनिए अगला बहुत खूबसूरत सा गाना।

0: प्यास है।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: दोस्तों, वक्त आ गया है आपके मैसेजेस लेने का और एक से बढ़कर एक मैसेजेस आ रहे हैं। और अगला मैसेज भावनेश लिख रहे हैं, अशोक विहार दिल्ली से। हाउ आर यू टुडे? आई एम गुड। और वो लिख रहे हैं, माय न्यू सेशन ऑलवेज स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड आई रिमेंबर व्हेन आई हैड कम टू क्लास 9th। सो ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माय क्लास, व्हेन माय क्लास टीचर एंटर्ड द क्लास, आई फाउंड आउट दैट शी वाज एन इंग्लिश टीचर।

and she had taught me in class 8th, and I was her favorite student, and that was the sweet coincidence. That's very cute. और English teacher, आपकी 8th class की जो English teacher थी, और वो आप मतलब आप की favorite teacher वो थी, और वो आप उनके favorite student थे. और कितना respect होता है ना school के teachers का हमारे मन में. और हमारे लिए सच पूछिए तो जो teachers हमारे होते हैं ना school days के teachers, वो हमारे लिए बहुत respectable रहते हैं और ज़िंदगी भर रहते हैं. थैंक यू भवनेश जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस मैसेज. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. ये मैसेज लिखते हैं अंकित डोला, बागपत उत्तर प्रदेश से. ये लिखते हैं, किस्सा याद आ रहा है, जब कक्षा 6 में पहली बार स्कूल गया तो रास्ते में एक जामुन का पेड़ मिला और हम सारे दोस्त अपने बैग में जामुन भर के ले आए और और घर आके खूब पिटाई हुई. बस मैं इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी, पिटाई की बातें कब शुरू होंगी, जब हम छोटे बच्चों की और जब हम अपने बचपन की मेमोरीज याद कर रहे हैं और उसमें पिटाई की बात ना हो. और भाई, जामुन का तो दाग भी नहीं जाता है, इसलिए ज़रूर पिटाई हुई होगी आपकी. चलिए, आपका मैसेज पढ़ के जिस तरह से मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई है, मुझे उम्मीद है हमारे सभी लिसनर्स के चेहरे पर स्माइल आ गई होगी. अगला मैसेज है गंज द्वारा से समशुल कमर राही. बचपन के ज़माने में स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बचपन में सिर्फ खेलना और शरारत करना बहुत अच्छा लगता था. ये बात तो सही है. और नए नए दोस्त बनते थे, नई किताबें मिलती थी, बहुत अच्छा लगता था. साथ ही शरारत करना, जैसे किसी की सीट पे चुपचाप चिंगम चिपका देना, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, और कागज़ का जहाज़ बना के उड़ा देना, दैट्स सो स्वीट. लेकिन हाँ भाई, चिंगम वाली शरारत थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों ने की नहीं है बचपन में. आप सब लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने की नहीं होगी, अगर सब ने नहीं तो. दैट्स सो क्यूट. थैंक यू, थैंक यू शमशिल. और अगला मैसेज पंकज कुमार लिखते हैं मनोहरपुर झारखंड से. आई हैव ऑल द मेमोरीज लाइक एवरी वन हैज सच अ प्लेइंग, फाइटिंग, स्टडिंग एक्सेट्रा. योर टॉपिक रिकॉल्ड मी ऑफ माई मेमरीज. आई लाइक माई स्कूल. आई वॉन्ट टू एयर माई स्कूल नेम, दैट इज BSV स्कूल, निवारनपुर रांची. दैट्स सो स्वीट एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर मेमोरी विद अस. और बहुत अच्छा लगा, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग इस टॉपिक से अपने स्कूल के वो 5वीं 6ठी 7वीं क्लास की मेमोरीज में घूम रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. ओके, अगला मैसेज है अमित चौहान लिख रहे हैं धामपुर बिजनौर से, कि नई किताबों की खुशबू, नए बैग का उत्साह, नए क्लास में बैठने की खुशी और नए दोस्तों से मिलने का इंतज़ार, स्कूल खुलने का एहसास बचपन में सबसे खूबसूरत यादों में से एक है. और बहुत मासूम भी ना दोस्त, बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा. ओके, मेरे अगला मैसेज है, मेरे एक बचपन के दोस्त थे मोहम्मद रईस अब्बास जी, और फिर मैं उनसे रेडियो से जुड़ा, और इस रेडियो से हमें बचपन से जुदा हुए दो दोस्तों को फिर से मिलवा दिया. आकाशवाणी रेडियो और सभी RJs को दिल से शुक्रिया. ये कस्बा गुन्नौर UP से फारूक अली खान लिखते हैं, अपर कोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बास जी. थैंक यू. अब मैं भी आकाशवाणी की तरफ से और सारे RJs की तरफ से आपसे बहुत बहुत बहुत धन्यवाद कह रही हूँ कि आपने इतना प्यारा मैसेज हमारे साथ शेयर किया. आ गया भाई हमारे दोस्त का मैसेज, वो है नवलू कवर फ्रॉम मलपड़ गोवा से. और स्कूल के दिनों में बहुत मज़ा आता था जब नई किताबें, नई नोटबुक और नई यूनिफॉर्म पर चलकर हम लोग स्कूल जाते थे, और वो भी दिन क्या याद आते हैं. थैंक यू दोस्त, समझ में आता है कि आप कितनी कोशिश करके हमें लिख करके इस मैसेज को भेज रहे हैं. आपकी पूरी कोशिश समझ में आती है, और हम भी कोशिश पूरी करते हैं कि आपका मैसेज हमें जो मिले उस मैसेज को हम किसी तरह से एक उसका मीनिंग निकालते हुए, आपका मतलब समझते हुए उस मैसेज को पढ़ पाए. तो उम्मीद है हमने आपको निराश नहीं किया होगा. अगला मैसेज भाई, मैसेजेस तो बहुत आ रहे हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि बीच में शायद मेरा नेटवर्क स्लो हो गया, कि मेरे पास मैसेज कम थे, अभी एक बहुत ज़्यादा आ गए. एक मैसेज और लेते हैं, फिर सुनेंगे गाना, और उसके बाद फिर लेंगे तमाम बचे हुए मैसेजेस को. अभी तो बहुत वक्त है दोस्तों. तो अगला मैसेज लिखते हैं सनी कंबोज बिला सुरला पटियाला से. मुझे तो डर ही बड़ा लगता था, लगता है. और मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ आपका मैसेज. अच्छा, इनको गुदगुदी लगती थी कि टीचर पिटाई करेंगी, इनको ये डर लगता था, डर के मारे गुदगुदी लगती थी कि टीचर कहीं इनकी पिटाई ना करे. अरे, अब तो आपका ये डर ख़त्म हो गया होगा, आई होप सनी जी. नाइस. और ओके, नेक्स्ट मैसेज है, आप अपना नाम लिख करके भेज रहे हैं

कोमलचंद साहू जी, आप मैसेज भी लिख करके भेजिए, हमें बहुत खुशी होगी आपके एड्रेस के साथ आपका मैसेज पढ़ के बताने की। और प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बरसात हो रही है, ये मैसेज लिख रहे हैं भेरू लाल धाकड़ जी, और अच्छा लग रहा है मैसेज, लेकिन आप, हम आपका मैसेज पूरा तभी पढ़ेंगे जब आप हमारा टॉपिक से रिलेटेड कोई मैसेज पढ़ कर लिख करके हमें भेजेंगे। तो दोस्त, आज हमारा मैसेज, आज हमारा टॉपिक है कि जब जुलाई के महीने में आपको स्कूल जाना होता था, तब आप किन चीज़ों के लिए उत्साहित रहते थे? क्या बारिश के लिए, या नए दोस्तों के लिए, या नई क्लास टीचर के लिए, या सीट पार्टनर के लिए, नई किताबों के लिए, लाइब्रेरी क्लास के लिए, स्पोर्ट्स पीरियड के लिए, किस चीज़ के लिए आप सबसे ज़्यादा उत्साहित रहते थे? और वो छोटी छोटी उस वक्त की शरारतें आप हमारे साथ शेयर करें 9868107070 पे।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
3: आप सुन रहे हैं एमएमएम और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त मोक्षी। और आ गई है बाढ़ इस बरसात में मैसेजेस की, और बहुत मज़ा आ रहा है आप लोग के मैसेजेस देख करके। इसी तरह से तो इन्वॉल्वमेंट पता चलता है कि हम कितना, हमने आपको एक टॉपिक दिया, उस टॉपिक पे आपने मैसेज दिया और हमने उसे पढ़ा, है ना। यही तो मज़ा आता है, यही तो खूबी है इस प्रोग्राम की। तो अगला प्रोग्राम, अगला मैसेज है भोलू लाल वाकतरिया धाकड़ जी का, उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। होता क्या है ना कि नाम अगर गलत पढ़ दिया जाए तो थोड़ा बुरा लगता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ और हम लोग सभी कोशिश करते हैं इस बात की कि नाम सही पढ़ा जाए। फिर भी अगर कभी गलती हो जाए तो उसके लिए प्यार से माफ़ कर दीजिएगा। अगला मैसेज है, ये मैसेज में लिखते हैं कि कार्यक्रम पसंद आ रहा है, बरसात के दिनों की बात हो और भला ऐसा कैसे हो सकता है कि कीचड़ की बात ना हो। और ये बता रहे हैं कि स्कूल से आते वक्त कई बार हाथ पैर इतने गंदे हो जाते थे कि फिर हैंडपम्प को ढूंढना पड़ता था कि आस पास कहीं हैंडपम्प मिले तो पैरों को धोया जाए। दैट्स सो स्वीट। अगला मैसेज लिख रहे हैं फ्रॉम विशाखा, दिस मैसेज इज़ फ्रॉम विशाखा शाक्या, बेवर जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश से। ये लिख रही हैं कि गुड इवनिंग मैम, मैं शायद क्लास एक या दो में पढ़ रही होंगी, तब मैंने पापा से कहा था कि पापा ने कहा था कि वो स्कूल बैग लाएंगे, और फिर मुझे उस बैग को देखने की इतनी एक्साइटमेंट थी और अगले दिन स्कूल जाने की भी बहुत बहुत एक्साइटमेंट थी, और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि मैं रात में भी जब पापा घर नहीं लौटे तो मैं 1 किलोमीटर तक जा कर के देख करके आई, पापा का रास्ता देखती रही मैं कि पापा कब आएंगे। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल होता है जो कि विशाखा जी लिख रही हैं कि बचपन की जो चीज़ें होती हैं ना, बचपन में जो हमें मिलती हैं, कोई नया कपड़ा, कोई नया खिलौना, तो हम उसे ऐसा सजोते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि शायद सपने में भी वही आ रहा होता है, क्योंकि

एक्साइटमेंट ही इतनी ज़्यादा होती है, इतना प्योर हार्ट होता है छोटे बच्चों का कि वो वही सोचते हैं कि अभी उठेंगे जल्दी से सो के उसी खिलौने से खेलेंगे, जल्दी से बैग आ जाएगा उसमें जल्दी से सामान रख देंगे, है ना, सो क्यूट। अगला मैसेज सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी लिखते हैं शांति नगर सोनीपुरी से, नमस्ते मुक्षी जी, नमस्ते नमस्ते। और बचपन और बारिश के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, स्कूल बैग में पॉलीथिन में, स्कूल बैग पॉलीथिन में लपेट करके लेके जाते थे और सर पे भी पॉलीथिन पहन लेते थे, और ये थी हमारी बहुत ही खूबसूरत मीठी यादें। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। और पॉलीथिन भाई, पॉलीथिन का यूज़ तो मतलब एक एक्स्ट्रा बैग में रखा रहता था पहले कि भाई किसी तरह से अगर बारिश हो तो किताबों को बचा लिया जाए। और अगला है राहुल राउत सकोला भंडारा महाराष्ट्र से लिखते हैं कि अच्छा ये मैसेज तो मैं आपका पढ़ चुकी हूँ, अच्छा ये नीचे से छोटा सा मैसेज लिखते हैं वो बचपन की खुशी लौटा दो। अरे बचपन की खुशी हम कहाँ से लौटाएंगे, बचपन की खुशियाँ लौटती तो हम सबको मिल जाती, लेकिन चेरिश करिए बचपन की खुशियाँ, हमारी यादों में तो ज़िंदा ही हैं और हमेशा यादों में ज़िंदा रहेंगी, है ना, इसलिए खुश रहिए। नेक्स्ट मैसेज लिखते हैं अगला मैसेज हाँ लिखते हैं, मैं पहले सेंटर का नाम पढ़ती हूँ, कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैज़ी, फराज, फरहीन और फरहान, फरिया और ताहिरा लिखते हैं कि मेरी बिटिया फरिया जो कि 8 साल की है, स्कूल की छुट्टी होती है तो वो जितनी खुश होती है तो उसको देख करके इनको अपना बचपन याद आ जाता है। दैट्स सो स्वीट। और अगला मैसेज है, मैसेजेस तो आ रहे हैं भाई, मैसेजेस आने अभी थोड़ा सा हल्के से कम हो गए, लेकिन अभी कम नहीं करिए, मैसेज भेजिए, अभी हमारे पास वक्त है। हाँ अगला मैसेज अब लिख रहे हैं नीता अमरावती से, और रेनबो के प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं और मैं ये सुनती रहती हूँ। मैं अभी उत्तराखंड में बेटी के पास फिर भी एफएम रेनबो के प्रोग्राम सुन रही हूँ। मुझे तो बचपन में स्कूल कब चालू होता था, नई बुक, नई किताबें मिलती थी और उन सब के लिए मैं तरस जाती थी, क्योंकि नई किताबों में से एक खुशबू आती है जो बड़ी ही भीनी भीनी लगती है, और स्कूल जाते हुए बारिश के वो दिन। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, और मोर और लेस सब लोग नीता जी यही बात कर रहे हैं कि खूबसूरत दिन थे वो सच में। और जैसा कि मैंने कहा कि यादें तो यादें हैं, दिमाग में तो ज़िंदा ही हैं और हमेशा ज़िंदा रहेंगी, लेकिन दोस्तों आप लोगों से बात करते करते मैं ये भूल गई कि वक्त अब हो चुका है और अब मुझे जाना है। अब आप देंगे मुझे इजाज़त। नौरबी खान विलेज रमिया से लिखती हैं लखीमपुर खीरी से, पर मैं मैसेज नहीं पढ़ पाऊंगी, मैं सिर्फ नाम पढ़ रही हूं। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और बाय एंड टेक केयर, अपना खूब खूब ख्याल रखें, इजाजत दें मुझे, इस गाने को सुनते जाएं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: Well, this is a track breakthrough going out for Mr. Ravi Joshi from Meerut, who requested this track by the band Queen.

नमस्कार, सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपने दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। भारत और न्यूजीलैंड के अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम में कू फुकावो द्वीप के पास भारतीय नागरिकों के साथ हुए दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टिल्ट फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी का जलावतरण किया। उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक में मसौदे की जांच के लिए 9 सांसदिक समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई उसकी अध्यक्ष होंगी। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय ने दिल्ली के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए जन से गण तक नामक नए संग्रहालय आधारित शिक्षक पहल का शुभारंभ किया है। सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय 2023 में शुरू हुए मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही नमस्ते योजना के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 14 जुलाई को तीसरा नमस्ते दिवस मनाएगा। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्व हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग की यह जानकारी डॉक्टर नरेश ने बताया कि अल नीनो कारण नेनो के कारण देश में मानसून की बारिश सामान्य से कम हो गई है। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द कर दी गई हैं और स्कूल बंद रहे। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चोकिया के कैरोलिना मुकोवा और मुकाबला उन्हीं के देश की लिंडा नोस्कोवा में होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन खिताब जीतने के इरादे से उतरेंगे। ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल, गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा।

रात के 9 बज चुके हैं, सुनिए इस घंटे की अहम खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी 2 दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से विकसित राष्ट्र की ओर भारत की यात्रा तेज होगी। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारतीय पर्यटकों को

ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फूकोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 भारतीयों की मौत हो गई जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी का जलावतरण किया। उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय ने दिल्ली के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए जन से गण तक नामक नई संग्रहालय आधारित शिक्षण पहल का शुभारंभ किया है। दिल्ली के ऐतिहासिक विरासत का वैज्ञानिक अध्ययन, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण करने के लिए दिल्ली सरकार ने अभिलेखागार अनुसंधान फेलोशिप और पुरातत्व अनुसंधान फेलोशिप योजनाओं को मंजूरी दी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 2023 में शुरू हुए मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 14 जुलाई को तीसरा नमस्ते दिवस मनाएगा। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अलनीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हो गई है। मावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द की गई और स्कूल बंद रहे। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबलों से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली बाकी टीमों का फैसला होगा। तीरंदाजी विश्व कप के 4थे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता है। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार, बने रहिए हमारे साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही हैं आप। आप हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ दिल से दिल तक, और दिल से दिल तक के सफर में मैं नविता हूँ आपके साथ। एहसास आपके, अल्फाज हमारे, नगमे सदाबहार, क्योंकि आपकी याद आती रहे।

0: मोहब्बत को तो मोहब्बत से ही समझा जा सकता है ना। चाहे हम कितनी बातें कर लें, वो जो आंखों से आंखों का बातें करना है, वो जो दिल से दिल का हाल कहना है, वो यूं ही कहाँ समझ सकते हैं हम। वो तो यूं ही समझ सकता है जो इसमें होता है, जो इस एहसास में होता है ना।
1: ये आंखें, ये चेहरा, ये नूर, इंसान हो या परी हो तुम, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने।
0: मोहब्बत का एक रंग ही भी जब दुनिया भर की सारी खूबसूरती आपके महबूब में सिमट आते हैं,

इश्क का हर रंग खूबसूरत है, हर एहसास अलहदा है, सबसे जुदा है। वो दौर भी आता है जब दिल हमेशा याद करता है, फरियाद करता है कि वो मिल जाए एक बार, एक झलक मिल जाए उसकी बस। पर जब सामने आए तो दिल धड़क कर रह जाता है। क्या कहें, क्या ना कहें।

0: एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

एहसास आपके, अल्फाज हमारे, नगमे सदाबहार जो आपके दिल को छू जाए, क्योंकि आपकी याद आते रहे।

0: सुहाने सफर पे तो हम भी हैं, सफर दिल से दिल तक का। बने रहिए हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक लेकर बहुत जल्द हाजिर होते हैं।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है,

आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

जी हाँ, बिल्कुल सही हैं आप। आप हैं आकाशवाणी रेनबो के साथ दिल से दिल तक, और मैं नविदा हूँ आपके साथ दिल से दिल तक के सफ़र में। एहसास आपका, अल्फाज हमारे, नाग में सदाबहार।

0: हुआ है कभी ऐसा आपके साथ कि यूं ही राह चलते चलते कोई एक चेहरा आंखों में यूं बस जाए कि हर चेहरे में दिल बस उसको ढूंढता फिरे? मुश्किल से मिलता है ऐसा चेहरा, पर मिल जाए तो जिंदगी का सफर सुहाना हो जाता है। एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
8: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया
0: है। मोहब्बत का एक रंग ही फिर है, दिल जानता ही नहीं कि वो इश्क में है, मोहब्बत में है। धड़कनों को गिनता है, समझने की कोशिश करता है, पर समझ भी जाता है, थोड़ा वक्त लगता है। टटोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, थोड़ा वक्त देना पड़ता है।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

रात के 11 बज चुके हैं। सुनिए इस घंटे की अहम खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी 2 दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से विकसित राष्ट्र की ओर भारत की यात्रा तेज होगी। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 भारतीयों की मौत हो गई जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी का जलावतरण किया। उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय ने दिल्ली के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए जन से गण तक नामक नई संग्रहालय आधारित शिक्षण पहल का शुभारंभ किया है। दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत का वैज्ञानिक अध्ययन, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण करने के लिए दिल्ली सरकार ने अभिलेखागार अनुसंधान फेलोशिप और पुरातत्व अनुसंधान फेलोशिप योजनाओं को मंजूरी दी है। सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय 2023 में शुरू हुए मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 14 जुलाई को तीसरा नमस्ते दिवस मनाएगा। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के

वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अलनीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हो गई है। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द की गई और स्कूल बंद रहे। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबलों से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली बाकी टीमों का फैसला होगा। तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार, बने रहिए हमारे साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही है, आप हैं आकाशवाणी फिल्म रेनबो के साथ दिल से दिल तक। मैं नविता हूँ आपके साथ दिल से दिल तक के सफर में।
2: उसके होठों पे
1: रंगे महफिल, नविता का सलाम कबूल कीजिए।

आसान भी नहीं है इश्क में सब कह जाना। दोस्त बहुत काफ़ी है तुम्हारा होना सिर्फ। कई बार ऐसा लगता है किसी को देखकर, कुछ लोग होते हैं जिनका होना जिंदगी में रंग भर जाता है। उनको देखकर मानो मुश्किलों का हल मिल जाता है। उनके होने भर से ऐसा लगता है कि हर चुनौतियों को पार कर जाएंगे। ऐसा हम सफ़र, ऐसा दोस्त, ऐसा कोई साथ हो जो ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है, आसान हो जाती है।

0: तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, कैसे मिलता, कहीं पे था ही नहीं। मुझ पे होकर गुजर गई दुनिया, मैं तेरी राह से हटा ही नहीं।
1: बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।

0: एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: हाय
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही हैं आप हैं FM रेनबो के साथ दिल से दिल तक के सफर में, और दिल से दिल तक के सफर में मैं नविता हूँ आपके साथ।

जरा मोहतात होना चाहिए था, बगैर अश्कों के रोना चाहिए था। अब उनको याद करके रो रहे हैं, बिछड़ते वक्त रोना चाहिए था।

रात जो तूने दीप बुझाए मेरे थे, ये शिकायत उनसे या खुद से कहना मुश्किल है। इश्क में दो लोग दो रह कहाँ जाते हैं, सफर एक मंजिल एक, साथ गुजारा हर लम्हा, एक ही धोता है एक ही सपने।

तुम्हें बस ये बताना चाहता हूं, मैं तुमसे क्या छुपाना चाहता हूं। कभी मुझसे भी कोई झूठ बोलो, मैं हाँ में हाँ मिलाना चाहता हूं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

जी हाँ, बिल्कुल सही हैं आप। आप FM रेनबो के साथ दिल से दिल तक, और मैं नविता हूँ आपके साथ दिल से दिल तक के सफर में। दर्द जब देरी आता है तो गिला किससे करे, खुद से भला क्या शिकायत।

और दोस्तों वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल से दिल मिलाते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए FM रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

एफएम मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से विकसित राष्ट्र की ओर भारत की यात्रा तेज होगी। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट वियतनाम के फूक्वोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 भारतीयों की मौत हो गई, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी का जलावतरण किया। उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय ने दिल्ली के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए जन से गढ़ तक नामक नई संग्रहालय आधारित शिक्षण पहल का शुभारंभ किया है। दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत का वैज्ञानिक अध्ययन, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण करने के लिए दिल्ली सरकार ने अभिलेखागार अनुसंधान फेलोशिप और पुरातत्व अनुसंधान फेलोशिप योजनाओं को मंजूरी दी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 2023 में शुरू हुए मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 14 जुलाई को तीसरा नमस्ते दिवस मनाएगा। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हो गई है। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द की गईं और स्कूल बंद रहे और 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम की।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। 12:04:05 का समय हो चला है कार्यक्रम जीरो आर शो का। आज के शो में आपके साथ आपका दोस्त अतुल।

0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। 12:20 और 16 सेकंड का समय, कार्यक्रम जीरो आर शो।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से विकसित राष्ट्र की ओर भारत की यात्रा तेज होगी। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 भारतीयों की मौत हो गई, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी का जलावतरण किया। उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय ने दिल्ली के उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए जन से गण तक नामक नई संग्रहालय आधारित शिक्षण पहल का शुभारंभ किया है। दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत का वैज्ञानिक अध्ययन, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण करने के लिए दिल्ली सरकार ने अभिलेखागार अनुसंधान फेलोशिप और पुरातत्व अनुसंधान फेलोशिप योजनाओं को मंजूरी दी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 2023 में शुरू हुए मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 14 जुलाई को तीसरा नमस्ते दिवस मनाएगा। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हो गई है। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द की गईं और स्कूल बंद रहे और 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम की। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से विकसित राष्ट्र की ओर भारत की यात्रा तेज होगी। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 भारतीयों की मौत हो गई है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी का जलावतरण किया। उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत का वैज्ञानिक अध्ययन, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण करने के लिए दिल्ली सरकार ने अभिलेखागार अनुसंधान फेलोशिप और पुरातत्व अनुसंधान फेलोशिप योजनाओं को मंजूरी दी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 2023 में शुरू हुए मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 14 जुलाई को तीसरा नमस्ते दिवस मनाएगा। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हो गई है। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द की गईं और स्कूल बंद रहे। 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम की और चेक गणराज्य की 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने अपने ही देश की करोलिना मुचोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब जीता। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। समय हो चला है 2:04 का और श्रोताओं ये समय है कार्यक्रम भुलाए ना बने का।
2: आरती मन मानती कहना क्यों नहीं मानती, पाठशाला में छुट्टी हो गई, बस्ता क्यों नहीं बांधती।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: है बबल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी दो

की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से विकसित राष्ट्र की ओर भारत की यात्रा तेज होगी। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट वियतनाम के फु क्वोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 भारतीयों की मौत हो गई, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। पश्चिम बंगाल ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में आयोजित पर्यावरण संरक्षण संकल्प के कार्यक्रम में भाग लेंगे। दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत का वैज्ञानिक अध्ययन, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण करने के लिए दिल्ली सरकार ने अभिलेखागार अनुसंधान फेलोशिप और पुरातत्व अनुसंधान फेलोशिप योजनाओं को मंजूरी दी है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अलनीनो के कारण देश में मानसून की बारिश सामान्य से कम हो गई है। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द की गईं और स्कूल बंद रहे। 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम की। और चेक गणराज्य की 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने अपने ही देश की करोलिना मुजोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब जीता। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेमो चैनल के साथ। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम मिडनाइट मेलोडीज का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: हाय हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में।

ईत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: आय हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से विकसित राष्ट्र की ओर भारत की यात्रा तेज होगी। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट वियतनाम के फूकॉक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 भारतीयों की मौत हो गई जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। उन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में आयोजित पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत का वैज्ञानिक अध्ययन, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण करने के लिए दिल्ली सरकार ने अभिलेखागार अनुसंधान फेलोशिप और पुरातत्व अनुसंधान फेलोशिप योजनाओं को मंजूरी दी है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अलनीनो के कारण देश में मानसून की बारिश सामान्य से कम हो गई है। 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है और चेक गणराज्य की 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने अपने ही देश की करोलिना मुचोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम सारे कामा का, तो यूं ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए प्रोग्राम के बैक टू बैक ये ट्रैक्स।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी ची नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी रेनबो चैनल के साथ। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं एफएम रेनबो मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की 2 दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की यह पहली यात्रा थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से विकसित राष्ट्र की ओर भारत की यात्रा तेज होगी। भारत और न्यूजीलैंड ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। कृषि और कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत का वैज्ञानिक अध्ययन, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण करने के लिए दिल्ली सरकार ने अभिलेखागार अनुसंधान फेलोशिप और पुरातत्व अनुसंधान फेलोशिप योजनाओं को मंजूरी दी है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट वियतनाम के फू कॉक द्वीप के पास पलटने से 15

भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। पांचवें और अंतिम T20 क्रिकेट मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है। चेक गणराज्य की 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने अपने ही देश की करोलिना मुचोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अलनीनो के कारण देश में मानसून की बारिश सामान्य से कम हो गई है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

सुप्रभात, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी की एफएम रेनबो चैनल के साथ 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम भक्ति संगीत

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।